एफएम बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 17वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 अगस्त सन 2026। श्रोता, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे की 5:56 और ठीक 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे की 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। 6:05 से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और

0: संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दो दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं और लीजिए अब आपको सुनाते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है स्वाध्याय।

सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। हम कितने भी ज्ञानी ध्यानी हो जाएं, कुछ न कुछ सीखने समझने की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। निरक्षर लोग भी ज्ञानी बन सकते हैं, बशर्ते वे निरंतर सीखने का अभ्यास करें। हम जब छोटे होते हैं अक्षर भी ठीक से नहीं लिख पाते, तब निरंतर अभ्यास करवाए जाने के कारण हम अक्षरों को लिखना सीखते हैं, उसके बाद लिखे हुए वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। धीरे धीरे हम स्मृत होते चले जाते हैं। जो लोग सीखने की दुनिया से दूर रहते हैं वे जीवन भर निरक्षर बने रहते हैं। हमें सीखने से ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। गुरु हमसे बड़ा हो यह जरूरी नहीं, हमसे गुरु छोटा भी हो सकता है। जो हमें बेहतर गुरु सिखाए वह हमारा गुरु, फिर चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। बस सीखने की ललक होनी चाहिए। हमारे माता पिता ने बचपन से ही सीखते रहने के जो संस्कार दिए वे अब तक हमारे काम आ रहे हैं। माता पिता के संस्कारों के कारण ही आज भी हम सीखने में परहेज नहीं करते, समय समय पर तकनीकी जानकारी हासिल करते रहते हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस सुप्रभात वेला में संकल्प करें कि हम नित्य कुछ नया सीखेंगे।

अभी आपने सुना चिंतन, विषय था स्वाध्याय। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सुबह के 6:07 हो रहे हैं और अब श्रोताओं को सुनाते हैं वंदना।

0: संगमेश्वर में देशगान के साथ ही वंदना का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सुबह के 6:30 होने को है। लीजिए अब आपको सुनाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।
1: FM बैंड 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सवेरे के 6:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

वन गमन के लिए श्री राम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेपती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधु की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहु को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्री राम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया की संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानकारी, हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:30 पर, 9:30 पर और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक।

अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:45 पर आप सुन सकते हैं हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती नी बात।

आदिवासी लोक संगीत का प्रसारण समय रहेगा सवेरे 6:50 पर। कलाकार हैं राम नारायण मेघवाल और साथी। सात बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकते हैं वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे नरेंद्र मदनावत से जीवन एवं सावन पर आधारित काव्य रचनाएं।

राजस्थानी लोक संगीत का प्रसारण समय रहेगा हमारी प्रातःकालीन सभा में 8:45 पर और सायंकालीन सभा में आप सुनेंगे शाम 5:05 पर।

प्रातः 8:15 पर आप सुन सकते हैं दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से। आज का हमारा विषय है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में 11:30 पर और सायंकालीन सभा में आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे।

शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी। 6:45 पर प्रसारित होगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 7 बजे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या आप सुन सकते हैं रात्रि 8:45 पर।

0: ध्यान रखू है। इनके काम काज तो हमेशा करू है, पर काम काज ने हाथे कुछ सावधानी है। यहाँ पे खेती बाड़ी में भी है, पशुधन में भी है, हर तरह की हर काम में आपने काम काज ने हाथे हर नानी मोटी सावधानी नु भी विशेष ध्यान रखू है। ने आना कार्यक्रम ने माध्यम भी किस पर के भाई जे भी काम है आपने ध्यान से किन सावधानी थी की करवो जरूरी है। ने खास आवड़े आ मौसम है बरसात नो, तो इने कारण जीव जनावर पशुधन थे की हर तरह की आपने समस्या थई सके। एटले खावा पीवा रहेवानु ने साफ सफाई नु विशेष ध्यान रखे, केम के आपने स्वास्थ्य अच्छू है तो सब काम काज अच्छू है। ना पूरी आपकी आजीविका आमदनी आपने पशुधन बल माते है, आपे खेती बाड़ी माते है, ना आपने माते है, तो इन सब बातों नु ध्यान रखूंगा तो बढ़िया रहेगा। ने भाइयों बहनों देखो बातें तो घनी करवानी इच्छा हती, पर अब टाइम नु मान रखू पड़े। आज तो आपने सुटा पड़ो ने अगला कार्यक्रम में फेर मलंगा। राम राम राम राम।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती नी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाइयों ने सुना पशुपालन और खेतीबाड़ी से जुड़ी सामान्य जानकारी। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आदिवासी लोक संगीत। लोक संगीत के अंतर्गत आज हम सुनेंगे रामनारायण मेघवाल और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत राम नारायण मेघवाल और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए

0: www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सवेरे के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे नरेंद्र मदनावत से जीवन एवं सावन पर आधारित काव्य रचनाएं।
1: मित्रों, कुछ जीवन के आसपास के मुक्तक आपके लिए। हर्ष को ना छुपाया करो,

गीत को गुनगुनाया करो। जब भी बरसे घटा प्यार की, सर से छाता हटाया करो। जब भी बरसे घटा प्यार की, सर से छाता हटाया करो। दर्द बढ़कर शवा हो गया, ये दूसरा मुक्तक देखें, कि दर्द बढ़कर शवा हो गया।

गया। अगला मुक्तक देखें कि प्यार के मर्म को यूं सहा, प्यार के मर्म को यूं सहा, मोम पिघला पिघल कर बहा, प्यार

भाव रखबा अबुना को कहा कि मीत को जब बुलाया करो। प्यार दिखाने की चीज नहीं होता, उसी पे एक मुक्तक देखें कि मीत को जब बुलाया करो हर इशारा

उनको कुछ ना बताया करो, मीत को जब बुलाया करो, हर इशारा छुपाया करो, वो उड़ा देंगे सब तितलियां, उनको कुछ ना बताया करो, कि हर सड़क पानी पानी हुई, कि हर सड़क पानी पानी हुई, सब

अगला एक मुक्तक देखें, ना हम ही फंसे ना तुम ही फंसो। लोग अधिकतर व्यंग में बातें करते हैं, उसको उसी पे एक ये मुक्तक कि ना हम ही फंसे ना तुम ही फंसो, हम तुम पर हंसें।

कोई जगता नहीं, तुम जगाते रहो। कोई जगता नहीं, तुम जगाते रहो।

कोई सुनता नहीं तुम सुनाते रहो सीखने डूबने तैरने के इलम।

0: रहो।
1: ये जिंदगी किस तरह से चलती है कि चलेगी वो कब, हवा के माध्यम से बात कहने का प्रयास, कि चलेगी वो कब, कब ठहर जाएगी, क्या भरोसा हवा का किधर जाएगी, वो चलेगी कब, कब ठहर जाएगी, क्या भरोसा हवा का किधर जाएगी, क्या भरोसा हवा का किधर जाएगी।

0: किया, ज्ञान ब्रह्म में ही ऐसा उलझा रहा, कर्म को फुर्सतों में ही मैंने किया, सत्य है जिंदगी को ऐसे जिया।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत नरेंद्र मदनावत से जीवन एवं सावन पर आधारित काव्य रचनाएं। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 और वक्त हो चला है विविध भारती के कार्यक्रमों का।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार की। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: क्या?
1: अरे बाबा मैं तुम...

0: फिल्म माँ चोर का दो गाना अभी आप सुन रहे थे। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
0: और आइए अब सुनते हैं खयाम साहब के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी के बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म का नाम त्रिशूल।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने गौहर कानपुरी का चुना है। इसे संगीत में ढाला है बप्पी लाहिड़ी ने। आवाज़ें उषा मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है फिर जन्म लेंगे हम।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
0: फिल्म रंगीला रतन का युगल गान सुनिए, स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, शब्दकार गुलशन बावरा और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
1: वंदे
0: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी के बोल, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था लैला मजनू।

ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, आशा भोंसले और किशोर कुमार के युगल स्वर। फिल्म का नाम है ढोंगी।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात।

0: कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषय शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जानने के लिए उत्सुक हैं। श्रीवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
3: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
4: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत

0: बनाए रखना जरूरी है ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: We have seen the comments.
3: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
2: While we are coordinated,
3: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और GSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारे

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
1: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
2: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान क्यूआर कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम राजस्थान पत्रिका में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट

0: किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कुछ दिल से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी उपाध्याय का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे देश की स्वतंत्रता की गाथा आकाश जितनी विशाल, हिमालय जितनी अड़िग और गंगा जितनी पावन है, इस गाथा का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जिसने पराधीन भारत की आत्मा को स्वाधीनता का अमर मंत्र दिया। जी हां श्रोताओं, आज है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। इतिहास की कुछ तिथियां समय के साथ कभी पुरानी नहीं होती, वे हर पीढ़ी के हृदय में नई ऊर्जा का संचार करती है। आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, आज वह दिन है जब करोड़ों भारतीयों की धड़कनों ने एक साथ पुकारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन नहीं था, भारतीयों की स्वतंत्र चेतना का प्रबल उद्घोष था। जब गुलामी की बेड़िया असहनीय हो जाती है, तब स्वतंत्रता एक स्वप्न नहीं, जन जन का संकल्प बन जाती है। जो मिट गए वतन की राह में, वही अमर कहलाए। जिनके लहू से खिली सुबह, वही स्वतंत्रता लाए। चलो निभाए आज भी उनका अमर सम्मान, भारत की हर सांस में गूंजे हिंदुस्तान।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, 8 अगस्त 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देशवासियों को एक ऐसा मंत्र दिया जिसने हर भारतीय के मन में साहस की ज्योति प्रज्वलित कर दी। करो या मरो, यह शब्द एक नारा नहीं था, स्वतंत्रता के लिए समर्पित जीवन का संकल्प था। जब विदेशी शासन ने सत्य की आवाज को जेल की सलाखों में कैद करने का प्रयास किया, तब हमारे देश की जनता स्वयं आंदोलन बन गई। गांवों की पगडंडियों से लेकर शहरों की सड़कों तक, खेतों से लेकर विद्यालयों तक, हर दिशा में स्वतंत्रता की पुकार गूंज उठी। युवाओं ने अपने सपनों का बलिदान दिया, माताओं ने अपने पुत्रों को राष्ट्र के नाम समर्पित किया और असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास के पन्नों को अमर बना दिया। श्रोताओं, इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ।

श्रोताओं, ब्रिटिश शासन ने भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने के अनेक प्रयास किए। राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया, सभाओं पर प्रतिबंध लगाए, लाठियां चली, गोलियां बरसी, लेकिन स्वतंत्रता की मशाल बुझ नहीं सकी। वह मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचती रही और पूरे देश को

आलोकित करती रही, जिनकी सांसों में बसा था हिंदुस्तान का मान, जिनकी धड़कनों में गूंजता था आजादी का गान। वो दीप नहीं सूरज थे, वो जलकर उजियारा कर गए, अपने रक्त की हर बूंद से भारत का भविष्य सवार गए।

श्रोताओं, भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे प्रेरणादायी पक्ष यह था कि इसमें समाज का प्रत्येक वर्ग सहभागी बना, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं और युवा, सभी ने अपने अपने स्तर पर संघर्ष का दायित्व निभाया। श्रोताओं, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हमें इतिहास का स्मरण ही नहीं कराता, यह संदेश भी देता है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। आज जब हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस लेते हैं, तब उन असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने अपने रक्त से स्वतंत्र

श्रोताओं, भारत छोड़ो आंदोलन ने हमें एक अद्भुत सत्य सिखलाया कि जब पूरा राष्ट्र एक लक्ष्य के लिए खड़ा हो जाए तब सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। यह आंदोलन किसी एक नेता का नहीं था, देश की सामूहिक चेतना का जागरण था। आज स्वतंत्रता हमें सहज उपलब्ध लग सकती है, पर इसकी हर सांस में अनगिनत बलिदानों की सुगंध समाई है। हमारा कर्तव्य है कि हम उस स्वतंत्रता की गरिमा को बनाए रखें। ईमानदारी, सामाजिक सद्भाव, संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना ही उन बलिदानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

बान और शान हमारी जिम्मेदारी। इसी के साथ कुछ दिल से को अब यही विराम देते हैं। आपसे फिर रूबरू होंगे एक और नई थीम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।

आई श्रोताओ, उन सपनों को जीवित रखे, उन बलिदानों का सम्मान करे और हर दिन अपने कर्मों से कहे, यह देश हमारा है और इसकी आ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ दिल से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

बद्री व्यास और सीमा मिश्रा के गाए इस गीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 9 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जोजड़ी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा रैली से होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। श्री मोदी मेधावी छात्रों को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित परम प्रज्ञा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस प्रतिष्ठित संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच आने को लेकर उत्साहित हैं। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अब वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पंचायत राज और नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार अब आरक्षित सीटों के निर्धारण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू करेगी। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राजस्थान कृषि और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 और राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
1: हमारे किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती देने के लिए ये राजस्थान एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर फल सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, लघु वन उपज, शहद, दूध, पशु आहार, इन सभी की इकाइयों को मजबूती मिलेगी। इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे और सप्लाई चेन भी स्थापित करी जाएगी। उसी के साथ राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 भी लाएगी, जिसके अंदर फूड पार्कों को मजबूती दी जाएगी, उसके लिए भूमि आवंटित की जाएगी और उसका संचालन के अलग अलग श्रेणी बनाई गई।
0: मंत्रिमंडल ने मजदूरी संहिता नियम 2026 को भी स्वीकृत किया है। इसके तहत श्रमिकों के काम के घंटे तय किए गए हैं, साथ ही उनका महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार संशोधित होगा। प्रदेश में ईकेवाईसी नहीं कराने वाले करीब 27 लोगों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि इससे पात्र और जरूरतमंद परिवारों को योजना का फायदा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है। नवम्बर 2024 में शुरू किए गए गिवअप अभियान के तहत करीब 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ छोड़ा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राज्यों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग भविष्य की चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कल इंदौर में पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की 13वीं बैठक में ये बात कही। इस दौरान श्री शर्मा ने राजस्थान पुलिस के साइबर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की जानकारी भी साझा की। बैठक में अंतर्राज्य अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराध नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। साथ ही गुमशुदा बच्चों की तलाश, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक और तकनीक आधारित पुलिसिंग सहित अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews

0: _ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की जोजड़ी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसमें पर्यावरण, वन, जल संसाधन और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये समिति नदियों में हो रहे प्रदूषण की लगातार समीक्षा करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन नदियों का पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है। कई जगहों पर फैक्ट्रियों का गंदा पानी अवैध रूप से नदियों में छोड़ा जा रहा है। इससे नदी, पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसा शिकायत तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया है जिससे लोग नदी प्रदूषण या पर्यावरण से जुड़े मामलों की आसानी से शिकायत कर सकें और उन पर जल्द कार्रवाई हो सके। उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल परिसर और रेलगाड़ियों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर जुलाई माह में 269 लोगों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 38 स्टेशनों और 231 ट्रेनों में जांच कर कुल 5,38,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और धूम्रपान मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है।
1: हम लोग स्टेशन पे भी ड्राइव कर रहे हैं, ट्रेनों में भी ड्राइव कर रहे हैं। इस स्टेशन पे लगातार सीसीटीवी कैमरा की मदद से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। ट्रेन में भी कोच में टीटी और आरपीएफ दोनों मिलकर ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं। साथ में ही ट्रेन में एक ऑटोमेटिक स्मोक डिटेक्टर भी लगे हुए हैं जिसको FSDS रेलवे की भाषा में बोला जाता है, उसके द्वारा भी स्मोकर को पकड़ा जा रहा है। तो सभी यात्रियों से, सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि रेलवे सबकी कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, इसके सेफ और सिक्योर संचालन में सभी लोग सहयोग करें और धूम्रपान किसी भी परिस्थिति में रेलवे परिसर में और ट्रेन में ना करें।
0: प्रदेश में कल से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कल सभी जिलों में तिरंगा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा, वहीं 11 और 12 अगस्त को तिरंगा प्रदर्शनी और मेले लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का नेतृत्व करेंगे। ये रैली सुबह 9:30 बजे अल्बर्ट हॉल से होकर चौड़ा रास्ता और त्रिपोलिया गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक जाएगी। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने रैली से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में हो रही बरसात से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। राज्य के पूर्वी इलाकों में बरसात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भरतपुर में अत्यधिक बरसात को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज का अवकाश घोषित किया है। हनुमानगढ़ में सुबह से ही कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बरसात का दौर बना हुआ है। पाली में बादल छाए हुए हैं और रिमझिम बरसात हो रही है। राजधानी जयपुर में भी सुबह से ही फुहारों का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। आज भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं सीकर और झुंझुनू के लिए बरसात का ऑरेंज अलर्ट है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायत निकाय चुनाव और वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराने के फैसले सहित कई महत्वपूर्ण फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जोजड़ी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक हफ्ते के भीतर निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए। और प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय तिरंगा रैली से होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सवेरे के

9:10 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम सुन रहे हैं सोनू निगम के गाए गैर फिल्मी गीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत सोनू निगम के गाए गैर फिल्मी गीत।

सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सवेरे के 9:30 हुए हैं।

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
1: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ।

0: किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प गीतकार के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब क्या करें, इस गीतकार का नाम ही बावरा है। जाहिर है कि बावरेपन की बहुत सारी निशानियां होंगी इनकी इस दास्तान में।

आज के फनकार कार्यक्रम आज गुलचंद बावरा पर केंद्रित है, एक ऐसी जुनूनी शख्सियत पर जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और फिल्म संसार में जबरदस्त नाम कमाया।

0: देखिए जी, मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को जिला शेखुपुरा में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। साखी वाले दिन मैं जन्मा था। कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए, तो मैं तो अपने माता पिता खो चुका था। लकीली देखिए, हमारी एक बहन है कौशल्या देवी, जो जयपुर में रहती थी।
1: पढ़ाई लिखाई के बाद गुलशन बावरा को शौक लग गया लिखने का और वो चले आए मुंबई।
0: जब मैं आया था बम्बई में 1955 में, तो मुझे लगता है बम्बई की पॉपुलेशन 10 लाख थी, और आज इतनी पब्लिक को देखना, उनसे वाकफियत करना, उनसे बोलना।
1: लेकिन मुंबई वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं आए थे, वो तो आए थे गायक बनने के लिए। आपको बता दें कि गुलशन बावरा को रेलवे में नौकरी मिल गई थी और कोटा में उनकी पोस्टिंग हुई, और उसके बाद वो चले आए मुंबई। सन 1955 में वो मुंबई आए, रेलवे में क्लर्की करते और बाकी समय में फिल्मों में लिखने के लिए और गायकी के लिए जद्दोजहद करते।
0: बम्बई ऐसी नगरी है कि यहाँ पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बम्बई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ।
1: यही वो दिन थे जब रेलवे में माल गोदाम की नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब से आई मालगाड़ी गेहूं के एक के बाद एक बोरे उतारे चली जा रही है। गेहूं की इस जबरदस्त पैदावार को देखकर गुलशन बावरा के मन का जो गीतकार था, वो कह उठा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये कविता उन्होंने अपनी डायरी में लिखकर रख ली और मनोज कुमार को उन्होंने दिखाई, जो उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और गुलशन बावरा के दोस्त भी थे। मनोज कुमार को ये कविता याद रह गई। आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म उपकार बनाई, तो इस कविता को एक नामी गीत में

0: गुलशन बावरा का नाम गुलशन बावरा कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है।
1: बात यूं है, जब मैं नया नया दिल्ली से आया था तो मेरा कुछ रहने या कपड़ों का स्टाइल कुछ ऐसा था जो दिल्ली वाले नीले पीले कपड़े और पहना करता था, तो लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे। गीत लिखा चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जा, तो जब वो गीत रिकॉर्ड हुआ उसके साथ ही मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तो एक दफा कल्याण जी भाई के घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था, तो उसने बोला एक तीसरा गाना लिखना था भजन, तो उसने उसको बोला कि ये गाने तुम उसी से ही लिखवाओ जिसमें ये दोनों गाने लिखे। तो बोले ये सामने बैठा हुआ है लड़का, इसी ने लिखा है वो गाना। तो बोले झूठ मत बोलो कल्याण जी भाई, आपका जोक मारने का स्टाइल है, तो ये क्या लिखेगा, ये तो पिक पॉकेट था, पॉकेट मार था बावरा। तो उस फिल्म में शैलेंद्र और हर्षद के भी गीत थे, तो उन्होंने रविंदर भाई से पूछा कि रवीन भाई ये कल्याण जी करेक्ट बोल रहे हैं कि ये गाने इसी ने लिखे हैं? बोले हाँ बिल्कुल इसी लड़के ने लिखे। तो बोले अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा, ये बावरा सर लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया।
0: तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। सबसे पहले गुलशन बावरा ने सन 1959 में कल्याण जी वीरजी शाह के संगीत निर्देशन में अपना पहला गीत लिखा जिसे लता मंगेशकर ने गाया। वो गाना था
2: ये। मैं क्या जानू?

0: जानू मैं क्या जानू काहे लागी ये सावन मचवाना रे
1: रूप जवानी मस्ती ने ये जादू तुझ पर डाला हो जादू तुझ पर डाला।
2: सन 1961 में गुलशन बावरा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी ताकत से फिल्मों में गाने लिखने लगे। गुलशन बावरा ने सबसे ज्यादा काम आरडी बर्मन के साथ किया। पंचम के साथ उनकी दोस्ती बड़ी ही मशहूर रही है। गुलशन बावरा ने एक एल्बम भी जारी किया जिसमें वो पंचम से जुड़ी दोस्ती की और गाने बनने की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें गुलशन बावरा ने बताया था कि एक दिन बारिश का समय था और पंचम का उनके पास फोन आया। उन्होंने फोन पर गुलशन बावरा को एक धुन दी जो थी चाबू चाबू चिया चिया चाबू चाबू चिया। गुलशन बावरा ने कहा ये क्या है, इस पर मैं क्या गाना लिखूं? तो पंचम ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर पर आता हूं। दरवाजा खटका और पंचम गुलशन बावरा के घर में घुसते हुए गाना गाने लगे। मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग बनाना अंजू, गीत क्या है धुन क्या है तू समझ गया गुल्लू, अब जल्दी से लिख दे गाना गुल्लू।

तरह से बड़े ही सुंदर और मस्ती भरे माहौल में गुलशन बावरा और पंचम ने कुछ अनमोल गाने दिए। गुलशन बावरा को दो बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सन 1974 में जंजीर फिल्म के इस गाने

0: फिल्म उपकार के इस गाने के लिए।
1: ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती।
0: जरा हाथ की सफाई फिल्म का ये गाना सुन लीजिए और ये सोचिए कि गुलशन बावरा ने किस तरह के मजेदार और सुरीले गाने दिए फिल्म।

सचिन बाबरा बहुत लंबे समय तक लिखते रहे, यहाँ तक कि अजय देवगन के अभिनय वाली हकीकत फिल्म का ये मशहूर गाना सुनिए जो उनके बाद के दौर का गाना है।

वैसे आपको बता दें कि गुलशन बावरा पर्दे पर भी नजर आए फिल्म जंजीर के इस गाने में जो शख्स हारमोनियम बजाता हुआ थिरक रहा है वो गुलशन बावरा ही है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म संसार को बहुत ही मस्ती भरे और अनमोल गाने देने वाले गीतकार गुलशन बावरा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह।
1: स्वाति की सुबह हमेशा जैसी सुंदर थी। जाते हुए भादों ने उसे सुबह की सैर पर भिगो दिया था। उसके पसंदीदा मौसम के आखिरी कुछ दिन बचे थे, जिसे वो अगली बारिश तक खुद में समेट लेना चाहती थी। भीगी भीगी स्वाति जब अपने कॉलोनी के अंदर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइम देखकर वो हड़बड़ा गई। बच्चों की बस आने वाली होगी, देर हो गई आज, सोचती हुई वो घर के अंदर घुसी और सीधे ही किचन में जाकर बच्चों का टिफिन पैक करने लगी। कान्हा और वृंदा को अभिनव ने पहले ही तैयार कर दिया था। टिफिन भी उसकी महाराजिन मंजू बना चुकी थी।

0: हर काम अपने समय से हो चुका था, लेकिन मां का दिल है ना, जब तक खुद काम में हाथ न लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ता। बच्चों को भेजकर वो भी गुनगुनाती हुई नहाने चल पड़ी। टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना था। क्या बात है, आज तो कोई मूड में लग रहा है। आईने के आगे संवरती स्वाति के गीले बालों में तौलिया बंधा था। उसे गुनगुनाते देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। अभी देर हो जाएगी यार, छोड़ो मुझे। अभिनव को प्यार से झिड़कती हुई स्वाति के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी, 10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हाँ भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है, चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं। अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चले जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही बुरी खबर से सामना हुआ। बीती रात उसका एक सहकर्मी आलोक नशे की हालत में ऑफिस की बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। ऑफिस में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था, सबके बयान लिए जा रहे थे। मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिनभर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया, आखिर कौन था उसके साथ, उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूँ। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही। तो तुम्हें याद हूँ मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूँ। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई, तुम्हारी और अभिनयों की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे, इतना ही मानवता के लिए काफी है। भाई, मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा, वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता। निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब ये जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निविश को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था।

उससे बात करके जो भी पुरानी यादें लौटती उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, न अपने परिवार में न ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो, मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं। निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातूनी हूं, मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हाँ, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती? स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने ये तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया, आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा, इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे ये एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेलजोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक? ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां, क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी

0: बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो ये संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो। तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो। निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है। यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है। मैं अभिनव को धोखा नहीं दे सकती, बात को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा। प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या? नहीं ना, क्या ही फायदा तब इतना सोचने का। निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था। फिर भी ये ठीक नहीं है, किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया।

पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया। मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं। निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया, बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम कर दिया। जब भी वो मिलने को कहता, स्वाति कोई न कोई बहाना बना देती। वो ऑफिस तक आ जाता, तब भी वो मीटिंग का बहाना करके उससे नहीं मिलती। ऐसा नहीं था कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ निमिष दुखी था, दुखी तो वो खुद भी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की, कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता मानता है, मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा नीरस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध। कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क, कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानि से भर गई और उसने निमिष से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया।

0: नारी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे।
1: क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई।

खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में, दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है। काश हम दोस्त बन के रहते, काश उसे मुझसे प्यार न होता। मुझे उसकी कमी कितनी खल रही है, लेकिन निमिष ने मुझसे संवाद की अपनी कोशिश कुछ दिनों में ही बंद कर दी। प्यार तो नहीं ही रहा होगा उसे, शायद बस पसंद हो या बस आदत हो गई हो बात करने की, शायद कल किसी और की आदत हो जाएगी उसे। स्वाति सोच ही रही थी कि अभिनव ने पूछा, अरे सुनो, वो तुम्हारे ड्राइव टाइम कॉल का क्या हाल है? अभिनव ने उससे निमिष का हाल पूछा था, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही स्वाति के दिल में कुछ झन्ना के बिखर गया। क्या मैं सिर्फ उसकी ड्राइव टाइम कॉल थी?

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इजहार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर वन बना दिया था। न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर वन रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने ये जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीनस्थ प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर।

अबे तुम क्यों जाओगे? हम जाएंगे, एक ने कहा। अरे भाई, मेरी ना शादी हुई है, मेरा हनीमून हो जाएगा, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो। दूसरे ने विनती की। अरे यार, तुम्हारे हनीमून का खर्चा चैनल थोड़ी ना देगा, राकेश ने उसको डपटा। राकेश भाई, तुम उनसे कह दो ना कि तुम्हें गोद ले ले, पहले ने सुझाव दिया। ये सही है, निमिष सर को पापा बना लो, उनके जीवन में नौकरी के सिवा कुछ है भी नहीं, एक रेडीमेड बेटा ही मिल जाएगा। सर सिंगल हैं? नई एंकर नैना ने अचरज से पूछा। तुमको नहीं पता? सब कहते हैं सर अपने जमाने के दिल जले आशिक हैं, शायद प्रेमिका मिली नहीं या मर गई हो, क्या पता, दूसरे ने बताया। कितना गॉसिप करते हो यार, जाओ अपना काम करो सब। राकेश ने अपने डेस्क से भीड़ को भगाया और ग्लास केबिन में काम करते शांत निमिष की ओर देखा और सोचने लगा। कोई कह सकता है कि इतने अकेले हैं? शायद तभी पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते, घूमने नहीं जाते। बीच में कुछ महीने चेहरे की रंगत बदली थी, खुश रहते थे, अब फिर से पहले जैसे बुत बन गए हैं। कांच की दीवार के उस पार निमिष सोच रहा था कि स्वाति से बात शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानता था कि पुरानी भावनाएं उस पर यूं हावी हो जाएंगी। किसी को प्यार से दूर करना कितना आसान था, न जवाब का इंतजार, न रूठने का खौफ। ग्रेजुएशन के 3 साल मिलाकर करीब 18 सालों से उसने स्वाति को चाहा था। इतने सालों में उसने इस तड़प को कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 1 महीने से स्वाति से उसकी बात बंद है। स्वाति के पीछे भागते 2 हफ्तों में उसने तिरस्कार को समझा था। वो समझता था कि स्वाति अभिनव से ही प्रेम करती है और उसे अपने बारे में आश्वस्त रखने के लिए ही तो निमिष ने पूजा के नाम का झूठ गढ़ा था। वो स्वाति की जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह से खुश था। शायद उसे अपनी आकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, काश दोस्ती ही बनी रहती, लेकिन पीछे लौटना संभव नहीं था। इसलिए उसने स्वाति से कोई संपर्क न रखने का निश्चय किया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि भूले से भी वो उसकी जिंदगी में झांकने ना जाए।

रिश्तों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर का।

संपादन सहयोग स्नेहल भिसे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
1: परेशान हूं मैं।
0: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
2: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर 11 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम सुनवाने जा रहे हैं चुनिंदा कलाकारों की गजलें। शुरुआती गजल हम सुन रहे हैं गुलाम अली की आवाज में।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज़ ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके

जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

अनुराधा पौडवाल और मनहर के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 11:30 लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआती गीत हम सुन रहे हैं वीर फिल्म से, रूप कुमार राठौर और साथी कलाकार की आवाज में। गुलजार के बोल हैं साजिद वाजिद का संगीत।

सिम्बा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती की कार्यक्रम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की

0: सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेवेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बनी तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए यादों की महफिल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस गाने से शुरुआत करते हैं। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।

12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे दिन के 12:11:35 और अगर आपके शहर में बारिश है तो ये गाना आपके लिए।

0: झूठ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में था। एमजी हशमत के बोल थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जय

यादों की महफिल में अब गूंज रही है किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है वारंट। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।

0: विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स OTT, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे गोविंदर सिंह की आवाज, फिल्म का नाम मौसम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। फिल्म का नाम जूली। आनंद बख्शी, राजेश रोशन। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आ रही है किशोर कुमार की ही आवाज में। अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन की तर्ज है। फिल्म का नाम है दे

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की

भारत विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट हो चुकी है और आप सभी ने पढ़ी ही होगी। जिन श्रोताओं ने फेसबुक पोस्ट नहीं देखी है उनके लिए इबारत यहाँ पेश है। इतने दिन कहाँ थे, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, ये कैसी बातें कर रहे हो। घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अरे खुलकर कहो ना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, ओफो कहना क्या चाहते हो, मुझको अभी चुप रहने दो, पहेलियां बुझाना छोड़ो ना, हम क्यों शिकवा करें झूठा। अरे किससे शिकवा हुआ है, क्या बात है, इंसान मोहब्बत कर बैठा, पर ये तो अच्छी बात है ना, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, फिर वही, अरे खुलकर कहो ना, कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दें। देखो ये ठीक बात नहीं है, इस तरह उलझी बातें कौन करता है। बातें हैं बातों का क्या, हाय इतना दुख मेरी तो आंख भर आई, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, अब तुम हद कर रहे हो, अपनी तो यह आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। चुप रहो, अब ऐसी बहकी बहकी बातें की तो बातें बंद हो जाएंगी हमारी, समझे भाई, यही है आज की इबारत। और इस इबारत में बहुत सारे गाने, बहुत सारे शब्द समाये हुए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने बाकायदा गानों को एक अच्छी तरीके से पहचान भी लिया है, लेकिन एक जो नहले पे नहला आया है उसे कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक इबारत लिखी है, क्या बात है बड़े छाए हुए आजकल, क्यों आपको पसंद नहीं है, हमें क्यों पसंद नहीं होगा, आखिर आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, वही तो हमारे लिए आप श्रोतागण ही सब कुछ हो, बस इसी बात ने तो हमारा दिल छीना है। विविध भारती से एक संवाद, एक कमाल है भाई, कमाल है, यानी नहले पे दहला मार दिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे श्रोताओं की बातें, एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि यादों की महफिल में बहुत ही बढ़िया गाने आपने सुनवाए, इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा कर देते हैं आपका। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता हैं, जरा देखें कि हमारे और श्रोता क्या कह रहे हैं। कुछ श्रोता हैं जिन्होंने बाकायदा पूरे गानों की लिस्ट प्रदान कर दी है और यहां भेजा है। इसके अलावा कई ऐसे श्रोता हैं जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि इतने दिन तो हम कहीं नहीं थे, विविध भारती के संग थे और ऐसे ही विविध भारती हमारे साथ चलती रही, गुनगुनाते रहे, दिल पर राज करते रहे, सुकून देते रहे। एक और श्रोता कहते हैं शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, हम विविध भारती सुनते रहे तो दिन खुशनुमा रहे। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अप्रत्याशित थीम है और बहुत ही मजेदार गाने सुनाई देने वाले हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि यादों की महफिल में गाने अच्छे सुनाई दिए थे। एक श्रोता ऐसे हैं जो बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप बालटाल में है और वहां से आगे रवाना हो रहे हैं। शुभकामनाएं आपको हम सबकी तरफ से, और वहां भी आप अगर विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का सिलसिला इस गाने के साथ। और आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या आम बोलचाल की भाषा में आप भी गानों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं।

हमारा एक और श्रोता है जो कहते हैं हम अभी इसी गाने को सुन रहे थे और ये गाना प्रसारित हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम अभी से घोषित कर देते हैं कि आज का जो सबसे प्यारा गीत है वो यही है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज जो है प्रश्न पत्र का स्वरूप कुछ बदला हुआ लग रहा है, लेकिन ये बदलाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें शामिल करते हैं। देखिए कई श्रोता ये कहते हैं कि हमारे कमेंट शामिल नहीं होते, इतनी लंबी धारा कमेंट की है कि मैं एकदम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे गानों के बोल हमारे कई श्रोताओं ने लिखे हैं, अब सभी श्रोताओं के लिखे गाने के बोल बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार का शुक्रिया। इतना सारा टाइप करके आपने भेजा, अपने गानों को बिल्कुल ठीक पहचाना है। और एक श्रोता ये कह रहे हैं कि जैसे ही पेज खोलकर सुबह देखा उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, इबारत पढ़कर चाय और नाश्ते का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुझे याद आया कि कैसे किशोर कुमार की याद के दिन आपने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती बड़े काम की चीज है, कहीं दूर से गम आ जाए रेडियो से मेरा मन बहल जाए, या रेडियो बजाओ दुनिया वालों या मुझे अभी चुप रहने दो। क्या बात है, इन्होंने अपनी तरीके से इबारत लिख दी है। अब जो गाना आ रहा है वो आप सभी के दिल के बहुत ज्यादा करीब गाना है और ये जो फिल्म है ये हम सभी को बहुत ही अपनी सी लगती है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री एक दूजे के लिए, ये फिल्म आपने किस साल में कहां किसके साथ देखी थी, ये यादें हमारे साथ जरूर बांटिए। और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? क्या आपके शहर में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं या अभी तक आप गर्मी से जूझ रहे हैं? शनिवार की दोपहर 1:12 क्या हाल आपके और आपके शहर के मौसम के?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि एक दूजे के लिए जब रिलीज हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, थिएटर में देखी होगी पर याद नहीं है, लेकिन बाद में टेलीविजन पर देखा। जैसे जैसे बड़े हुए इस फिल्म के गानों का जादू सिर चढ़कर बोला, एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज से परिचित हुए और 16 बरस की बाली उम्र से खुद को कनेक्ट किया। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ये गाना दिल के बहुत करीब है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि मिर्जापुर शहर में जब से सावन का महीना लगा है दिन रात झमाझम बारिश हो रही है, इस समय थोड़े बादल और थोड़ी सी धूप है, खुशनुमा मौसम है हमारे शहर का। और इसके अलावा फिलीपींस के एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहां तो 3 दिन से बारिश हो रही है और रेड अलर्ट का सिग्नल आ चुका है। एक और श्रोता ने क्या सुंदर जुमला गाने में सुटाया है, दुनिया में प्यार की एक है बोली सलाम आनंद बख्शी साहब, क्या बढ़िया लाइन लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता लखनऊ से लिख रही है कि सूर्य देव तीक्ष्ण ताप बरसा रहे हैं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके शहर में भीषण वृष्टि हो और तीक्ष्ण ताप की जगह शीतलता आप पर हावी हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो पानी पानी पानी हो गया है, भाई ये जो पानी पानी पानी है इससे मुझे ऐसा लगा जैसे आप गा रहे हैं गाना आज ब्लू है पानी पानी पानी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही है कि ये गीत मन की गहराई में बसा हुआ है, प्रेम के कितने रंग हैं और सादगी भरे बोल इस गाने का आभूषण है। एक श्रोता अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी से और गाड़ी में सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, उनके परिवार के बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर। बहुत सारे श्रोता है, एक श्रोता लिखते हैं कि भाई ये जो लिफ्ट वाला गाना है मेरे जीवन साथी प्यार किए जाए ये बड़ा ही अच्छा लगा था। 1981 में कॉलेज से भागकर दोस्तों के संग पहला शो मैटिनी शो देखा था। अब ये जो कॉलेज से भागकर फिल्म देखने की बात है ना, बस मुझे लगता है कि इसी बात की डोर पकड़ के आगे चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज से भागकर पिक्चर देखी थी, कॉलेज से भागकर कौन सी फिल्म देखी थी और क्या किसी को पता चल गया था। और हाँ, अब रेशमा की आवाज गूंज रही है, फिल्म का नाम हीरो, सुभाष घई की बेमिसाल फिल्म जिसमें आए थे जैकी दादा। ये फिल्म कहां, किस शहर में, कब, किसके साथ, चोरी से या शाम से देखी थी बताइएगा।

एक श्रोता है जिन्होंने बहुत ही मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि भाई फिल्म हीरो हम लोगों ने कॉलेज से गोल मार कर देखी थी, अब साथ में कौन था ये बात प्लीज मत पूछिए वरना बहुत मार पड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये मत बताइए कि साथ में कौन था, लेकिन कॉलेज से भाग कर देखी है ये बड़ी मजेदार बात है। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की यादें देखी साझा की हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि दोस्तों के साथ खुदा गवाह देखने गई थी कॉलेज से भागकर, बहुत मजा आया था और हम पकड़े नहीं गए थे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि मिथुन दा की फिल्में तो नहीं देखी लेकिन कैसेट बहुत बजाया करते थे, ये एक बात इन्होंने लिखी है। उसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लंबी जदाई का की बड़ी तारीफ की है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्या गजब कर रहे हैं, सुरीले सफर कार्यक्रम में आपके सारे राज खुलवा देंगे, यहां मेरे बेटी बेटे दामाद बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ कि आप नाम नहीं लेते, वरना ये जो कॉलेज बंक करके फिल्में देखने की लिस्ट तो लंबी है। अच्छा हुआ कि इस कार्यक्रम में नाम नहीं आता, वरना सबको पता चल जाता कि हमने क्या किया था अपने जमाने में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि शहर में थोड़ी सी बारिश भी बहुत अधिक हो जाती है, हम किसानों से पूछो अभी तक धरती में पानी ठीक से अंदर पहुंचा नहीं है और हम मजबूर हैं भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए। आप शहर वाले थोड़ी सी बारिश हुई तो हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश गिरी।

0: बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि जो खेती है वो अच्छी तरीके से हो सके। एक और श्रोता लिखती है कि कभी कभी किसी गीत को हम केवल सुनते नहीं बल्कि वो हमारे भीतर घटित होता है। इस गीत को सुनकर लगता है कि हमारे भीतर एक अंतहीन बयाबान पसरा हुआ है। रिश्मा की आवाज सबसे उदात्त पलों में ले जाकर छोड़ देती है। एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि मैंने मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये राज उजागर कर दिया है कि कॉलेज से भागकर उन्होंने रफू चक्कर देखी थी सहेलियों के साथ कॉलेज बंक करके। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि कॉलेज से भागकर अगर फिल्म देखते तो कहीं फिल्म देखने के काबिल न रहते उस जमाने में, क्योंकि पापा आर्मी में थे और आर्मी थिएटर में 365 फिल्में जरूर देखी सिकंदराबाद में। इसके अलावा एक और श्रोता जलंधर से हैं, वो कहते हैं कि जलंधर के लाल रतन सिनेमा हॉल में हमने फिल्म हीरो देखी थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई बारिश तो हुई है और अभी और भी होगी, कहीं बाढ़ कहीं सूखे के साथ, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका असर कहीं गर्मी और कहीं वर्षा ऋतु का प्यार। एक और श्रोता है जिन्हें जुबली टॉकीज याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि एक दूजे के लिए उन्होंने 1982 में जुबली टॉकीज में देखी थी। किस शहर का की बात है ये आप अंदाजा लगा सकते होंगे, मैं तो समझ गया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट किया कि हमारे शहर में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में मुंह फुलाए फूफा घूमते हैं, नजर तो सबको आते हैं मगर काम के नहीं होते। भाई बहुत ही प्यारा कमेंट है। और अब एक ऐसे गाने की तरफ ले जा रहे हैं जो दिल के गुबार को उजागर करता है, जिसमें उदासी लिपटी हुई है। एक बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गाना है ये।
1: दीवानों से ये मत पूछो।
0: क्या आप बता सकते हैं इस गाने के गीतकार कौन हैं? इस फिल्म में कई गीतकारों ने गाने लिखे थे।

बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं। कमर जलाल आबादी ने ये गाना लिखा था, कुछ श्रोताओं ने गुलचन बावरा का नाम भी लिखा है, पर ज्यादातर श्रोताओं ने कमर जलाल आबादी का नाम लिखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि जब आपने ये ऐलान किया था कि गीतमाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुरीला सफर कार्यक्रम जब हमने सुना तो तब से बड़ा आनंद आ रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरी उम्र 38 बरस है पर मैंने सिर्फ दो ही फिल्में सिनेमाघर में देखी हैं, एक बजरंगी भाईजान और दूसरी सुई धागा। ओ हो, सिर्फ दो ही फिल्में। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलशन बावरा का नाम लिखा है जो कि गलत जवाब है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब ये दौर कभी नहीं आएगा, पुराना माहौल कुछ और था जो कभी नहीं दोहराया जाएगा। जिन्होंने ये समय दिखा है उनसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। कमर जलाल आबादी की बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी। एक श्रोता है जिन्होंने कहा 11वीं कक्षा में कॉलेज से बंक मारकर सहेलियों के साथ कर्ज अंखियों के झरोखों से हम किसी से कम नहीं और ऐसी कितनी ही फिल्में टोपी वाला थिएटर में देखी हैं, गोरेगांव के टोपी वाला थिएटर में। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा कि दीवानों से मत पूछो गाने में एक टीस है, मुकेश की दर्द भरी आवाज रूह तक उतर जाती है। और फिर और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता ये कह रहे हैं कि विविध भारती पर सावन से जुड़े जितने कार्यक्रम हुए हैं उतनी बारिश हमारे यहां हो जाती तो मजा आ जाता। इसके अलावा एक और श्रोता है कहते हैं कि भाई बड़ी ही अजीब बात हुई, कल रात आप मेरे सपने में आए, मैं आपको बीमे की किस्त के रुपए दे रहा हूं। भाई ये तो बहुत ही अजीब सपना है आपका। और इसके अलावा एक और श्रोता है कि जिस तरह से आप कमेंट पढ़ते हैं आपका फनी अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कश्मीर में कहते कि मेरे आंखों के आगे कश्मीर, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आंखों के आगे कश्मीर का नजारा है और मैं अपने सफर पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। ये कितनी प्यारी बात है कि वो अपने सफर में भी विविध भारती को लगातार सुनते चले जा रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, आज कार्यक्रम छूटता हुआ लग रहा था पर हमने छोड़ा नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लास्ट पीरियड कई बार बंक किया, प्रिंसिपल से डांट खाई और एक बार फिल्म देखी ठिकाना और पापा से भी डांट खाई। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि भागकर तो नहीं पर दोस्तों के साथ एक बार गई थी, मम्मी को फिल्मों का बहुत शौक है तो मम्मी और पड़ोस की चाची और बहनों और उनकी बेटियों, मतलब उन्होंने पूरी टोली का लिखा है कि इन सबके साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टी के बाद मैं और मेरे दोस्त अपनी साइकिलें कॉलेज में ही छोड़कर पास के सिनेमा हॉल में नूरी फिल्म देखने चले गए थे, बाद में प्रिंसिपल ने हमें बहुत डांटा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ट्रेन से सफर करके कॉलेज जाते थे, एक दिन ट्रेन काफी लेट पहुंची, बारिश भी बहुत थी, तब चित्तौर फिल्म का बोर्ड एक जगह देखा था, मैं और मेरी सहेली फिल्म देखने चले गए लेकिन अंदर जाकर देखा कि अपने पराये फिल्म लगी थी, हमने जो है वो पुराना पोस्टर देख लिया था। तो ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की हैं। और अब चूंकि माहौल उस तरह के गानों का है तो एक और गाना आ रहा है और हेमंत कुमार की ये आवाज पूरी दिल में उतर जाएगी। हेमंत कुमार की आवाज के बारे में अपनी राय, अपनी बात

हेमंत कुमार की आवाज में अनुपमा फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज बिल्कुल अलग है, वो अच्छे गायक ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि कभी ये गाना शायद ही कभी मुझे भावनाओं से आंसुओं तक लाने में नाकाम रहता होगा, जब भी सुनते हैं आंखें भर आती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इस गाने में धर्मेंद्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि हम स्कूल से भी सिनेमा घर ले जाए गए थे, बच्चों की फिल्म थी तो स्कूल ने हमें फिल्म दिखाने का फैसला किया था। इसके अलावा एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप कमेंट पढ़ने में सेंचुरी मार रहे हो भैया, शुक्रिया। एक और श्रोता है अनुपमा फिल्म का ये जो भावुक कर देने वाला गाना है, ये एक बात, और मेरे पिताजी का पसंदीदा गाना था, ये एक श्रोता की कमेंट है हेमंत की। हेमंत दा की आवाज में जैसे विषाद का स्वर घुला है, ये भी एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि कॉलेज से भागकर फिल्में देखना, ये तो मैं उस जमाने में सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुझे खुद बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाकर खर्चा निकालना होता था, इसलिए मैं अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं करता था। बहुत ही सुंदर प्यारी बात आपने कही है भाई। आज यानी इस शनिवार 8 अगस्त के दिन हम बातें कर रहे हैं और पूरा एक हफ्ता 15 अगस्त को बचा है, तो चलिए बचपन की यादों की तरफ जाते हैं। स्कूल के दिनों में 15 अगस्त की तैयारियां आप किस तरह से करते थे ये जरूर बताइएगा। कुछ लोग होंगे जो नाटक तैयार करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कविताएं और गाने तैयार करते होंगे। एक जमाना था स्कूलों में 15 अगस्त को जिस तरह से मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का बचपन का जो उत्साह है वो बहुत ही कमाल का रहा करता था। तो हम चाहते हैं कि आप वो यादें हमारे साथ बांटें। ठीक है, एक हफ्ता बचाए 15 अगस्त के लिए और हम ये यादें बांट रहे हैं। तब तक चलते हैं त्रिशूल फिल्म के एक ऐसे गाने की तरफ जो बहस करता है कि मोहब्बत काम की चीज है या नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपका मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं है, या आप ये कहते हैं कि ये बेकार बेदाम की चीज है।

एक श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत ईश्वर का खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, बस नीरसता रहेगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत एक सुंदर एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोहब्बत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी तो माँ ही प्रिंसिपल थी, इसलिए 15 अगस्त से काफी पहले गतिविधियां शुरू हो जाती थी, नाट्य गीत नृत्य कहानी सभी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के बारे में इस गाने में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपको आना था और हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था, बच्चे आ गए और हम थोड़ा बिजी हो गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज नहीं मिलती तब तक वो बड़ी अनमोल होती है, मिल जाने पर वो बेमोल हो जाती है। बचपन के 15 अगस्त की तैयारियां क्या खूब हुआ करती थी, कई दिनों पहले से ही मन में तिरंगा लहराने लगता था, स्कूल की सफाई, रंग बिरंगे कागजों से सजावट, प्रभात फेरी की तैयारी और हाथ में थामे छोटे से झंडे का गर्व, बिल्कुल अलग तरह का उत्साह होता था। एक और श्रोता, बचपन में 15 अगस्त की बड़ी भोर को अगल बगल के घरों से फूल तोड़कर जमा करके स्कूल ले जाते थे ताकि तिरंगे में बांधे जा सके। राष्ट्रगान के पश्चात मैं वीर रस गाने में मूल गायन करता था, हेडमास्टर से शाबाशी मिलती थी। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो सवाल आपने पूछा है, बहुत उत्साह से तैयारी करते थे, आज भी याद है, अपना स्कूल ड्रेस शूज सभी को धोकर तैयार करके हैंगर पर टांग कर रख देते थे, कब सुबह हो और जल्दी से तैयार होकर जाएं, और बूंदी के जो लड्डू मिलते थे यूं लगता था कि खजाना मिल गया है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती हैं कि 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होती थी और हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक और श्रोता कह रही है कि सुबह से इस गाने को याद कर रही थी पर यह याद नहीं आ रहा था। एक और श्रोता का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नृत्य की प्रैक्टिस किया करते थे और मोतीचूर के लड्डू आज भी उन्हें याद आते हैं। इसके अलावा साहिर लुधियानवी के बोलों की तारीफ हमारे कई श्रोताओं ने कही है और इस गाने में एक ऐसी तपिश है जो दिल को पिघला देती है। एक और श्रोता शिकायत करती है कि भाई हर रोज हमारे काम करने का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, लेकिन जिस दिन आप आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में हमारा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। भाई माफी चाहते हैं लेकिन सुरीला सफर में आना छोड़ नहीं सकते हम, आप अपना टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ कर रखिएगा और हम आते रहेंगे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि हेमंत कुमार की आवाज गंभीरता और मिठास लिए हुए हैं और 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में तो बस श्रोताओं के कमेंट लगातार

0: चले आ रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह की बात। एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह का कमेंट लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश और ठंडी ठंडी सुबह होती थी तो 15 अगस्त के दिन नहाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए ये क्या हुआ।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ?
0: क्या आप आम जिंदगी में इस गाने का इस्तेमाल करते हैं? किस तरह से, कब, जरा हमें बताइए।

0: शादीशुदा के देंगे मेरी लिस्ट का ये सातवां गाना भी बच गया है, यानी आज की इबारत में से उन्होंने बहुत सारा अंदाजा लगा रखा था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत बार जब सोचते कुछ और होता कुछ और है तो हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक और श्रोता है जो कहते हैं जब कोई चीज गुम जाती है तो मैं अक्सर गाता हूं ये क्या हुआ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस धरती के अनमोल रत्न से विभूषित किशोर कुमार, भाई किशोर कुमार की तारीफ करें। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ये क्या हुआ गाना बज रहा है, बादल छाए बस बारिश होने वाली है। एक और श्रोता एनसीसी में थी और वो कह रही हैं कि जो खाने का पैकेट मिलता था वो बहुत ही शानदार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, ये क्या हुआ जब तब हमारी जबान से ये निकल जाता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, 15 अगस्त की यादें, वो समूह गान, सब कुछ याद आ गया है। और एक श्रोता है जो लिखती है कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे स्कूल में परेड होती थी और हजरतगंज तक पैदल ही हम सब परेड में भाग लेते थे। इसके अलावा कुछ और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत यादें अपनी बांटी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे नींद खुल जाती थी, ये कल बूंदी वाले लड्डू मिलेंगे। भाई हाईलाइट है ये, बूंदी वाले लड्डू जो है ये सबके लिए एकदम कॉमन बात है। कितनी सारी यादें श्रोताओं ने साझा की हैं। और अब देखिए क्या प्यारा गाना साहिर लुधियानवी का,
1: खुद पे
0: क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहृदयता, संवेदना कम होती जा रही है।

ये लिखती हैं कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, ये गाना जमाने की हकीकत को दर्शाता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर संवेदना कम होती चली जा रही है तो उसकी एक वजह मोबाइल फोन है। और इसका एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भाई सचमुच आज संवेदनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहानुभूति होती तो है पर आज के लोग उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप में इतने गुम रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि आज का वक्त ऐसा है कि किसी को किसी के पास वक्त नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संवेदनाओं में 100% की कमी आई है। तो बहुत सारे श्रोता ये मानते हैं कि आज संवेदनाओं में लगातार कमी आती चली गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने 15 अगस्त की सुहानी याद के बारे में अपनी बात ये लिखी है कि मैं कक्षा छठी में थी और मुझे भाषण देने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं तो रो पड़ी थी। भाई देखिए, ये भी एक याद जो है वो उभर कर सामने आ गई। एक बहुत ही जज्बाती गाना अब आपके लिए, आपको बताना है कि हमने ये किस फिल्म से लिया है।

लता मंगेशकर की आवाज बहू बेगम फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज किसी की खुशी या परेशानी में रील बनाना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज लगातार जज्बात की कमी होती चली जा रही है। आखिरी गाना ये रहा। मदन मोहन और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये बताइए।

भाई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हो रहा है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में साथ निभाया और सवालों के जवाब दिए, कमेंट्स किए, गाने सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, क्योंकि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: त्रिवेणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 8 अगस्त की तारीख कैलेंडर की कोई आम तारीख लग सकती है, लेकिन भारत के इतिहास में ये तारीख सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई है। भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, क्रिप्स मिशन नाकाम हो चुका था, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जारी था जहां महात्मा गांधी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस तरह से भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान। आज भी भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति की याद दिलाता है। जन जन में रोष था, आक्रोश था और ऊर्जा थी, बुलंदी थी कि किसी भी तरह से अब देश को आजाद करना ही है। मुंबई से जो लहर शुरू हुई थी उसने धीरे धीरे पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। अब गांव गांव, शहर शहर बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो।

भारत छोड़ो आंदोलन का सिनेमा पर क्या असर पड़ा, इसकी एक मिसाल ये गाना है जो अभी आपने सुना। कवि प्रदीप ने जब ये गाना लिखा तो उन्हें अंग्रेज सरकार ने तलब किया और आरोप लगाया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी गाना है, पर उन्होंने बड़ी चतुराई से तर्क दिया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी नहीं बल्कि ब्रिटिश समर्थक गाना है। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। टॉकीज़ों में फिल्म को रोक रोक कर नौजवान बार बार इस गाने को दिखाने का अनुरोध करते थे। ये गाना जनमानस पर छा गया था। पूरे देश में अंग्रेजों का बहिष्कार किया जा रहा था, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, बच्चे हों या नौजवान या बुजुर्ग। भारत के कोने कोने से लोग सड़क पर निकल आए थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर बस ये तय कर लिया था कि अंग्रेजों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी का आखिरी बड़ा आंदोलन बना, जिसने इस देश की बुनियाद रखी, जिसने इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आजादी बहुत ही मुश्किल से, त्याग से, बलिदान से और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें हासिल हुई है। इस आजादी का मोल हर पीढ़ी को समझना होगा।

0: संभाल के।
1: कोई भी देश अपनी सीमाओं से नहीं बनता, अपनी ऐतिहासिक इमारतों से नहीं बनता, अपने इतिहास से भी नहीं बनता। देश बनता है जनमानस से, उसकी जनता से और उसकी जनता की चेतना से। अगर हम सचेत रहें, जागरूक रहें, देश के प्रति जिम्मेदार रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, खासकर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करते रहें, तो ये माना जाएगा कि हम अपने आजादी का मोल समझ रहे हैं, हम अपनी आजादी की कीमत चुका रहे हैं, हम देश के प्रति अपनी निष्ठा को ठीक तरीके से निभा रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे काम बहुत निष्ठा के साथ कर सकते हैं, जैसे हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बिजली और पानी को व्यर्थ न जाने दें, देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम हैं जो हम करें तो देश के लिए एक बड़ा योगदान हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन की याद के इस दिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रति जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है।

8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और आज त्रिवेणी में हमने आपको याद दिलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है और ये आजादी इतनी अनमोल क्यों है। तो अब इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।

0: अदर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना

0: में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी

0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा

0: में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे एसएच बिहारी की बोल ओपी ने फिल्म है ये रात फिर ना आएगी।
2: मैं

गुलजार के बोल हेमंत कुमार की तर्ज, उन्हीं की आवाज, सन्नाटा फिल्म का ये गाना था। इससे पहले सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज थी, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर की तर्ज थी।

12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे आप सुन रहे हैं सदाबहार रेडियो।

मेरे साया फिल्म का ये गीत आपने सुना, अर्शद भोसले की आवाज में था। नजम मेहंदी अली खान की बोल थी, मदन मोहन की तर्ज थी।

मेरे साया फिल्म का ये गीत आपने सुना, अशोक भोसले की आवाज में था। नजा मेहंदी अली खान की बोल थी, मदन मोहन की तर्ज थी।

0: फिल्म का नाम था दुल्हन एक रात की। ये गाना अभी आपने सुना और ये आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश थी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे।

0: हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर हम मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: मन चाहेगी। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
0: और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मन चाहेगी कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है मिस्टर नटवर लाल फिल्म के गाने से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें और फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, पलोमा और डॉक्टर ईशानी। और ये चिट्ठी लखी श्रीवास्तव, दिशा, दिव्यांश और रूही की है, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा ये खत है चेतन शामतकर और ज्योति शामतकर और पुरुषोत्तम शामतकर का, उल्हासनगर से। और इसी गाने की फरमाइश करने वाले ये श्रोता है गुजरात भावनगर से राहुल ओझा, दीपल और ये नाम कुछ प्राप्तक ओझा जैसा कुछ नाम लिखा हुआ है। और ये कर्नाटक से चिट्ठी है चिन्ना तिरुपति से श्यामला, प्रकाश, अश्विनी, रमेश।

रमेश आनंद और मनवित की आप सभी सुनिए ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत आनंद बख्शी, संगीत राजेश रोशन।

शैलेंद्र सिंह ने गाया है। आपको बता दें कि मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत आरडी बर्मन ने कंपोज किया और चिट्ठी लिखी घड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे संदीप अमूल्य और वैशाली बाठे ने। इसी गाने के लिए राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज का खत है और ये चिट्ठी है रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज, करणराज और पूरे सिसोदिया परिवार की केदारनाथ सोसाइटी से। वामन मगरे मराठवाड़ा नांदेड़ से इन्होंने चिट्ठी लिखी है और वारंगा फाटा जिला हिंगोली से कुंडलीक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी मोरे और वैष्णवी मोरे ने चिट्ठी लिखी और दिलचस्प ये है कि केदारनाथ सोसाइटी वाले हमारे श्रोताओं ने अपना नाम नहीं लिखा, वो नाम अपने शहर का नाम लिखना भूल गए। आपके लिए ये गाना

विविध भारती पर आप मनचाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब जो गाना आ रहा है उसके लिए आप सभी के खत मिले हैं। अल्लिया नगर केंद गांव से भाऊ साहिब, नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, रुचिता चंदन और इनका परिवार। ये चिट्ठी है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार, श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, आसमा, दीपक, अनुश्री और पूरे श्याम कुंवर परिवार की। और बहुत ही रंग बिरंगी चिट्ठी राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे की, जूना तारफैल, अकोला महाराष्ट्र से। फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा और ये पूरा परिवार हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गाने को सुनना चाहता है। उदयपुर से फरमाइश आई है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, तजीब खान, मंजू और निम्मी की। आप सभी की फरमाइश पर सौतन फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, गीत सावन कुमार, संगीत उषा खन्ना।

0: बिल्कुल नहीं।
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और मनचाही गीत कार्यक्रम में देश भर से हमारे श्रोता लिखते हैं चिट्ठियां और इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियां शामिल होने का और अपने गानों का। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता, ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंशराज गुर्जर और इनका पूरा परिवार, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं, और गणेश पेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया, और ये श्रोता हैं सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा संतानी, नैन्सी संतानी और सुमित संतानी, ये सभी सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, फिल्म है मशाल।

और अब मंचाए गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बहु बेगम फिल्म का गीत सहर लुधियानवी की बोल रोशन की तर्ज और आप सभी की फरमाइशें चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया वरुण जाउलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे निखिल साखरकर रोहित सुनीता अरविंद साखरकर और पूरा परिवार मालेगांव जिला वाशिम से और कबीर रेडियो श्रोता संग बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तमूरिया राधिका प्रभा देवी अजय देव देव शंकर तुषार देव तमूरिया और इनका पूरा परिवार ये गाना आप सभी की फरमाइश पर फिल्म का नाम है बहु बेगम माशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधु राय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। तो सुनिए नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग।
1: केशव कहाँ चला गया? केशव, तीसरी गलती हो गई। केशव से कहूंगी अनाउंस करे। हाँ है ये लेकर कि तुम केशव ठाकर जाके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? केशव कहाँ जा रहे हो? माइक्रोफोन तो ये रहा।
2: सॉरी सॉरी माइक्रोफोन, माइक रहा हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन नमस्कार देवियों और सज्जनों। हाँ, तो नाट्य मंच अपने नए नाटक के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर आप सबका सहर्ष स्वागत करता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है हास्य प्रधान नाटक किसी एक फूल का नाम लो। सज्जनों सज्जनों शांत, इसके लेखक हैं केशव ठाकर और निर्देशक जगन्नाथ पाठक। सज्जनों सज्जनों सुनिए सुनिए, कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। कांता कामनी देसाई, प्रमोद प्रमोद जगन्नाथ पाठक, भाभी स्वाति सोनी। सज्जनों शाल और सुनिए, नंदलाल प्रीतम सोनी, निरंजन सुंदर देसाई और देश पांडे केशव ठाकर। तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।

0: जानता, मान लो कि
1: प्रमोद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह कितनी देर हो गई।
1: दफ्तर जा रहे हो प्रमोद? जाओ।

0: con. नंदलाल भाई? हाँ, मैं कांता बोल रही हूँ। सुनिए, प्रमोद आज फिर झगड़ा करके दफ्तर चला गया है। हाँ, आज रात अगर आप हमारे यहाँ आ सके ज्योत्सना भाभी को लेकर तो ठीक रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ, प्रमोद को खुद फोन करके बता दे, निरंजन को मैं बता दूंगी। अच्छा, रात को जरूर आइएगा। बाय।
1: कहो मेरी जान।
0: ओह, तुम आ गए निरंजन। आज रात को फैसला हो जाएगा। मैंने नंदलाल भाई और भाभी को बुलाया है।
1: सच मेरी कांता?
0: करते रहो, कितने सब आ गए। आओ, सब आ जाओ। आज मेरी अर्थी उठ रही है, रोने वालों की जरूरत होगी। नंदलाल भाई आओ, ज्योत्सना भाभी आओ, निरंजन तुम भी आओ।
2: आखिर हुआ क्या कांता?
0: अरे नंदलाल, मैं बताती हूँ। असल में कांता और निरंजन।
1: नहीं नहीं नहीं, ये बात झूठ है। हम प्रेमी नहीं है।
2: प्रमोद, तुम ये क्या टाइप कर रहे
3: हो? आज जहाँ दंगा होने वाला है नंदलाल भाई, उसी को खत्म करने के लिए मैंने अपना यह घोषणा पत्र तैयार किया है। तो सुनो, आई प्रमोद पटेल, हस्बैंड ऑफ माय मोस्ट बिलवड वाइफ कांता पटेल, मैडम नेम कांता गोस्वामी, डू हियर बाय डिक्लेयर।
0: अरे प्रमोद भाई सुनिए ना, मैं तुरंत अनुवाद कर सकती हूँ। लाइए अपना कागज, मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ।
3: ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: अच्छा, तो प्रमोद भाई कहते हैं, मैं प्रमोद पटेल, कांता पटेल का स्वामी, घोषणा करता हूँ कि मेरी किसी समय प्यारी पत्नी कांता मेरे विश्वास पात्र दोस्त निरंजन को चाहती है, इसलिए आज फला साल के फला महीने की फला तारीख को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से मैंने अपनी जान देने की घोषणा की है।
3: मुझसे सुनो मेरी घोषणा। मैं प्रमोद पटेल अपनी सारी ताकत जुटाकर कांता के छिपाए हुए पिस्तौल से आत्महत्या करता हूँ। अलविदा, अलविदा।
0: मुझे विश्वास हो गया है कि।
3: कैसा विश्वास?
0: कि तुम मुझे प्यार करते हो।
3: फिर भी मैं अपनी घोषणा पर।
0: नहीं, प्रमोद रुक जाओ।
3: नो,
0: इस पिस्तौल से मैं ही मरूंगी। लाओ पिस्तौल मुझे दो।
3: कांता, ये पिस्तौल मुझे दो। तुम्हारा संसार उजड़ने के पहले मैं ही इस पिस्तौल से।
0: खबरदार निरंजन, तुम मेरे जीवन में तो आए, पर अब मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना, वरना आगे इस पिस्तौल से।
3: ठीक है, पहले मुझे मार डालो, मेरी दुखी आत्मा को शांति दो। कांता, कांता मुझे गोली मार दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ से पिस्तौल लेकर आत्महत्या कर लूंगा।
0: सर, तुम मुझे इतना प्यार करते हो निरंजन।
3: कांता, कांता तुम मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो, या पिस्तौल मुझे दो, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। तुम दोनों प्रेमी जियो और खुश रहो।
2: सुनो प्रमोद, तुम्हारी पत्नी यदि दूसरे को चाहती है तो इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे शादी करने से पहले मेरी इस पत्नी ज्योत्सना को किसी दूसरे से प्यार था।
0: है? नंदलाल, इस रहस्य का तुम्हें पता था?
2: तुम्हारा प्रेमी देश पांडे थोड़े दिन हुए वो मेरे पास आया था पैसों के लिए।
3: कैसे पैसे?
2: ब्लैकमेल के पैसे।
0: लेकिन ब्लैकमेल किस लिए?
2: उसके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं।
0: है?
3: कितने रुपए मांगता है वो?
2: सौदा आज पक्का होगा, वो आता ही होगा यहाँ।
0: यहाँ?
2: हाँ, मैंने देश पांडे को यही का पता दिया है। और अब प्रमोद, कांता और निरंजन तीनों से मेरी प्रार्थना है, देश पांडे यही आ रहा है, तुम में से जो भी मरना चाहता है वो उसे मारने के बाद मरे, तो मैं उसका एहसान मानूंगा।
3: प्रमोद, तुम्हारा इरादा मुझे मारने का हो तो रुक जाओ, मैं देश पांडे का खून करूंगा और इस तरह फांसी पर लटक कर तुम्हारी और नंदलाल की दुनिया आबाद कर जाऊंगा। अब शायद देश पांडे आ गया, मैं दरवाजा खोलता।
0: नहीं, तुम यही रुको प्रमोद।

0: अरे शायद भागने का इरादा है। दरवाजा मैं ही खोलूंगी।
1: कांता, अपना पिस्तौल मुझे देती जाओ, उस चांडाल का मैं खून करूंगी।
2: ये मेरा घर, मैं ही उसका खून करूंगा। तुम्हें करना हो तो उसे अपने घर ले जाओ। लो वो आ गया।
3: आप सबको नमस्कार, माफ कीजिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
4: गुड इवनिंग मिस्टर देश पांडे।

0: मिस्टर देश पांडे ये सब मेरे मित्र हैं। ज्योत्ना तुम तो इन्हें मिस्टर देश पांडे को जानती हो।
1: हाँ हाँ।
0: और प्रमोद, कांता, निरंजन, ये है मिस्टर देश पांडे जिनका होम कौन करे इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। हैं? सब लोग एक पंक्ति में क्यों बैठ गए?
2: आखिर बात क्या है नंदलाल?
0: तुम्हें नहीं, मैं इस थिएटर हॉल में बैठे हुए दर्शकों को सब बताता हूं। देवियों और सज्जनों, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद, कांता और निरंजन एक दूसरे के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, एक दूसरे से अपना खून कराने के लिए जोर दे रहे थे। और अब सवाल है मिस्टर देश पांडे के खून का। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि ये रहस्य नाटक है। इस नाटक के सभी पात्र यहां मौजूद हैं। आप विद्वानों में से कोई भी ये बता दे कि किसका खून होगा और कौन खून करेगा तो उसकी अक्ल की मैं दाद दूंगा। आपको बस इतना बता दूं कि खून इनमें से ही किसी एक का होने वाला है और इनमें से ही कोई करेगा भी।
1: नंदलाल, मेरे हाथ में ये पिस्तौल देख रहे हो ना? मैं तुम्हारी तिक्रमों से तंग आ चुकी हूँ। अरे, हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले, मैं तुम्हारा खून करती हूँ।
0: अरे ज्योत्ना, ये क्या कर रही हो?
1: भाभी,
0: ये पिस्तौल असल है,
1: मेरे पास रहने दो। भाभी, ये पिस्तौल मुझे दो। क्या कर रही हो तुम? हम क्या हो भाभी? शेखर खोसला, शेखर खोसला।
3: खून हो, खून हो,
4: मैं सच कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
5: आपका नाम? उम्र? काम?
4: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, उम्र 33 साल, काम नाटकों में अभिनय करना।
5: सरकारी वकील दवा से गिरा कर सकते हैं।
4: थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुंजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
6: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
4: कुछ और?
6: मतलब?
4: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?
6: जी जी हाँ, कामिनी देसाई मेरी प्रेमिका है।
4: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, क्या ये भी सही है कि आप दोनों अगले महीने की 15 तारीख को शादी करने वाले थे?
6: जी जी हाँ।
4: 15 को ही क्यों?
6: वो हम लोग एक नया नाटक तैयार कर रहे थे और उम्मीद थी कि नाटक सफल होगा और उसकी आमदनी में से हम हनीमून के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे।
4: ये नाटक कब हुआ?
6: पिछले महीने की 1 तारीख को।
4: नाटक का नाम क्या था?
6: किसी एक फूल का नाम लो।
4: उस नाटक में आप दोनों के अलावा और किन किन लोगों ने काम किया था?
6: प्रीतम सोनी, स्वाति सोनी, सुंदर देसाई और
7: केशव ठाकर का नाम लेते लेते रुक क्यों गए? उसके नाम को लेकर उस दिन कामनी से तुम्हारी जो बातचीत हुई थी वो क्या भूल गए हो?
8: हम दोनों, प्रीतम, स्वाति और सुंदर, ये तो नाटक के पात्र पक्के हो गए।

0: लेकिन छठे पात्र के लिए कोई नहीं मिल रहा।
1: छठे पात्र के लिए सुनो, छठे पात्र के लिए केशव ठाकर।
0: केशव ठाकर वो लेखक
1: इसमें हंसने की क्या बात है, छोटा सा रोल है, बहुत मजा आएगा। है
0: सुंदर से पूछ ले।
1: आता ही होगा सुंदर भी। जी मेरा नाम सुंदर देसाई, उम्र 30 साल, काम नाटकों में अभिनय करना, मुल्तबा कामनी देसाई, उसको मैं जन्म से जानता हूँ सर। हम सब नाटकों में काम करते हैं, किसी एक फूल का नाम लो नाटक में हम सब ने काम किया था। कामनी देसाई मेरी सगी बहन है सर, सगी बहन।
2: आप दोनों साथ रहते हैं?
1: जी हाँ, मैं कामनी और मेरी माँ तीनों साथ रहते हैं।
2: तीनों साथ रहते हैं। कामिनी ने जिसका खून किया उसके बारे में आप क्या जानते हैं?
1: जी नहीं, उसके बारे में मैं पहले कुछ नहीं जानता था। उसके मरने के बाद जाना कि उसका नाम शेखर खोसला था और वो किसी बड़ी फर्म का मालिक था।
2: उस नाटक में हत्या की घटना थी और उसमें पिस्तौल की जरूरत थी, ठीक है?
1: जी हाँ, लेकिन पिस्तौल में गोली नकली भरनी थी।
2: जगन्नाथ पाठक और कामनी दूसरे से प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं?
1: जी हाँ, पाठक मेरा पुराना दोस्त है, हमने बहुत से नाटकों में एक साथ काम किया है। कामनी और पाठक ज्यादातर नायक नायिका का काम करते थे और जाहिर है।
3: सच सच कह दूं ना कि तुम्हें अपनी बहन कामनी और पाठक की शादी की बात पसंद नहीं थी?
1: जाहिर है तुम दोनों में प्यार है और तुम शादी करोगे।
0: सुंदर, पाठक का कहना है कि मेरा इससे शादी करना तुम्हें पसंद ना होगा।
1: बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
4: सुन लिया कामनी?
1: अरे वो तुम्हारा प्रीतम लाल नहीं आया?
4: तुम मुझे प्रीतम लाल क्यों कहते हो?
1: अरे लगता है प्रीतम सोनी आ रहा है।
0: लेकिन वो तो अकेला ही आ रहा है।
4: प्रीतम, स्वाति सोनी कहाँ है?
5: आती होगी, वो सीधी आने वाली थी।
1: अच्छी स्वाति जरूर आई ही ना।
6: सुंदर,
1: अरे पाठक यार डांटते क्यों हो? मान लिया तुम इस नाटक के डायरेक्टर हो, लेकिन रिहर्सल में अनुशासन जरूरी है। आई वांट डिसिप्लिन, आई से।
6: अरे यार मैं स्वाति से शादी का प्रस्ताव नहीं करने वाला।
7: जी मेरा नाम प्रीतम लाल, कंचनलाल सोनी, उम्र 42 साल, काम अभिनय। जी कामनी को मैं 7-8 साल से जानता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं मरने वाला कौन था। मेरा ख्याल है कामनी पाठक के प्यार में।
2: आपने ये कैसे मान लिया?
7: कामनी ने मुझसे कहा था कि पाठक उससे शादी नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगी।
2: अच्छा, पिस्तौल चलाने की बात नाटक में लिखी हुई है क्या?
7: जी हाँ, नाटक में नंदलाल ये कहता है कि
2: मिस्टर प्रीतम, अच्छा ये बतलाइए कि पिस्तौल में असली गोली कैसे आई?
7: जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कामनी भोली होने के कारण कई बार उत्तेजित होती, पर किसी को उससे बैर हो या उसे किसी से बैर हो ये नहीं माना जा सकता।
2: आपकी पत्नी स्वाति सोनी और?
7: जी
8: मैं स्वाति सोनी हूँ, पति का नाम प्रीतम सोनी, उम्र 37 साल, व्यवसाय गृहिणी का, और कभी कभी अपने पति प्रीतम के साथ नाटक में काम करने का। कामनी मेरी पक्की सहेली है, लगता है किसी ने उसे फंसाया है। मैं तो मान भी नहीं सकती कि उसने ऐसा किया होगा, इसमें जरूर कोई धोखा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती।
2: रोने की जरूरत नहीं, सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। क्या ये सच है कि कामनी और पाठक के बीच प्यार था?
8: जी हाँ।
2: कामनी को किसी और से भी प्यार था?
8: जी हाँ।
2: हाँ या ना?
8: जी इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकूंगी।
2: क्या मतलब?
8: कामिनी एक सफल अभिनेत्री है, उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो एक भावुक स्त्री है और स्त्री का हृदय।
2: बस बस, ठीक से सोचकर जवाब दीजिए। आप बता सकती हैं पाठक और कामिनी की शादी करने पर क्या किसी को एतराज था? पाठक की कामनी के सिवाय कोई दूसरी प्रेमिका थी या नहीं, और कामनी का पाठक के सिवाय कोई दूसरा प्रेमी था या नहीं?
8: जी माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
2: याद रखिए, आपने हल्फ उठाया।

0: हाँ जानती हूँ, मैंने हल्प उठाया है, पर मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकती।
1: एक सवाल, आप मृत शेखर खोसला के बारे में कुछ जानती हैं?
0: जी नहीं, जी नहीं, मैं शेखर खोसला या किसी के बारे में कुछ नहीं जानती।
1: आप कुछ छिपा रहे हैं।
2: आप क्या कहना ना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं मुझसे, मुझसे क्या कबूल करवाना चाहते हैं आप?
3: कामनी जी भाई, सुंदर के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो कबूल कर लो ना। अपने पति प्रीतम से छिप छिप कर उससे मिलती हो और कहती हो कि
4: सुंदर तुम बेकार इतनी करवाहट लाते हो, हमें कभी मुश्किल से तो ऐसा एक कौन मिलता है।
5: ये तुम सोचती हो प्रीतम को पता नहीं चलेगा?
4: प्रीतम बहुत सीधा है, उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछा।
3: लेकिन कोई और जानता है?
5: कोई और जानता है?
3: केशव ठाकर।
5: केशव ठाकर, वो बुद्धू लेखक?
4: हाँ वो बुद्धू लेखक,
3: वो मूर्ख बना फिरता है,
4: शायद है भी, लेकिन उसकी नजर बड़ी तेज है।
6: मेरा नाम केशव ठाकर, मेरा मतलब है केशव लाल पुरुषोत्तम ठाकर, पेशा नाट्य लेखन।
1: तो आपने उस नाटक में देशपांडे का पाठ किया?
6: जी जी, मैंने देशपांडे का पाठ किया।
1: आप किस नाटक मंडली के लोगों से जान पहचान कैसे हुई?
6: वो बात यह है कि वो सुंदर देसाई है ना, उसके साथ एक बार अचानक मुलाकात हो गई थी, जहाँ वही मुझे अपनी मंडली में ले गया।
1: अच्छा, वो नाटक किसी एक फूल का नाम लो आपने लिखा था?
6: जहाँ जहाँ मैंने लिखा था।
1: उसमें पिस्तौल की जरूरत थी? आप कामिनी देसाई के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस खून के मसले पर रोशनी डाल सके?
6: वकील साहब, अजी आज सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा।
1: कामिनी देसाई का पाठक के सिवा कोई दूसरा प्रेमी भी था?
6: जी
1: मैं पूछ रहा हूँ, कामिनी का कोई दूसरा प्रेमी भी था?
6: जी, उसका एक दूसरा प्रेमी भी था।
5: तो आप ये भी बता दो कि कैसे तुमने कामनी के ही कारण नाटक लिखा, कैसे कामनी के निकट रहने के लिए तुमने उस नाटक में छोटा सा पार्ट करना स्वीकार किया, और कैसे नाटक की रिहर्सल में तुम हर तरह का अपमान सह लेते थे, और उस दिन रिहर्सल में कामनी को सम्मुख पाकर तुम इतने नर्वस हुए कि सिगरेट का जलता हुआ सिरा मुंह में डाल दिया और मुंह चला लिया।
0: कुछ नहीं।
1: तुम कामनी को दीवानों की तरह के घूर रहे?
6: कुछ नहीं, वो जरा
1: आंशस हो गया। अच्छा ठीक है,
7: ये पाठक भी आज कुछ
1: बस आप रिहर्सल शुरू करें। कामनी, तुम ठाकर के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? उसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रही हो उसे?
8: कह रही हूँ
4: क्यों बेकार ईर्ष्या करते हो?
1: स्टॉप इट,
4: रिहर्सल शुरू करो ना। तुम प्रमोद का डायलॉग बोलो तो मैं कांता का डायलॉग बोलू?
1: कांता मान लो,
4: मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्रमोद, तुम अपनी से छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी।
1: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है।
6: जी हाँ, कामनी का दूसरा प्रेमी था, और वो मैं खुद था, ये केशवलाल पुरुषोत्तम ठाकर।
1: कामनी भी आपसे प्रेम करती थी?
6: जी नहीं, वो तो मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं मनी मन उससे प्रेम करता था और अब भी करता हूँ। कामनी जी जमीन पर चले उसे मैं चूमने को तैयार हूँ, और जो वो कहे।
1: मतलब आप मन ही मन कामिनी से प्रेम करते थे?
6: जी हाँ, और उसके सामने मैं नर्वस आ जाता, यानी कि घबरा जाता।
1: अच्छा, मरने वाले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
6: जी उसका नाम शेखर खोसला।
1: सवाल ये है कि शेखर खोसला के बारे में आपके पास कोई खास जानकारी?

0: करिए।
1: आज देख ले कि सब इस दुनिया में कौन किसी को जान सका है।
2: हाँ या ना में जवाब दीजिए।
1: किस बात का जवाब?
0: शेखर खोसला को आप उसकी मौत से पहले जानते थे?
1: अजी इंसान को देखे ना दो तरह से जाना जाता है, एक उसे प्यार करके और दूसरे उससे नफरत करके। भाई हमारी जानकारी हमारी समझ से बनती है। अजी मैं तो न तो शेखर खोसला से प्यार करता था न नफरत।
2: बेकार की बात मत कीजिए।
0: अगर सीधा जवाब न दिया तो अदालत के अपमान के जुर्म में सजा होगी और झूठा जवाब दिया तो जेल।
1: अब देखिए वकील साहब आप तो खामखा डरवा रहे हैं। अजी क्या सच क्या झूठ इसका फैसला कर सकूं? जी इतना विद्वान तो मैं नहीं।
0: आप शेखर खोसला को जानते थे?
1: जी,
0: हाँ या ना?
1: जी जी कुछ नहीं याद नहीं।
0: याद कीजिए, आपने उसे 1000 रुपए दिए थे, ये सच है?
1: जी क्या बात करते हैं वकील साहब। जी बहुत लोगों ने मुझे कई बार 1000 रुपए दे दिए होंगे। अब देखिए ना अब उस सबका हिसाब तो मुझे याद नहीं।
0: ठीक, दूसरा सवाल, नाटक में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ और जिससे खून हुआ उसमें असली गोली किसने भरी थी, आप बता सकते हैं?
1: जी नहीं।
0: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: कुछ नहीं।
0: ठीक से याद कीजिए।
1: जी वो जी मेरी याददाश्त अच्छी नहीं।
0: ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला से आपने 1000 रुपए लिए और ये नाटक लिखा जिसमें शेखर खोसला का खून हुआ। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था? मिस्टर केशव ठाकर चुप क्यों है, बताइए शेखर खोसला कौन था?
3: छिपा क्यों रहे हो? बता दो ना। अच्छा तो तुम कामनी और पाठक की वो बात बता दो जो उस दिन तुमने ओट में छिपकर सुनी थी। किस दिन? मैं तो प्रायः रोज ही छिपकर कामनी को देखा करता था। अरे उस दिन रिहर्सल के बाद जब तुम कामनी से मिले थे और फिर ओट में छिप गए थे।
4: कामनी, रिहर्सल के बाद केशव ठाकर तुमसे क्या कह रहा था?
5: कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, बेचारा सिर्फ गौरम है, मेरी तारीफ कर रहा था।
4: सच बताओ कामनी।
5: पाठक कितने शक्की हो तुम, सोचते हो मैं संतोष को प्यार करती हूँ?
4: नहीं, लेकिन ये जरूर सोचता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो।
5: मान लो छिपा रही हूँ, फिर
4: तो फिर हमारे संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सीधी सादी बात।
5: धमकी देते?
4: सफाई चाहता हूँ।
5: कैसी सफाई? ओह, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, शक्की अंधे फूंधे पति की तरह पूछे जा रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
4: यानी कि तुम कुछ छिपा रही हो?
5: हाँ मैं कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती। विश्वास कर सको तो करो कि जो कुछ मैं छिपा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, धोखा देने के इरादे से नहीं।
4: यार चरित्र की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कि तुम जो छिपा रही हो वो चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो मैं उसे छेड़ लूंगा? ऐसा क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं रहूंगा?
0: मिस्टर केशव ठाकर
1: जी
0: क्या सोच रहे हैं बताइए। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था?
1: जी जी वो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा वकील साहब। मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
6: सरकारी वकील अपनी जगह बंद करें, अब अदालत खुद पांचों गवाहों से सवाल करेगी। केशव ठाकर
1: जी,
6: शेखर खोसला कौन था?
1: जी जी कहा ना हुजूर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
6: स्वाति सोनी, शेखर खोसला कौन था?
5: जी कैसे समझाऊं आपको, मैं कैसे समझाऊं एक स्त्री के दिल की बात, मैं कैसे कहूं शेखर खोसला कौन था? मैं शेखर खोसला को जानती हूँ या कि

0: कर खोज लगो, नहीं जानते ना।
1: प्रीतम सोनी, शेखर खोसला कौन था?
2: जी नहीं, मैं शेखर खोसला को नहीं जानता। इसके बारे में मुझे मुझे कुछ पता नहीं।
1: सुंदर देसाई, आपकी बहन कामनी जिसका खून किया, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं?
2: जी हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बात ये थी सर कि थिएटर हॉल में औरों की तरह वो भी निमंत्रित था, और निमंत्रण पत्र उसी संस्था ने भेजे थे जिसने हमें नाटक खेलने के लिए बुलाया था। मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
1: जगन्नाथ पाठक, शेखर खोसला के बारे में क्या आप जानते हैं?
2: मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
3: किसी एक फूल का नाम लो। इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी, प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की थी। इस नाटक का दूसरा भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का पहला भाग।
2: जो तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, आज स्वागत कर रहे हैं हम सभी उनका जिनके इशारों पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थिरके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महेश बाबू, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और लगभग 30 से अधिक दिग्गज अभिनेताओं को अपनी कोरियोग्राफी से नया अंदाज देने वाली, वहीं माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जूही चावला, अमीषा पटेल, अंतरा माली और अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के यादगार गीतों को अपनी कल्पना और सृजनशीलता से जीवंत बनाने वाली बड़ी प्यारी सी कोरियोग्राफर। आज की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
4: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
3: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
4: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया
3: जी,
4: उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख

0: रही थी।
1: ओके
0: तो हुआ यूं कि घर की जरूरतें होती है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहां पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक, मधुमती एकेडमी। मधुमती जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती
1: जी,
0: थी,
1: जी, जी, बिल्कुल।
0: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहां पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में।
1: क्या उम्र होगी वो लगभग?
0: सेवेंथ स्टैंडर्ड में होंगी। तो मेरी
1: 12-13
0: बहन और
1: साल
0: मैं,
1: में।
0: हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे।
1: जी
0: बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम
1: जी
0: दोनों को बुलाते थे कि
1: अच्छा,
0: आप
1: डांस
0: कंपटीशन में आ जाओ।
1: करेंगे। जी
0: तो मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी।
1: जी
0: मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी। तो
1: अच्छा।
0: जरूरत तब हुई जब लगा कि फीस भरना है, छोटे भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं, तो
1: अच्छा।
0: लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए। ट्यूशन देती थी, फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते। तो मधुमती मैम ने देखा तो मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
1: अच्छा,
0: और
1: एक
0: वहां
1: हाथ
0: पे
1: मिल
0: मैं,
1: गया।
0: हाँ, एक हाथ मिल गया। और वहां पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो
1: अच्छा
0: पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को।
1: जी,
0: तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि
1: हाँ
0: उर्दू सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी उनके साथ। एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें। अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है, तो
1: अच्छा,
0: मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम,
1: सिखा
0: अपने
1: लो।
0: साथ रख के आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे,
1: जी
0: और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो।
1: जी,
0: और एक, हमारी तरबियत को नहीं भूलना है,
1: क्या बात
0: अपनी
1: है।
0: तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
1: मतलब नदी जैसे बहारे बहते जाओ, लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं
0: बिल्कुल
1: है। जी, बहुत
0: बिल्कुल,
1: बढ़िया बात
0: बहुत ज्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में मिलके वहां चला जाए,
1: जी,
0: समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। वहां से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज के ऑफर आने लगे। तो गणेश हेगड़े जी,
1: जी
0: जो बहुत
1: बहुत
0: बड़े
1: बढ़िया
0: कोरियोग्राफर है,
1: कोरियोग्राफर
0: उन्होंने
1: हैं।
0: मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप, गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज
1: बिल्कुल
0: के कोरियोग्राफर्स हैं।
1: जी,
0: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा। तो अम्मी
1: हाँ,
0: मेरी
1: तो
0: हमेशा साथ होती थी।
1: अमाउंट के लालच में आप काम
0: अमाउंट ये
1: कीजिए।
0: था, हाँ, कि एक इतना अमाउंट आएगा तो दिमाग सोचने लगा कि अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमती मैम
1: कैलकुलेशंस
0: ने,
1: चालू
0: हाँ,
1: कर
0: मधुमती
1: दिए।
0: मैम ने बोला बेटा करो, बुरा नहीं है।
1: हाँ,
0: अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के। तो
1: जी।
0: वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां से। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी,
1: तो आप उस
0: मुझे,
1: समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में
0: नहीं
1: कर रही
0: बिल्कुल
1: थी
0: नहीं
1: या लीड डांसर्स थे?
0: नहीं मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो
1: अच्छा
0: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे, तो
1: जी
0: पहले गणेश हेगड़े, लॉलीपॉप, इन्हीं का ट्रुप चलता था।
1: जी
0: उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां 12 लड़कियां ऐसे होती है। उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी, जो अभी कोरियोग्राफर है।
1: जी
0: तो पोनी वर्मा ने, यू नो, शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी। तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेश आचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो
0: हाँ,
1: चेहरा अलग
0: तो
1: दिखता है,
0: क्योंकि आप
1: चमकता है।
0: क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं,
1: जी
0: उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ
1: जी
0: तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है
1: घुसा
0: बचपन
1: हुआ है
0: से।
1: जी।
0: तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी, जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो
1: जी
0: मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी। मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई। उन्होंने
1: अरे
0: अम्मी
1: वाह
0: से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था
1: तो उन्हें
0: काफी
1: एक
0: उस
1: और
0: वक्त
1: हाथ
0: पर।
1: चाहिए था। जी
0: तो फिर उस तरह से, माई मदर यूज टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजंस, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी। तब तक मैं यहां पहुंची 8-9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे थे
0: स्टिल
1: आप,
0: स्कूल में थी।
1: बहुत
0: तो वो
1: छोटे थे।
0: मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3-4 साल काम किया, बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते, सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का
1: क्या
0: मौका
1: बात है,
0: मिला। फिर एक, मैं सरोजी की बहुत बड़ी फैन थी,
1: बिल्कुल
0: मैं काम
1: सब
0: बहुत बड़ी
1: है।
0: फैन, मतलब मैं
1: मास्टर जी के फैन सब
0: सब
1: है
0: है। जब
1: जी।
0: मैं असिस्टेंट थी उन

0: गाने देख देख कर उनकी जो लचक, उनका ये, उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एकलव्य, काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एकलव्य बन गई।
1: क्या बात है।
0: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोजी समा गई, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए
1: जी।
0: तो वो एक उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एकलव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
1: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे, है ना?
0: बहुत ज्यादा।
1: तो कोई गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना है?
0: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन।
1: तो हमारे विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे।
0: आप जैसे देखो, मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो है प्यार दू, गोरी बैया तो पे वार
1: दू। जी जी जी।
0: तो जो अल्फाज, जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स, लता जी जब गाती थी तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए।
1: जी।
0: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ।
1: जो तो मुझे सुन दे, एक हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
0: एक तो पहले सुनाइए, आजा पिया तो ही प्यार दू, गोरी बैया तो पे वार दू।
1: चलिए,
0: उसके बाद
1: जी, उसके बाद
0: उसके बाद लग जा गले,
1: अच्छा
0: के फिर ये हंसी रात होना।
1: बड़ी बढ़िया सी फरमाइश है आपकी, पर हम आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है आजा पिया तो है प्यार दूं का, एक फिल्म का गाना। सुनते हैं ये गीत,
0: प्लीज सुनाइए।

0: तो शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीजें तो हम जानते ही नहीं थे, और कई सारे लोग बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे, आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
1: सी, जब हम असिस्टेंट होते तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है, आजकल अलग माहौल है। जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200%

0: निखार के उनको दिखाना है।
1: जी जी।
0: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
0: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है
1: जी,
0: उस लेवल पे करना है। वहां पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
1: शुरू हो जाती है,
0: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे डांसर,
1: वेरी गुड डांसर,
0: वेरी ग्रेसफुल। उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है, जो कमल मास्टर जी थे
1: जी,
0: और वो कमल मास्टर जी बहुत कमाल। उन्होंने एक ट्रेंड, जिसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था
1: जी,
0: भोली सूरत दिल के जो वो हाथ का स्टेप
1: था, कमल जी का दिया,
0: वो कमल जी उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी, उनके असिस्टेंट हूँ मैं।
1: तो बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही है।
0: बिल्कुल। वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे।
1: हाँ।
0: कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी। और वही मास्टर जी करते थे, गणेश मास्टर जी। वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
1: क्या डायलॉग है।
0: हाँ, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती
1: जी।
0: तो ग्रेस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो, तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल, आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है। तो इसलिए
1: एक्सप्रेशन उसको आपसे मिलेंगे।
0: बिल्कुल।
1: फीमेल
0: अदायगी मुझसे मिलेगी। डुएट सॉन्ग है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं, व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं असिस्टेंट थी
1: जी
0: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है।
1: हाँ।
0: तो मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर को कॉपी करना और करके दिखाना
1: जी।
0: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के, जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ, गणेश मास्टर जी ने की है।
1: और गणेश मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान।
0: शबीना खान। तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते, अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी तो करिश्मा आपकी तरह कर रही थी। तो ये जो
1: मैं ही सिखा रही थी,
0: मैं ही, हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते। तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं।
1: तो फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं। अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इरा का, जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया।
0: मैं मजेदार बताऊं थोड़े से, लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें
1: जी,
0: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी दे दे पीछे पीछे पीछे पीछे। उसमें मैं असिस्टेंट थी और जितने लोग मुझे अब देखते हैं, जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती थी।
1: नहीं, आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से। तो
0: उस वक्त काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो
1: जी।
0: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
1: बिल्कुल ये गाना हम जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरुला जी ने गाया हुआ ये गाना है, और बड़ा खूबसूरत वो बुलंद आवाज के साथ, उस बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है। तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे। इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शमीना खान पूरा डांस दिखा रही हैं, और जो रानी मुखर्जी है उस डांस को कर रही हैं। तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।
0: ठीक है।

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है, हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी, वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: सो ऐसे इंसिडेंट तो दो तीन बार हुए हैं
0: जी।
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूँ
0: हाँ।
1: और अरबाज खान को
0: हाँ।
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है।
0: अच्छा,
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हू बेटर देन शबीना।
0: हाँ।
1: सो बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके YouTube पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी,
0: ऐसा मुझे भी समझ नहीं आया था।
1: हाँ, आप देखिए गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर दैट सॉन्ग ब्रदर हेलो ब्रदर,
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं बट
1: मैं हूँ, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है। तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या, बहुत लोगों को लगता था। इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट पर्सनालिटी बाल काफी कुछ मिलता था उस वक्त
0: जी।
1: और फिर एक गाना था काली नागिन की जैसी जुल्फे तेरी काली काली, मैं असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी के साथ हो जाते थे।
0: अच्छा,
1: तो वो एक गाना था, उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने
0: का मटकी फोड़ने वाला गाना,
1: मटकी फोड़ने वाला गाना, वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइट शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहाँ पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले, तो आई यूज्ड टू डू इट।
0: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए, मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
0: जी जी जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय।
1: बहुत सारे
0: जी। उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया?
1: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां हैं वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने।
0: पढ़ाई नहीं छोड़नी है जी, बहुत।
1: तो मेरे असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की, कॉलेज जाना शुरू किया, काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ अपनी बहन भाइयों की पढ़ाई।
0: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
1: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
0: आप कोरियोग्राफी के साथ?
1: हाँ, तो क्योंकि मैं कोरियोग्राफर कभी बनना नहीं चाह रही थी, मैंने काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है
0: जी।
1: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने एक साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की काम भी किया, सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
0: पैसों की भी
1: जरूरत थी और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था क्योंकि जिंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था।
0: हारे तो कभी नहीं थे?
1: कभी हारे नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहां से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं।
0: अच्छा।
1: कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन कम्प्लीट करते फिर देखते।

0: क्या होता है। तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
1: मतलब आपने जो भी पढ़ा अच्छा कठिन ही पढ़ा।
0: हाँ,
1: इलेवेंथ ट्वेल्थ भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे बायोटेक्निकल नेम्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे।
0: तो ऐसा होता था कि असिस्टेंट डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी।
1: ये बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल, यही मैं चाहती थी कि आप जरिए बता
1: तो हमारे कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: प्लस पढ़ाई भी हो रही है वो भी साइंस की, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स।
0: बिल्कुल,
1: ये तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना याद करना, फिजिक्स की मैथ्स भी होती है।
0: बिल्कुल, इसलिए जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी।
1: कॉमर्स भी इजी नहीं
0: है। बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास की, मतलब मैं खुद पढ़ाई में अच्छी। हाँ, तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड विच इज हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो। तो जो पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है। जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ एक नॉलेज था, पढ़ाई का, डिसिप्लिन का।
1: जी,
0: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है।
1: जी,
0: वो आज भी मेरी लाइफ में है, इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है।
1: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज्यादा होगी और वो सब करके आप हर फील्ड में आप जीती।
0: बिल्कुल, और इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है
1: जी।
0: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है जिन्हें अच्छे दिखना है, सुंदर दिखना है, लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो तो मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके।
1: क्या बात है,
0: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म।
1: सुकून की नींद नहीं, पेट भर के भूख नहीं,
0: बिल्कुल,
1: और एक अलग बेचैनी।
0: ये बिल्कुल, मैं अपने
1: इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम करने के लिए लग जाना।
0: 4 घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए।
1: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कुछ जाग रहा है।
0: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है हमेशा।
1: जी,
0: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं, मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है
1: इतना होने के बाद,
0: ये भूख ही मुझसे करवाती है। तो मैं सर,
1: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के लिए।
0: बिल्कुल, तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि ये कब हुआ, जब कोरियोग्राफी शुरू की।
1: जी,
0: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना चाहिए, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए, तो मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया।
1: जी,
0: मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे।
1: अच्छा,
0: हाँ जी। तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था, ऐश्वर्या राय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी।
1: अच्छा, प्रश्न ये होता था
0: शबीना है ना
1: के लिए। हाँ,
0: तो उन्होंने पूछा शबीना है ना, हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का, तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते हैं वीजा लगवाने मेरा।
1: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए वो जाके वीजा लगवा
0: वीजा, और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम, अनिल कपूर बोल रहा हूँ शबीना, मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंस को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता।
1: क्या बात है।
0: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म कर रही थी,
1: क्या खूबसूरत गाना,
0: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं पढ़ ही रही थी। असिस्टेंट डेज की बात है।

0: तो वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना, वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती
1: हूं, 2003 की फिल्म है
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, हम न्यूयॉर्क में बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: मुझे ब्रेक मिल रहा है, बट आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए जी।
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था इसलिए मैंने सीखा ही नहीं। मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, इसे मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म, अंतरा माली हीरोइन थी उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी, जैसे मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ तुम्हें बता देगा, एक गाना करो मजा आया तो आगे करना फिर।
1: वो गाना कौन सा था पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ है आज ये दिन,
1: बहुत अच्छा किया था अंतरा माली जी ने, बढ़िया किया था,
0: बहुत फेमस हुआ था वो गाना। जैसे मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है, मैं गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना, मैंने किया, वो गाना था 1 2 3 और हमको आज कल है इंतजार, माधुरी दीक्षित।
1: अभी अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगे मेरे गाने।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द, तो चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है, सच अ ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज, उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है। इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे कोरियोग्राफी सिखा दी, और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और जब पहला गाना एडिट करके,
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे,
0: जैसे तुम्हें यही सीखना हो, फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो।
1: जी जी।
0: तो राम गोपाल वर्मा इज माय फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माय सेकंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट, एंड अंतरा माली इज माय फर्स्ट स्टार हु उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं।
1: जी।
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया, और फिर लगा कि ओ माय गॉड ये मेरा क्रिएशन है, जब 70 mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी।

0: लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं
1: जी,
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरी, ये मैंने क्रिएट किया है,
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ, तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करना है। मम्मी बोले करो बेटा।
1: एक्चुअली में जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस डांस को
0: जीते हो,
1: जी रहे होगे, उसके साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे।
0: बिल्कुल।
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।
0: मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं,
1: हाँ,
0: एडिटिंग तक।
1: हाँ,
0: पहला प्रोसेस होता है, गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं
1: जी।
0: तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं
1: जी।
0: ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो, तब मुझे वहां पे मजा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे। फिर जिंदगी का मोड़ मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई।
1: आपको सुन के ना इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलते जा रही हैं। तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा। और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है, हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए जितनी भी
0: तो
1: चाहिए।
0: मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का जो मेरा अपना फेवरेट है
1: जी,
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म से है, गाना है जलते दिए।
1: बहुत खूबसूरत गीत है,
0: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी
1: जी, जी,
0: जो आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है।
1: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं और वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहां से वहां जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि कैसे वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना सुना।
0: अगर आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
1: सुनेंगे और बाद में देखेंगे भी,
0: देखेंगे और सुनेंगे
1: जी।
0: तो ये जो दिए देख रहे थे आपके, गाना था जलते दिए, तो हमारे जो सूरज बजातिया जी हैं उनको तो सब जानते हैं, सबके दिलों की धड़कन है वो, तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी।
1: बिल्कुल।
0: उनसे मैंने, वो मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे।
1: खुद जलाएंगे यानी
0: नकली दिए भी मिलते हैं जो ऑन करके डाल दो
1: एलईडी वाले?
0: नहीं, उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे, हे सर मैं चाहता हूं कि हम दिए जलाएं, जितनी
1: दिए जलाएं
0: दिख रहे हैं हम जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाएं और बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है इस
1: गाने की। इसका ये काम ऐसा होता है।
0: तो उसमें दिए जलाने में मैं भी होती थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट, वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं
1: जी,
0: आपने जो सवाल किया, साइड में
1: जल रहे हैं,
0: जहां जहां वो जा रही है वो दिए जल रहे हैं, और उन दियों को हम जलाते थे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी
1: हाँ, और वो तो बहुत चलकर नेट की साड़ी है वो,
0: तो वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब बट वो होते थे बहुत दूर।
1: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल रही है, और वो
0: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के कैसा लगे कि है बहुत करीब, लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले, वो हमारे सेट पे होते हैं
1: जी,
0: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता,
1: फिल्म सेट
0: डॉक्टर्स होते हैं, सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए,
1: सेफ्टी
0: बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इस गाने को बहुत ही प्यार से, कोमलता से दर्शाया गया,
1: बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये, दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है। तो जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना जलते दिए, आप सबके लिए।

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया
1: जी।
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी इंटरनेट पे, सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीजें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली वो भी बड़ी काम आ जाती हैं। तो वहां से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा हैं, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी आपने सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं बात, तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता सकती हैं।
1: हर एक के बारे में बता
0: जी, जी, जी।
1: रेखा जी
0: है
1: हमारी जान
0: जी,
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी इंदिर कुमार जी की
0: जी।
1: मैं नई नई कोरियोग्राफर थी
0: जी।
1: और जब उनको पहली बार देखा मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी
0: आज भी उतनी ही खूबसूरत,
1: आज भी उतनी ग्रेसफुल,
0: 73-74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी,
1: आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले
0: हाँ।
1: तो दिल के अंदर तीर घुस जाते हैं, वैसी है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया और

0: के साथ मैंने वो फिल्म की
1: जी,
0: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक
1: जी,
0: बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया।
1: क्या बात है।
0: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर, इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है।
1: अच्छा,
0: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है।
1: अच्छा,
0: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नजाकत, यू नो, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल।
1: यस,
0: ग्रेसफुल मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था कीमती, एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहां आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नजाकत और आपका ग्रेस पता चलता है।
1: इसे अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके निकल जाना।
0: बिल्कुल, आपको ज्यादा शोर शराबा, जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी। इसे कहते हैं अदायगी, जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है। सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्क्ड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी, और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर। शी वर्क रियली हार्ड, रात को दो दो बजे तक रिहर्सल किया। और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरा के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ, बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है, तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरा पे दिखा सकती हूँ। जो जलते दिए में आप देखिए,
1: इसके साथ
0: बिल्कुल
1: डांस किया,
0: शकुंतला बन गई थी वो। बिल्कुल, उसका
1: ऐसा ही,
0: यही
1: दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था। शी वॉज वेरी गुड,
0: वेरी ग्रेस,
1: बहुत बहुत बहुत प्यारा किरदार हूँ।
0: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ शर्वरी,
1: अच्छा,
0: नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
1: सही बात है, कहेंगे लोग।
0: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत जरूरी होता है, वही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क्ड हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव।
1: क्योंकि कोई नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए। ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में। तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है।
0: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ
1: जी।
0: उनके साथ जब असिस्टेंट डेज में मैं पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
1: एक ही जरा जरा
0: वो भी किया, और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे थे
1: जी।
0: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा तो मैं रो पड़ी। शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन। शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखा ये गाना पूरा। और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया। शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, ये होता है अचीवमेंट। और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी। आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है।
1: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को,
0: उन्होंने अगर
1: माधुरी उसके जैसा,
0: उन्होंने सरोज जी को अगर निभाया स्क्रीन पे, तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया
1: जी।
0: आपको पता है जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो सूरज बजाजिया की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन
1: जी।
0: उन्होंने निभाया उनको, उन्होंने उनको निभाया, गणेश आचार्य जी को निभाया, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल जो गाना है
1: जी।
0: मैं असिस्टेंट थी, वो भी उन्होंने किया
1: जी,
0: माधुरी दीक्षित जी ने। तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया, बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड कि मुझे चेंज करना है। शबीना ने बहुत अच्छा किया, शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है। जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है
1: जी।
0: और वही चीज लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में मैं। टचवुड, अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको। और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बजाजिया, जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है चलना है, सूरज जी ने कहा सोनम मुझे यही चाहिए। तो आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
1: जी,
0: तो एक्टर फिर खामोश हो जाता है।
1: हाँ।
0: और सलमान खान, उन्होंने जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है, वो सगा भाई है
1: जी।
0: वो भी मेरे साथ रह रहे कि वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है।
1: अरे वाह।
0: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है, सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है। सूरज जी ने बोला कि शबीना
1: जी,
0: तो वहां

0: कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो स्टार मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है तो फिर सब कुछ बैलेंस होके चलता है। और मेरे मामले में यही चीज मेरे साथ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
1: और उनको वहां तक लाना पड़ता
0: लाना
1: है,
0: पड़ेगा
1: मेहनत
0: आपको
1: करनी पड़ती है।
0: उनके कैरेक्टर को मैं करके दिखाती हूँ। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि उस कैरेक्टर को जी पाऊं, उसकी तरह बन पाऊं, उसके जैसे लचक लाऊं, उसके जैसे, वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से।
1: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक डीओपी और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
0: सारे
1: इनके
0: एचओडीज
1: असिस्टेंट, एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
0: तभी
1: किरदार को
0: प्रेम
1: जी रहे
0: रतन
1: होते
0: धन
1: हैं।
0: पायो बनी है। मैंने वही फिल्म की 1.5 साल और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
1: जी
0: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
1: जी
0: इसका कोई भी कोना कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: सोनम का कैरेक्टर
1: जी
0: है, फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
1: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
0: उनको भी
1: बीच में
0: जीना है, हर एक कैरेक्टर को जीना है,
1: जी।
0: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है। अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है।
1: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे। वहां तक
0: बिल्कुल
1: पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी तो हमारे श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे।
0: बिल्कुल,
1: थे तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है।
0: उफ प्लीज।
1: तो आपका पसंदीदा गीत और ये कहूं पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें
0: बिल्कुल,
1: संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है और क्या फिल्माया गया है।
0: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊं
1: हाँ
0: इस
1: हाँ
0: पर,
1: बिल्कुल
0: अगर
1: जी,
0: आप इस गाने को फिर से मेरे मेरी इस
1: आपके
0: इंटरव्यू
1: नजरिए
0: के
1: से।
0: बाद अगर आप वापस से जितने आपके श्रोता है वो भी देखें तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहां पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस, उसकी अदायगी देखिए, वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती जरूर हूं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर, जंगल में वो गाना शूट हो रहा है और दो लोग
1: लाइट
0: हैं,
1: इफेक्ट्स इतना खूबसूरत आ रहा
0: बिल्कुल
1: है जी,
0: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है,
1: कुछ नहीं है
0: और दोनों हर फ्रेम में है,
1: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
0: लाइट्स
1: गई
0: भी
1: हैं
0: नहीं है,
1: बैकग्राउंड में, क्योंकि वो
0: तो
1: जंगल का
0: उसको
1: है।
0: वो जो सूदिंग, वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
1: जी
0: किया है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
1: तो ऐसे
0: कोरियोग्राफर एक
1: गानों में भी
0: म्यूज,
1: कोरियोग्राफर का काम
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: बिल्कुल
1: सिर्फ
0: होता
1: नाचने के लिए नहीं बाकी।
0: है, बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए, और आप ये गाना देखिए, आई वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए।
1: जी
0: तो बीइंग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विद योर डायरेक्टर।
1: जी
0: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है,
1: कि मोमेंट हो।
0: मूवमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे जो लग जा गले में हुआ है।
1: जी
0: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और मनोज कुमार जी,
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: और कैरेक्टर्स देखो उसके जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में। इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए।
1: तो इतनी अच्छी बात के बाद तो ये गाना बनता है, तो जल्दी से सुना देते हैं ये लग जा गले।

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉक सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉक
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
2: परेशान हूं मैं।
1: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
3: हमारी जो डिसऑर्डर्स है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
5: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
5: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था -10। मेरे पास एक ही कोट था। साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी लेकिन -10।
1: कनिष्ठा चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम जिन्हें विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया गया। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल है। FM 101.3 MHz की आवृत्ति पर शाम के 5 बजे पर प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम रेडियो केन्द्र का आप सुनेंगे आज की सभा के शेष और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। तो आइए आपको ले चलते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण की ओर। अब से कुछ देर में यानी ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम 5:30 पर और रात्रि के 9:00।

सभी प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी प्रादेशिक समाचार और 7 आप सुन पाएंगे किसान वाणी। जी हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

आइए अब आपको ले चलते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित और अन्य प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण की ओर। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कार्यक्रम विवरण आप सुन पाएंगे प्रातः 6:40 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे खेती में बात।

प्रातः के 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से। सुगम संगीत आपको सुनने जाएगा प्रातः के 9:10 पर और 11:00। फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे आप 11:30 पर और 12:00 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल FM 101.3 MHz की आवृत्ति पर शाम के 5:05 प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे सिंह मिश्रा साधु की आवाज में गायकों चुनिंदा।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति पर शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

निशान साथियों के एक ऐसे गीत के साथ राजस्थानी लोक संगीत का ही से महत्वता है। ये आकाशवाणी वासवाड़ा का FM माही चैनल है। FM 101.3।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया पिया है वहाँ से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला लेके रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
8: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
7: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इतनी सी बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें।

0: श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फूड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
2: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जारी है कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: जीतने और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त

0: सुविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
1: वंदे मातरम।
0: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बताया। सोशल मीडिया के युग में विद्यार्थियों से दूसरों से तुलना करने से बचने को कहा। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार। पिछले 12 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 400% बढ़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मॉनसून सक्रिय, कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। श्री मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के दौर की चुनौतियां अलग है। हालांकि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन सहित अन्य क्षेत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। युवाओं की आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में नजर आने वाले विकर्षणों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में भारत ने 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों में देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की बढ़ोतरी हुई है। श्री जोशी ने कहा कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी का ये आंकड़ा बताता है कि भारत स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल भविष्य के निर्माण में वैश्विक प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी और मजबूत बनाने में अधिवक्ताओं, विधि अधिकारियों और लोक अभियोजकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सशक्त न्याय व्यवस्था की आधारशिला है। श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर विधि और विधिक कार्य विभाग की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में विधिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार कानून और न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विधिक क्षेत्र से जुड़े सभी कार्मिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
2: हम सभी जानते हैं कि हमारे लोक अभियोजकों का न्याय प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय मिले, कानून का शासन मजबूत हो। इस दिशा में आप सभी का योगदान, संवेदनशीलता, प्रभावी न्याय व्यवस्था मिले।
0: मुख्यमंत्री निवास पर इसी समय विभिन्न जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के सदस्यों की ओर से धन्यवाद और आभार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत कल जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा।

0: भजनलाल शर्मा की अगुवाई में यह रैली निकाली जाएगी। अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर यह रैली बड़ी चौपड़ पहुंचेगी। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि रैली के निर्धारित मार्ग पर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सहित अन्य इंतजाम किए गए हैं। उधर सभी जिलों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में बाड़मेर में तिरंगा प्रभात फेरियां निकाली जाएगी। उधर जालौर में भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए नागरिकों में देशभक्ति का संचार किया जाएगा। आज भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था, जो स्वाधीनता संग्राम का ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बना। इसने देश की आजादी की लड़ाई को नई दिशा प्रदान की। महात्मा गांधी के करो और मरो के आह्वान ने देश भर के लाखों भारतीयों को एकजुट करने की प्रेरणा दी। ये आंदोलन आजादी की लड़ाई में जन जन का आंदोलन बना। इस आंदोलन की वर्षगांठ सिर्फ इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन महान स्वाधीनता सेनानियों के आदर्शों को भी आत्मसात करने का समय है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राज्यसभा में कल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी में 100 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री बिरला ने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत देश दुनिया में अपनी खास पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि विरासत के साथ विकास के नए आयाम स्थापित करने के संकल्प के साथ बूंदी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आधुनिकता और विरासत के समन्वय के साथ बूंदी में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने खेती किसानी और उससे जुड़े कारोबार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने युवाओं से कृषि को केवल परंपरागत व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि इसे आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्यमिता से जोड़कर सशक्त बनाने का आह्वान किया है। श्री बागड़े आज उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नॉर्थ वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक, अनुसंधान, स्टार्टअप, फूड प्रोसेसिंग सहित व्यापक अवसर मौजूद हैं। युवा इन्हें पहचानकर कृषि को उद्यमिता से जोड़ सकते हैं। इस मौके पर श्री बागड़े ने एग्री विजन स्मारिका का भी विमोचन किया। राज्यपाल ने कृषि महाविद्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रम कल्याण संगठन की प्रशासक रश्मि रेखा ने बताया कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों को 6,000 रुपए तथा प्रोफेशनल डिग्री के विद्यार्थियों को 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र 31 अगस्त तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1: गृह श्रमिकों और चुना पत्थर डोलोमाइट खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ष 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू हो गई है और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देते समय यह होता था कि सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिलती थी। इस बार ऐसा है कि अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उनको किसी और विभाग से मिल रही है तो भी श्रम कल्याण संगठन की स्कॉलरशिप उनको मिलेगी।
0: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक अधिकतर स्थानों पर मॉनसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने, भरतपुर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी दौरान पूर्वी भागों में 1-2 जगह भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं।
2: देखिए, पिछले 2 दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी देखें तो पश्चिमी राजस्थान के

0: बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
1: आज अजमेर किशनगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में कुछ देर तेज बारिश हुई। वहीं चूरू के सरदुलपुर और धौलपुर के राजाखेड़ा में कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। डांग क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से पार्वती नदी में भी पानी की आवक बढ़ गई है। भरतपुर के बंद बारेठा बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर डाकघर ने राखी से रक्षा अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत बहनें सीमा पर तैनात जवानों को राखी और सम्मान पत्र भेज सकेंगी। पाली डाकघर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि कई जवान रक्षाबंधन पर

0: डाकघर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि कई जवान रक्षाबंधन पर छुट्टी के कारण घर नहीं आ पाते। ऐसे में बहनें डाक के माध्यम से उन्हें राखी भेजकर अपना स्नेह और सम्मान पहुंचा सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बताया। सोशल मीडिया के युग में विद्यार्थियों से दूसरों से तुलना करने से बचने को कहा। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार। पिछले 12 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 400% बढ़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मॉनसून सक्रिय, कल सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। श्रावण मास के चलते इन दिनों जिले का माहौल धार्मिक बना हुआ है। विभिन्न शिवालयों में कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध नया महादेव मंदिर में नाव महोत्सव आयोजित किया गया। इसके तहत सुबह मंदिर में पूजा अर्चना और अनुष्ठानों के बाद शाम को नाव महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भगवान को नाव में विराजित कर श्रद्धालु नाचते गाते भजन कीर्तन कर रहे हैं। वहीं जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम, देव सोमनाथ महादेव मंदिर और भुवनेश्वर शिवालयों में भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इन दिनों मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है। जिले में पिछले दिनों अच्छी बरसात हुई। आसपुर, सागवाड़ा, डूंगरपुर शहर, सीमलवाड़ा और बिचीवाड़ा क्षेत्रों में अच्छी बरसात से जलाशयों में पानी की आवक भी बढ़ी। वहीं संभाग के बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में बारिश की वजह से जिले के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम की तीनों पुलिया पर पानी बहने लगा, जिस वजह से बेणेश्वर धाम पिछले दिनों टापू में तब्दील हो गया। हालांकि दो दिनों बाद पानी उतरने से फिर से आवाजाही शुरू हो गई। इन दिनों आसमान में बादल देखे जा रहे हैं और किसानों ने खरीफ की बुवाई शुरू कर दी है। अच्छी बरसात के साथ ही किसानों को बेहतर पैदावार की उम्मीद भी जगी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हाल ही में डूंगरपुर जिले के देवल स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचे। उन्होंने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करता है। उन्होंने किसानों, गरीबों और आदिवासी परिवारों से आयुष्मान कार्ड सहित सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। जिले में इन दिनों शहरी और ग्रामीण फॉलोअप शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों के जरिए लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। शिविरों में बिजली, पानी और सड़क से जुड़े मामलों के साथ साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पट्टा वितरण और नामांतरण जैसे काम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर देशल दांत सहित अधिकारी शिविरों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की ओर से सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना को लेकर संवाद कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों और आमजन से सहयोग की अपील की। उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण ने समयबद्ध और व्यवस्थित कार्य करने पर जोर दिया। 5 अगस्त को जिला स्तरीय युवा संबल रोजगार शिविर लगाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैरिज हॉल में हुए इस शिविर में 40 से अधिक कंपनियों ने 670 युवाओं के साक्षात्कार लिए और चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 58,41,000 रुपए के ऋण भी वितरित किए गए। आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत झोथरी ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों और पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विकास नगर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पोषाहार, मध्याह्न भोजन, पेयजल, स्वच्छता, विद्यार्थियों के नामांकन और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया। बाद में पंचायत समिति में हुई बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिले के सतीमपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीते दिनों बालिका जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा, पॉक्सो कानून, साइबर अपराध, नशे से बचाव और आत्मरक्षा की जानकारी दी। छात्रों

0: को डिजिटल सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन, राजकोप सिटीजन ऐप और सखी सेंटर के बारे में भी बताया गया। डूंगरपुर में नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारी की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर देशल दान ने मतदान केंद्र, कानून व्यवस्था, प्रशिक्षण, मतदाता सूची, परिवहन, चिकित्सा और नियंत्रण कक्ष से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने डूंगरपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 43 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 181 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 85 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। डूंगरपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवानों ने विकसित भारत बनावण री मजबूत बुनियाद बतायो। सोशल मीडिया रा जमाना में विद्यार्थियों दूजों तुलना करण बचपा सारू कहो। साफ ऊर्जा रा हलका माए देश 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कीनो। लारला 12 साल माए नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करण रो बूतो 400% बढ़ियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी ने विकास रा 100 करोड़ रुपया रा कामारी सौगात तीनी। और प्रदेश माए घन खरठोड़ा चौमासारी बिरखा। काल सगड़ा जिला माए बिरखा सारू चेताईचियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि हर पीढ़ी वाली बगतरी खास चुनौतियां और सामो करता था का राष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरी करे है। वे आज आईआईटी दिल्ली रा 57वां दीक्षांत समारोह में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि मौजूदा दौर री चुनौतियां न्यारी है, हालांकि देश में नुआ हलका रा विकास नौजवानों सारू नुआ मौका बन रहा है। वे कहो कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन समेत न्यारा न्यारा हलका देश ने खुदरेपाण उबो करण री दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि नौजवाना रे खुदरेपाण उबा भेवन री आ पहल विकसित भारत बनावण सारू मजबूत बुनियाद रो काम करेला।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
1: श्री मोदी सोशल मीडिया रा जमाना रो जिक्र करता था का कहो कि विद्यार्थियों ने तनख्वाह, नौकरी या कार्यक्षेत्र रा आधार दूजों तुलना करण बचनो चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: भारत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली बनावण रा हलका माए खास उपलब्धि हासिल करता थका 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कर लीनो है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। वो बतायो कि लाडला 12 साल माए देश रो नवीकरणीय ऊर्जा बूतो 400% बढ़ियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि न्याय व्यवस्था ने असरदार और मजबूत बनावण माए वकीला, न्यायिक अहलकारा और लोक अभियोजका रो खास काम है। वे आज जयपुर माए वाणा रहवास माथे विधि और विधिक कार्य विभाग रे ओनु राखे ज्या संवाद कार्यक्रम माए न्यायिक हलका जुड़िया नुमाइंदा सागे बातचीत कर रहा है। मुख्यमंत्री कहो कि सरकार कानून और न्याय व्यवस्था ने असरदार बनावण सारू लगातार कोशिश कर रही है। श्री शर्मा कहो कि न्यायिक हलकाओं जुड़िया सगला कर्मचारियों ने भला रो ध्यान रखता थका वाने काम करण रो बेहतर वातावरण मुहैया करावण रे कोशिश करी जा रही है।
3: हम सभी जानते हैं

0: हमारे लोक अभियोजकों का न्याय प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। न्याय व्यवस्था पर आमजन का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय मिले, कानून का शासन मजबूत हो। इस दिशा में आप सभी का योगदान, संवेदनशीलता, प्रभावी न्याय व्यवस्था मिले।
1: हर घर तिरंगा अभियान 2026 राते काल जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली निकाली जावेला।

0: रैली मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री अगुवाई माए अल्बर्ट हॉल नु शुरू फेर बड़ी चौपड़ तंचा वेला। जयपुर रा जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि रैली रा गेला माथा हिफाजत और आवन जावन समेत न्यारा न्यारा इंतजाम करी चिया है। राज्य रा सगला जिला माई हर घर तिरंगा अभियान री जोरदार तैयारियां करी जा रही है। बाड़मेर माई तिरंगा प्रभात फेरियां निकाली जावेला। जालौर माई भांत भांत रा कार्यक्रम रे जरिए जनता माई देशभक्ति री भावना जगाई जावेला। देश आज भारत छोड़ो आंदोलन री 84वीं वर्षगांठ मना रहियो है। अगस्त 1942 माए महात्मा गांधी री अगुवाई माए शुरू करी जियो ओ आंदोलन देश री आजादी री लड़ाई रो ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बनियो। महात्मा गांधी रा करो या मरो रो नारो देश भर रा लाखां लोगां ने एकजुट फेवन री सीख दीनी। ओ आंदोलन आजादी री लड़ाई माए जनता रो आंदोलन बनियो। भारत छोड़ो आंदोलन री वर्षगांठ रा सिलसिला माए राज्यसभा माए काल स्वतंत्रता सेनानियां ने सीधा भाव सागे याद करी चिया। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी माए विकास रा 100 करोड़ रुपया रा खर्च वाला न्यारा न्यारा कामा री नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। इस मौके वे कहो कि हाड़ौती हलका री सांस्कृतिक विरासत देश दुनिया माए खास पिछाण रखे है। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि विरासत सागे विकास रा नुआ आयाम बनावन रा संकल्प सागे बूंदी ने आगे बधायो चावेला। इसारो आधुनिकता और विरासत रा तालमेल बूंदी माए बुनियादी सुविधा बधाया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े खेती किसानी और वाऊ जुड़िया कारोबार ने देश की माली व्यवस्था सारो खास बतायो है। वह नौजवानों खेती ने केवल परंपरागत कारोबार रा तौर देखने री बजाय नवी तकनीक नवाचार और उद्यमिताओं जोड़ और मजबूत बनावन बाबत कहो। राज्यपाल आज उदयपुर रा महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राखी जी नॉर्थ वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है। वे कहो कि खेतीबाड़ी रा हलका माए तकनीक अनुसंधान स्टार्टअप और फूड प्रोसेसिंग समेत मोकला मौका मौजूद है। इस मौके श्री बागड़े एग्री विजन स्मारिका को विमोचन नी कीनो। राज्यपाल इंदिरा परिसर माए हरियाणो राजस्थान अभियान रा तहत पौधोई रोपियो। खाना माए काम करने वाला मजूरा रा बच्चा ने श्रम और रोजगार मंत्रालय रे ओर वजीफो दियो चावेला। श्रम कल्याण संगठन रे प्रशासक रश्मि रेखा बतायो कि आईटीआई पॉलिटेक्निक और डिग्री कोर्स रा विद्यार्थियों ने 6,000 रुपया और प्रोफेशनल डिग्री सारू पढ़ाई करने वाला ने 25,000 रुपया री मदद दी चावेला। पात्र उम्मीदवार 31 अगस्त ताई नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मत है अर्जी दे सके है।
1: गरीब श्रमिकों और चुना पत्थर डोलोमाइट प्रदान श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ष 2026-27 के दिन स्कॉलरशिप योजना शुरू हो गई है और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देते समय यह होता था कि सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिलती थी। इस बार ऐसा है कि अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उनको किसी और विभाग से मिल रही है तो भी श्रम कल्याण संगठन की स्कॉलरशिप उनको मिलेगी।
0: अरब मौसम प्रदेश माए आवता 3-4 दिन ताई घन खठोड़ा चौमासारी बिरखा वेवन रो अनुमान है। मौसम विभाग काल सगला जिला सारू बिरखा रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो के आवता 2 दिन माए बिरखा माए बढ़ोतरी सागे भरतपुर उदयपुर और जयपुर संभाग

0: आगरा कुछ हल्का माए मझलाऊं तेज दर्जारी बारिश वह सके है। इस दौरान प्रदेश का ऊबरी हल्का माए एक दो ठौड़ जोरदार घनी जोरदार बिरखा विवरण रा आसार है।
1: देखिए पिछले दो दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र है इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
0: इस बीच आज अजमेर और किशनगढ़ समेत कई हल्का माए थोड़ी देर ताई चोखो में बरसियो। चूरू जिला रा सादुलपुर और धौलपुर जिला रा राजा खेड़ा माए काल हुई झमाझम बिरखा पाछे कई हल्का माए पानी फरकियो। डांग हल्का माए भी चोखा में पार्वती नदी माई पानी री आमद बध गई है। भरतपुर जिला रा बारेठा बांध माई पानी रो लेवल लगातार बध रियो है। कर्नाटक माए भी राष्ट्रीय जिम्नास्टिक होड़ माए हनुमानगढ़ जिला रा बेहरवाला गांव रे कल्पना महिला चांदी रो तमगो जीत्यो है। कल्पना इन पहली राष्ट्रीय और राज्य स्तर री होड़ा माए कई तमगा जीत चुकी है। दूजिकानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लाडला दिना ग्लास्को माए पूरा फिया राष्ट्रमंडल खेलना री मुक्केबाजी होड़ माए सोना रो तमगो जीतन वाली कोटारी अरुंधति चौधरी रा रहवास माथा पूगर वाना परिवार वाला ने शुभकामनावा दीनी। ई मौके श्री बिरला कहो के कोटा बूंदी माए अंतर्राष्ट्रीय मानका ने मुजब खेलना रा सुविधा विकसित करन री कोशिश करी जा रही है। राखी रा त्योहार रे मौके डाक विभाग री ओर राखी से रक्षा अभियान शुरू करी चियो है। इन्हें तेत बहना सरहद माथे तैनात फौजियां ने राखी और मान पाना भेज सकेला। पालीरा डाक घर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा बतायो कि कई जवान राखी रे मौके घरा नहीं जा सके है। इन कारण बहना डाक रे जरिए वाने राखी भेज और प्रेम और मान पुगा सके है। पाली माए राखी भेजन वाली महिला सारू डाक घर माए न्यारी खिड़की री व्यवस्था करी जी है और ऑनलाइन चुकारा रो सुबितोई मुहैया कराई चियो है। काल विश्व आदिवासी दिवस मनायो जावेला। ओ दिन आदिवासी समाज री संस्कृति परंपरा और गौरव रो उत्सव है। ओ आदिवासी अस्मिता और हकाना प्रति एकजुटता और संकल्प रो दिन है। इस साल री थीम आदिवासी पारंपरिक नाइयों का सम्मान जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा राखी जी है। आदिवासी दिवस रे मौका दौसा जिला रा नांगल प्यारी वास माए खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवाना ने विकसित भारत बनावन री मजबूत बुनियाद बताया। सोशल मीडिया रा जमाना माए विद्यार्थियों दूजा तुलना करण बचबा सारू कहो। साफ ऊर्जा रा हल्का माए देश 300 गीगावाट रो आंकड़ो पार कीनो। लाडला 12 साल माए नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करण रो बूतो 400% बधियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी ने विकास रा 100 करोड़ रुपया रा कामारी सौगात तीनी। हर प्रदेश माए घनखर ठोड़ा चौमासारी बिरखा काल सगड़ा जिला माए बिरखा सारू चेताई चियो। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजे है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं।
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी हिम्मारी
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी सुनबावाड़ा सभी किसान भाइयों ने और सुनबावाड़ा सभी श्रोताओं ने अनिता की घनी घनी राम राम सा, और प्रभु भाई आपने भी घना घना राम राम सा।
7: बिल्कुल अनिता बहन, थाने और सुनबावाड़ा अपना जगह हितड़ श्रोता है, दूर दराज गांव ढणी रमाई ने बैठे हुआ कार्यक्रम सुने है। आप सगला ने घने मानसु प्रभु दयाल वर्मा भी राम राम सा।
6: प्रभु भाई, भाई देखो सा, अपने किसान भाई तो खेती बाड़ी करे ही छे और शुरू से अपने बड़का भी देखो करता ही आया छे, और आज आप देख भी रहा छा की तरीका से जो नई पीढ़ी छे वा खेती की किसानी से थोड़ा सो उनको लगाव छे ने जो कम हो तो दी।
7: बिल्कुल सही बात कह रहे हो। देखो खेतों का मायने जहाँ चौमासा की फसल ले लियो, चाहे सियाड़ा की फसल ले लियो, टाबरियन जहाँ कई बार आप पूछा तो भाई का गेहूं की फसल खड़ी है या चौमासा में आप बाजरा की बात करा या तिल की बात करा मूंग की बात करा, तो वो टाबरी आज का बता नहीं सके भाई कौन सी फसल है। तो अब बात है कि सांची है भाई, आज को जो टाबरी है वो बढ़ाई लिखाई में तो आगे बढ़ रही है, लेकिन जो खेत को और जमीन को जो ज्ञान है वो भी करने थोड़ा सा कम हो रही है।
6: पर देखो सा, आप जो अपनी नई पीढ़ी है, अपने युवा है, वो पढ़े लिखे छे ना, तो आपने जो ये पढ़ाई लिखाई है नौकरी में तो सही है, पर आजकल देखो बहुत ज्यादा जो है मतलब वह छे कि भाई नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। वो ई तकनीक ने जो अपनी पुरानी पीढ़ियां करती आ रही है खेती बाड़ी, उन्हें अपने जो पढ़े लिखा युवक है ना, वह भी उन चीज ने आगे बढ़ा सके छे। वह किया भाई देखो पढ़े लिखे तो वे छे ही, साथ ही साथ नई तकनीक वाने मालूम छे, तो वैज्ञानिक तरीका से खेती बाड़ी कियान कर सके छे, कियान ज्यादा मुनाफा पा सके छे, तो इसू आपने खेती बाड़ी में तो बढ़ोतरी होली, नई तकनीक आवली और आपनो मुनाफो बहुत ज्यादा होलो।
7: बिल्कुल, आप देखा जी कई किसान भाई करे ही है, और आज को जो युवा है जो बेरोजगार नहीं रहे तो बिगे कने सासु बढ़िया तरीको उसके अपना बड़का जो काम करते आया है, अपने पुछते नहीं काम जी खेती बाड़ी अपना जमीन से जुड़े रेवला और अपनो स्वास्थ्य है अपनो मन तन दोनों चोखा रेवला बी के लिए। देखो आप अगर युवा जगह पढ़े लिखे है रोजगार नहीं है वहां करना, तो आधुनिक खेती की अगर आप बात करें अनिता बहन, तो बिग मानिए जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है या संरक्षित जगह खेती है, बिग सागे सागे जो पोली हाउस लगा भी आप बढ़िया जगह आए है, हाइड्रोपोनिक्स एक जगह विदेशी जगह तकनीक है वह भी आई है।
6: बिल्कुल, पर देखो ये चीज है ना, आपने नई पीढ़ी ने पतो चाहे आपने जो बड़का करे खेती करे थे तो वह तो पुरानी ऊपर ही चाल रहा है, पर जो नई पीढ़ी अगर उसे जुड़े ली तो नई तकनीक ले रावली, नया चीजा ले रावली, नया विचार ले रावली, तो उसको हर चीज में ही बढ़ोतरी होली, जोखिम कम हो वाला, तो ये चीजा आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि जो या बहुत ज्यादा बेरोजगारी आजकल अपने दिख रही है वह भी एक हद तक कम रहेगी, और जो युवा है आपकी जो मातृभूमि है मात्र वह छोड़ भी कौन पाओ, आपका परिवार के साथ रह लो और आपका परिवार में भी सही तरीका से चला सके छे।
7: बिल्कुल, देखो और जो कोई खेती के अलावा जो कोई भाई लोग है तो खेती के मायने कई प्रकार का जगह औजार है, उपकरण है खेती से संबंधित, बाढ़ ने भी जो कोई भाई लोग चाहे तो थोड़ी जानकारी ले किराए के ऊपर जो जगह कृषि से संबंधित जो ट्रैक्टर है, रिपर है, सीड ड्रिल है, हार्वेस्टर है, जगह मशीन है वन किराए के ऊपर भी भाई लोग अगर चाहे तो खरीद वन देश के है
6: जी। और देखो सर, खेती के साथ साथ ही और दूसरे तरीका से भी आपके आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके छे, भाई केवल पारंपरिक फसला पर निर्भर न रहबा की बजाय बागवानी, सब्जी को उत्पादन, मक्खी पालन, मशरूम पालन और मशरूम को उत्पादन, पशुपालन और प्रसंस्करण जैसा काम खेती में जोड़ सके छे, या आपकी नई पीढ़ी ही बहुत बेहतर तरीका से कर
7: सके। सही बात की, देखो प्रसंस्करण या भाई का अचार बना लियो, मसाला या भी सके आटो है, दाल है, पापड़ है।

0: हल्की चीजों की कृषि उत्पाद बसू अन थोड़ो सो बढ़िया तरीका सो बुनार अन बाजार का मान लेर जाओ तो भी को मुनाफा और ज्यादा कमा सके।
1: बिल्कुल सा, और देखो सा आपने तो खेबो यो ही चाहिए भाई, पढ़े लिखे युवा खेती से दूर जावा की बजाय आपका ज्ञान और तकनीक ने खेत तक लियावे तो खेती केवल एक परंपरा को नहीं बल्कि आधुनिक और लाभदायक व्यवसाय बन सके छे।
0: बिल्कुल।
1: और जो आपने यहाँ खेती बाड़ी के रुझान प्रति रुझान कम होते जा रहे छे उन्हें बढ़ा सके छे, नया और युवा ई के साथ साथ जुड़ सके छे, तो और जो आपने खेती बाड़ी छे उनको स्तर बहुत बढ़िया है वो।
0: बिल्कुल बढ़िया बोलो निश्चित रूप से, और किसान भाई थोड़ी सी जानकारी ले और भी का बचाए आ खेती की तरफ अगर आवे तो निश्चित रूप से फायदो ही फायदो है।
1: बिल्कुल सा, और देखो सा अब टाइम हो चालो छे थोड़ी सी जानकारी ले बाको, और अपना विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में पधार चुका छे, उद्यानिकी में पादप प्रति नियामकों को प्रयोग के बारे में बतावला राकेश कुमार जी, तो प्रभु भाई अब आप जानकारी दिलाओ सा।
0: बिल्कुल सा, किसान भाई और बिना कार्यक्रम में जानकारी देवा के वास्ते पधार चुका है राकेश शर्मा जी, आप फार्म मैनेजर है कृषि विज्ञान केंद्र सोमू टांकड़ा सो कार्यक्रम में पधारे हैं, और आज अपन जानकारी देवाला पादप वर्दी नियामक का कृषि में महत्व है इस विषय पर। तो सबसे पहले तो राकेश शर्मा जी आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है सा, राम राम सा।
2: राम राम सा किसान भाइयों,
0: आपसे सबसे पहले सवाल हो रही होगा पादप वर्दी नियामक हुए कहीं है।
2: किसान भाइयों, पादप वृद्धि नियामक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वो कार्बनिक यौगिक है जो पौधे के भीतर ही बनते हैं सूक्ष्म मात्रा में, और किसान भाइयों ये बीज का जब से अंकुरण होता है उसका जरावस्था आती है तब तक ये कार्य करता है। पादप वृद्धि नियामक सभी फसलों में अंकुरण से लेकर जरावस्था तक सभी क्रियाओं को प्रभावित करता है, जिसमें अंकुरण आ गया उसकी वृद्धि आ गई, उसका विकास आ गया, उसका पुष्पन आ गया, उसका फलन आ गया, इन सभी क्रियाओं को ये नियामक पूरी तरह प्रभावित करता है और उसके विकास में सहयोग प्रदान करता है।
0: जैसे आप बता रहे कि इतना सारा कारक है जिसका प्रभावित करता है, अपन मुख्य मुख्य जो कारकों की बात करें तो पादप वृद्धि नियामक ने प्रभावित करवा वाला कौन कौन सा कारक है?
2: किसान भाइयों, पौधों की वृद्धि के लिए दो तरह के कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। एक होता है बाह्य कारक, जिसमें जल वायु प्रकाश और मृदा इन सब का प्रभाव पड़ता है
0: जी।
2: साथ में एक आंतरिक कारण होता है जो पादप वृद्धि नियामक के द्वारा प्रभावित होता है, उसमें आता है ऑक्सिन, उसमें आता है जिब्रेलिन, उसमें आता है साइटोकाइनिन, उसमें आता है एब्सेसिक एसिड और उसमें इथाइलिन। ये सभी आंतरिक कारण है जो सूक्ष्म रूप से पौधों के अंदर विकसित होते हैं और पूरी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं।
0: और आप बात करें भाई के पादप वृद्धि नियामकों का प्रकार की, तो आपका कोई प्रकार भी होगा?
2: बिल्कुल प्रभु जी, किसान भाइयों ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो उनके विकास में सहायक हो, जिसको कहते हैं अपन वृद्धि नियामक जो रेगुलेट कर रहा है। दूसरा होता है वृद्धि बाधक, जो उसकी वृद्धि में रुकावट पैदा करता है, जैसे नाम से ही जाना जा रहा है। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि को रोकता है एक वृद्धि को बढ़ाता है।
0: बिल्कुल, आप वृद्धि ने बढ़ावा की अगर आप बात करें तो वृद्धि नियामक कत्ता प्रकार का वर आपको कहीं कहीं काम है।
2: किसान भाइयों, जो वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं
0: जी,
2: जिसमें पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्राकृतिक रूप से इंडोल एसिटिक एसिड का यौगिक है, और इसके जो प्रमुख कार्य हैं किसान भाइयों, जैसे जड़ों में फुटान करना, सिक्का प्रधानता मतलब सिक्का को ऊपर बढ़ाता है, अगर अपने को सिक्का को ऊपर से कटिंग नहीं करेंगे तो पार्थ सिराएं नहीं बढ़ेगी, तो ये जो काम करता है ऑक्सीजन, ये सिक्का को सीधी ऊपर ले जाने का काम करता है और कोशिकाओं की सीधी वृद्धि करता है। दूसरा किसान भाइयों होता है साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन वो हार्मोन से जो नई पत्तियों का विकास करता है, नई पत्तियों में क्लोरोफिल बनाता है, पार्श्व शाखाओं को बढ़ाता है। अभी मैंने ऑक्सीजन में आपको बताया था कि ये सीधी पार जो शिका है ऊपरी शिका उसको बढ़ाता है, अगर ऊपरी शिका को काट दें तो वहां फिर साइटोकाइनिन काम करता है और वो साइड की जो शाखाएं हैं उनकी वृद्धि कराता है। पत्तियों को जरावस्था को बढ़ाता है।

0: जरावस्था का मतलब है कि जो पुरानी पत्तियां हो गई उनको नीचे गिराने का काम भी ये करता है
1: जी।
0: अगर फल भी पक गए तो उनको गिराने का काम भी साइटोकाइनिन करता है। तो किसान भाइयों इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि साइटोकाइनिन है तो जरावस्था बढ़ जाएगी उसकी, जरावस्था मतलब उसकी वहां रहने की क्षमता बढ़ जाएगी
1: जी।
0: क्योंकि ये जो पोषक तत्व है अपने उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं और ये सक्रिय रूप से विभाजन को भी दर्शाता है
1: जी।
0: ये मुख्यतः मूल शीर्ष और कलिकाओं में मिलता है कि साइटोकाइनिन जहां बनता है वो अपना जो जड़ों का मूल है लास्ट कोना है या तो वहां डेवलप होता है या जो कलिकाएं होती है वहां डेवलप होता है। किसान भाइयों साथ में जो वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन है तीसरा है जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन का कार्य साइटोकाइनिन से थोड़ा सा अलग है, ये तने की ग्रोथ को बढ़ाता है। ऑक्सिन जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा रहा था, साइटोकाइनिन फलन और पत्तियों की जरावस्था को बढ़ा रहा था और जिब्रेलिन ये तने की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। फलों के आकार में वृद्धि करनी हो अपने को तो भी जिब्रेलिन काम आता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि सेब में या अपना तरबूज होता है उसमें जिब्रेलिन का इंजेक्शन दे दें तो वो तुरंत उनका आकार बढ़ जाता है। साथ में फलों के पकाव के समय को बढ़ाता है, मतलब फल सड़े केवल कीपिंग कैपेसिटी उसकी बढ़े ये काम भी जिब्रेलिन करता है। उसकी क्षमता को बढ़ा देता है कि और रोक सके उसे कुछ दिनों तक ताजा फल को रख सके अपन। माल्टिंग को भी बढ़ाता है और सुसुप्त अवस्था को तोड़ता है। जैसे डोरमेंसी में कोई चीज गई हो, बीज डोरमेंस पड़ा हो, जर्मिनेट नहीं हो पा रहा हो तो उसके लिए जिब्रेलिन काम आता है, उसकी डोरमेंसी तोड़कर वो उसमें अंकुरण पैदा कर देता है। किसान भाइयों ये तीन तो हैं जो वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन हैं और अब जो आगे अपन चर्चा करेंगे वो वृद्धि को रुकावट में डालने वाले हार्मोन हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, प्रतिकूल कंडीशन होती है
1: जी,
0: पानी की कमी है, मौसम अनुकूल नहीं है, ताप पूरा नहीं मिल रहा है तो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाता है। उस समय एब्सेसिक एसिड नाम का हार्मोन काम करता है और वो उसको पूरी डोरमेंसी में ले जाता है कि वो बीज खराब नहीं हो। कई बार आपने देखा होगा कि बारिश नहीं हो रही है तो उस समय एब्सेसिक एसिड उन रंध्रों को बंद कर देता है जिससे वाष्पोत्सर्जन ज्यादा नहीं हो तो भी ग्रोथ चेक हो जाती है। ये उपापचय की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको भी रोक देता है। ये डोरमेंसी को बढ़ाता है इसलिए कि बीज और पौधा अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य कर सके। अगर अनुकूल परिस्थिति उनको मिल जाएगी तो तुरंत ये सुसुप्त अवस्था को तोड़कर जर्मिनेट हो जाएगा, पानी पूरा मिल जाएगा, रंध्र खुल जाएंगे और साथ में किसान भाइयों ये वृद्धि को भी रोकता है। किस लिए रोकता है कि प्रतिकूल कंडीशन में जब पौधे को जीवित रखने के लिए अनुकूल कंडीशन नहीं है उस समय उसकी वृद्धि को ये रोक देता है तो पौधा जिंदा रह जाता है। किसान भाइयों लास्ट जो हार्मोन है अपना वो है एथिलीन। ये ऐसा हार्मोन है जो दोनों में अपन काउंट कर सकते हैं, इसको वृद्धि को बढ़ाने वाले में भी काउंट कर सकते हैं और वृद्धि को रोकने वाले में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये फलों के पकाने में सहयोग करता है। अब उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ, मौसमी के साथ में या संतरे के साथ में अगर कच्चे केले रख दिए जाए तो वो पक जाते हैं। ये क्यों पकते हैं? क्योंकि संतरे से एथिलीन गैस निकलती है उससे केला पक जाता है
1: जी।
0: तो सीधा सा व्यवहार देश का कि कहीं तो ये फायदा कर रहा है साथ में कहीं ये नुकसान भी करता है। नुकसान ये करता है कि सड़ाव पैदा होते हैं एथिलीन, मतलब जैसे पकता है एथिलीन ज्यादा होने से उसमें सड़ाव आ जाता है। पत्ती में अगर पकाव आ गया तो एथिलीन डेवलप होकर पत्ती झड़ जाती है। और एक इसका बेनिफिट दूसरा बेनिफिट ये है कि मूंगफली में ये जर्मिनेशन जल्दी कर देता है, ये एथिलीन के कारण ही होता है। आलू की स्प्राउटिंग बढ़ा देता है। आलू में देखा होगा आप लोगों ने कि जगह जगह से जर्मिनेशन सा हो जाता है, उनको काटकर कंदों को ऊपर लगा देते हैं तो आलू पैदा हो जाता है। वो स्प्राउटिंग एथिलीन के कारण ही किसान भाइयों हो पाती है। पुष्परण और फलन दोनों की वृद्धि को भी प्रेरित करता है। और कई जगह ये कुकुम्बर, स्पेशली कुकुम्बर की बात करूंगा मैं, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे खीरे स्पेशली, उसमें ये मादा फूलों की संख्या बढ़ा देता है जिससे उसकी उत्पादन

0: उत्पादन क्षमता और उत्पादकता बढ़ जाती है।
1: जी
0: किसान भाइयों, ये पांचों हार्मोन्स हैं जो पौधों की वृद्धि भी कराते हैं, वृद्धि को रोकते भी हैं, और इनमें से एक हार्मोन ऐसा है एब्सेसिक एसिड,
1: जी,
0: जो कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, वो प्रकृति प्रदत्त है। बाकी के चारों हार्मोन्स को अपन लोगों ने कृत्रिम रूप से भी बना लिया है।
1: बिल्कुल, आप बड़ा विस्तार से जगह पादप वर्दी नियमों के एवं कृषि के मायने जो उपयोग है के बारे में आप जानकारी दे रहे हो। ए जी आप बड़ा बड़ा और गठा बड़ा आगे तक बात करी, किसान भाई जब पादप वर्दी नियमों का वो प्रयोग करे तो कौन कौन सी मोटी मोटी बातें हैं वो ध्यान रखना चाहिए, कोई इनकी कोई मात्रा हुई या किस प्रकार से उनको प्रयोग करना चाहिए, बी के बारे में थोड़ी सी जानकारी।
0: जैसे किसान भाइयों, अपन देख दें कि अपना फलन तो गया लेकिन वो झड़ रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं
1: जी।
0: तो अपन प्लेनोफिक्स नाम के एक हार्मोन का अपन स्प्रे करते हैं, उसकी डोज अपने को 3 ml के लगभग प्रति 15 लीटर में रखनी है। किसान भाइयों अच्छी तरह समझ लीजिएगा, 3 ml अगर अपन डालेंगे 15 लीटर में तो पत्तियों को और फलों को वो रोकेगा
1: जी।
0: और अगर अपन ने 5 ml उसको कर दी तो किसान भाइयों वो पत्तियों फलों के साथ में पत्तियों को भी नीचे गिरा देगा। इसलिए मैंने कहा था कि दोनों काम आती है, ये रोकने के काम भी आती है और जरावस्था के लिए भी काम आती है, जरावस्था मतलब उसे झाड़ने काम भी आती है। तो इस डोज का विशेष ध्यान रखेंगे किसान भाइयों।
1: और कोई फलाने पकावा के वास्ते कौन कौन सा हार्मोन काम में आएगा?
0: पकाने के लिए केवल एथिलीन ही काम आती है जो गैसीय फॉर्म में होती है, एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में होता है।
1: और आप कई बार सुना भाई के कटिंग या आज की लेयरिंग करे भी का मैंने जड़ों को विकास करवा का वास्ता भी या कोई हार्मोन से जगह प्रयोग करे किसान भाई, तो वह कौन कौन सा है?
0: किसान भाइयों बहुत सारे लोग गुलाब की, गुड़ल की, ये बहुत सारी कटिंग होती है जो डेवलप करते हैं, लेयरिंग करते हैं, तो वहाँ जड़ों का विकास करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन काम में लेनी पड़ेगी
1: जी।
0: ऑक्सीजन का अगर हार्मोन का काम में लेंगे तो वहाँ जड़े विकास विकसित हो जाएगी और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है ऑक्सीजन ही काम में लें।
1: और मान लीजिए झड़बा की जगह समस्या हुई है, इसमें अगर अपन बचाना है किसान भाई की कोई समस्या आएगी तो दी के वास्ते भी कोई हार्मोन से जो काम में न्यूजास का तो कौन सो है?
0: किसान भाइयों जैसे अपन ने पूर्व में भी चर्चा की है, एथिलीन एक ऐसा ही हार्मोन है जो फलों को पकाव तक ले जाता है। इसको कृत्रिम रूप से भी अपन काम में ले सकते हैं और प्रकृति प्रदत्त भी होता है। प्रकृति प्रदत्त तो प्रकृति ने दिया ही है, कृत्रिम रूप से काम मिले तो एथिलीन गैस को अपन जहां स्टोर किया है उसमें छोड़ देते हैं तो वो फल सारे पकाव पे आ जाते हैं। एक उदाहरण तो मैंने दिया कि अगर एक फल सड़ा हुआ है
1: जी,
0: उस फल के चारों तरफ फल रख दीजिए आप, वो सारे सड़ जाएंगे। क्यों सड़ जाएंगे? क्योंकि वो फल सड़ा हुआ है जो एथिलीन का गैस का रिसाव कर रहा है या एथिलीन गैस डेवलप कर रहा है, वो एथिलीन सबको पका देगी और एक अपर लिमिट तक पका देगी कि वो सब सड़न की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो एथिलीन गैस ऐसी है किसान भाइयों जिससे हम फलों को पकाव पे ले जा सकते हैं।
1: और चलता चलता कोई मोटा मोटी रूप में कोई बात छोटी है किसान भाइयों तक पहुंचते करनी चाहो?
0: किसान भाइयों ये पादप वृद्धि नियामक जो चीज है ये एक आधुनिक शब्द है, पहले अपन हार्मोन्स के नाम से जानते थे इन सबको, अब लेकिन इसको पादप वृद्धि नियामक के नाम से जानने लग गए हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप जब भी अनुकूल कंडीशन में कोई क्रॉप लगाएं तो ये ध्यान रखें कि तापमान, प्रकाश, मृदा की स्थिति और हवा पानी ये एकदम प्रॉपर रहे तभी फसल लगाएं। क्योंकि पहले जब लगाते थे अपने पूर्वजों पर खेती करते थे तो वो चंद्रमाओं की कलाओं के आधार पर खेती करते थे
1: जी।
0: वो सारी कलाएं साइंटिफिक थी लेकिन अपन उन चीजों को भूल गए हैं और अपन मन में आए उसी समय सोइंग करने लग गए। मन में आए जब ही अपन बिजाई कर देते हैं तो उससे अपने को नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। तो मेरा तो किसान भाई यही निवेदन है कि आप जब भी सोइंग करें एक प्रॉपर समय को देखते हुए सोइंग करें, सायंकालीन सोइंग करें तो ज्यादा फायदा होता है। तो ये सारे हार्मोन्स भी काम करेंगे, अपना भाग्य भी काम करेगा और किसान सफल भी होगा
1: जी। पादप वर्दी नियामकों का कृषि के मायने महत्व है, इस विषय पर किसान भाई अपन जानकारी दे रहा था। राकेश शर्मा जी आप फार्म मैनेजर है कृषि विज्ञान केंद्र चौमू टांकरडा सो, आज अपने कार्यक्रम को मैंने पधारा और किसान भाई ने अत्या महत्व विषय पर जानकारी दी। तो शर्मा साहब आपको मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: कुशला बोल रहे
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते।

0: रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
1: परम तो सब ये डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
2: अरे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: प्रभु भाई, बहुत ही घना घना धन्यवाद आपका, जो राकेश कुमार जी से इतनी चूकी जानकारी दिलाई। और देखो साहब, बहुत सारी बात ऐसी राकेश जी बताया भाई, की तरीका से खेती किसानी में कसी बात ध्यान में राखवाड़ी चर, कसी बात कौन ध्यान है राखवाड़ी। और सबसे मोटी बात यह है कि समय पर अगर आप काम कर लाने तो सभी चीज को समय अनुसार सही तरीका से फायदो मिले लो।
5: बिल्कुल, तो और सही समय फायदा की बात करें तो अब अपना कार्यक्रम ने सीधो एक मीठी सी लोक रचना की तरफ।
4: बिल्कुल साहब,

जागो सारा सारा मरे तैनू गाई रे की बूंद बूंद हां थोड़ो थोड़ो की बूंद बूंद पानी की बचाओ।

0: બિલકુલ સા ભાઈ દેખો ચોમાસા કો ટાઈમ જે રહ્યો હશે બઢિયા ટાઈમ છે જો આપણે પાણી ને બચત કરવા કી સહેજ બાકી સબસે સહી સમય છે
1: બિલકુલ સહી સમય દેખો સહી સમય बरसात की हो रही है कि मैंने आज को जो मौसम की बात करें भाई लोगों थोड़ा ध्यान रहे भाई की प्रकार का मौसम रहे लो तो भाई लोग आज जयपुर का मैंने जो अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान है जो 25 डिग्री और बीकानेर के मौसम की अगर आप बात करें तो लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान रही है और न्यूनतम जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड जोधपुर के मायने अगर बात करें तो 35 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 27 डिग्री और लगभग पूरा राजस्थान का मायने या आज क्षेत्र की जगह की आप बात करें बट है बिजली चमक बागी या बरसात होगी गरज के साथ पूरी पूरी संभावना भी रहेगी
0: बिल्कुल सा और देखो सा मौसम की जानकारी है बस वो आप थोड़ी सी आपने खेती बाड़ी में सही तरीका से सार संभाल करवो या कोई काम करवो या कोई बचाव करवो वो सब सही समय पर कर सकन छा
1: बिल्कुल सही समय की बात करी तो देखो अपन सही समय पर अब अपन कार्यक्रम में किसान वाणी में विराम भी देना पड़ लो
0: जी
1: तो घड़ी सारो करण नागरिक आज का किसान वाणी कार्यक्रम को टेम उठे पूरे हो रही है तो भाई लोग थे था भाई प्रभु दयाल वर्मा
0: और अनिता ने देव इजाजत चालार करा
1: राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सभी श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

0: खेतीबाड़ी की बाढ़ जोता सभी किसान भाई ने सुनवा वाला सभी श्रोतावान है अनिता की घनी घनी राम राम सा और प्रभु भाई आपने भी घना घना राम राम।
1: बिल्कुल अनिता बहन थाना और सुनवा वाला सगड़ा अपना जगह है तालु श्रोता है दूर दराज गाँव ढाणी रमाय ने बेटी तबिंदा वो कार्यक्रम सुने है सगड़ा है तालुआ ने गणे मानसु प्रभु दयाल वर्मा भी राम राम एर निवन प्रणाम सा। देखो अनिता बहन बिरखा रोज को टेम है वो चालन लाग रहे है ऐसा मैंने किसान भाई है जगह तो आपका खेता का मायने जिया ये टाइम रे मायने जगह जगह काम धंधा करना है वे करवा लाग रहे है

0: आमदन की अगर आप मोटा मोटी रूप से बात करें तो भाई देखो, एक तो खेत का मैंने खड़ी फसल है, तो मैंने निराई गुड़ाई है जी बहुत जरूरी हुई।
1: बिल्कुल सा भाई, देखो सा निराई गुड़ाई न करेला, खरपतवार न निकालेला ने, तो जो फसल की बढ़वार से वह रुक जावली, और जी तरीका से वह बढ़वार करनी चाहिए जी, उनमें थोड़ी सी कमी दिखली।
0: बिल्कुल, तो जी बाजरो है, गुआर है, मोट है, मूंग है, तिल है, देखा भाई लोग जहाँ फसल ले रखी है, तो बाग मैंने ये टाइम को मैंने जहाँ खड्डे भी खरपतवार दिखे तो अपन भाई खसी है या खुरपू है बी के माध्यम से अपन निकाल देनी चाहिए।
1: और देखो सा समय पर अगर यहाँ को नियंत्रण कर लिया तो फसलों में पोषक तत्व और नमी बनी रहेगी, और अपन निराई गुड़ाई कर ला तो जो जमीन में नमी है वह भी सही तरीके से बनी रहेगी। और खड़ी फसल की स्थिति ने देखा तो कोड़ा पौधा घना चाहे तो आवश्यकता के हिसाब से पौधा ने पर्याप्त जगह मिले इसके लिए वहां थोड़ी जगह के हिसाब से पौधा को वो कर दे।
0: बिल्कुल, कई जगह जी आपने देखा भाई बीज ज्यादा गिर जाए तो भी कमाने किसान भाई जी यहाँ पे हमेशा खेत कमाने जाए, जटे कम पौधा है तो बरसात कमाने बटू जाए बाजरू है तो भी उखाड़ आप दूसरी जगह लगा जाए तो वो बाजरू आराम से लग जाए, वो काम भी कर सके।
1: और देखो सर अबार फसल से गंवार की, मूंग, मोट की, जमक कीट रोगों की भी निगरानी अपना किसान भाई ने करती रहनी चाहिए, और किसी भी फसल हो आपका खेत में बीच बीच में किसान भाई टेम सारू माना संभालता रहे और देखता रहे कि कोई कीड़ो मकोड़ो कोई कीड़ो तो लागे पहुंचे, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप संभाल लेवा तो उनको नियंत्रण कर वो सही रहे जाए, और देखो सर रोग फैला पाचे तो परेशानी आ गई छे।
0: बिल्कुल परेशानी आवर, परेशानी आ जाए तो देखो किसान भाई है थोड़ा सा ये बात को तो जरूर ध्यान रखे कि वो मनमर्जी कोई कोई भी कीटनाशक बाजार से लेकर वो छिड़काव नहीं करे, विशेषज्ञ की सलाह ले ले जी, कृषि प्रवेशक है या और कोई जो कृषि खेती बाड़ी से संबंधित कोई जानकारी जुटार भी के बाद में वो जखी दवा मन बताओ भी कोई भी छिड़काव करे।
1: और देखो सर कीट रोग सब अलग अलग तरीका करे, जहाँ पत्तिया पर धब्बा लागो, पत्तिया मुड़वो, छेद या कीट दिखाई देवे तो वो रोग की पहली अपने पहचान करनी चाहिए, बी के पछे ही जी आपने प्रभु भाई बताया दवाई को प्रयोग करनी चाहिए, और बाजार में विशेष ध्यान रखे भाई की तरीका से फसल की बढ़वार और पौधा की संख्या देखा, पानी भराव वाला खेता में जल निकास की व्यवस्था करा, तो यह सब जो छोटी छोटी चीजें से ना वह को अपने किसान भाई ने टाइम सारू ध्यान रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल, थे पानी की जगह बात करी करिए, अपन बाजरा की जगह खड़ी फसल जी हमने भी कमाने विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाजरो कई बार जहाँ पानी भर जाए ना बटे अड्डो गिर जाए, और अड्डो गिरता है जी फसल जहाँ सिट्टो वो ऊपर लागना चाहिए, वो सिट्टो भी तो बने को नहीं और पैदावार अपन चौकी मिल कौन सके, तो खट्टे पानी भरे अगर खेत कमाने डेरी वालों खेत हुए तो भी पानी निकाल वो पूरा जतन अपन करना चाहिए।
1: बिल्कुल सा, और देखो सर सब्जियां में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा भाई, खेतों में लौकी, कद्दू, भिंडी, मिर्ची, टमाटर ये लाग रहे थे तो उनको नियमित रूप से फल और पत्तियां की जांच करता रहे और वहां की भी खरपतवार हटाता रहे।
0: बिल्कुल, खरपतवार हटाता रहे और सागे सागे देखो आपने खेती के सहायक सागे सागे देखो आपने सहायक धंधो है पशु धन आप रखा तो वहां के लिए भी चारा की जहाँ आबा वाला टाइम कमाने जी चौमा टाइम तो कमाने चारो आप के लिए पर्याप्त मिल रहा है अपन तो वो भी अपन बिकी भी फसल लेर और चारा की व्यवस्था आगे के लिए अपन कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल सा, और देखो सबसे मोटी बात यह है भाई दवाई या कीटनाशक को प्रयोग केवल फसल के कीट रोग की सही पहचान और उनका जो विशेषज्ञ सलाह देवे उनका हिसाब से ही देनी चाहिए, या नहीं कि मन मर्जी से ही मात्रा तो थोड़ी सी चाहे लेकिन आप सोच रहे कि नहीं थोड़ी सी और ज्यादा दे दें तो कीट रोग जल्दी खत्म है जलो फसल चौकी उगली, तो उससे तो फायदा की बजाय नुकसान ही है बोलो, इसलिए हर चीज को समय सारू और सही मात्रा में ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल ध्यान, और किसान ने इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए भाई आप की टेम कौन सी फसल बोई भी कमाने कौन सो रोग लगियो भी कमाने कौन सी आप दुआई दी तो वो भी किसान के कने भी को जो रिकॉर्ड है वो होना चाहिए, ताकि जब भी कोई समस्या आवे तो आप आगामी टाइम में जो कोई समस्या आवे तो भी को आप सही तरीका से समाधान ले सका।
1: बिल्कुल सही बात किया प्रभु भाई, बहुत ही चौकी बात बताया भाई, फसल को ब्यौरो भी आप अंगन रहनी चाहिए जिसको किसी भी टाइम कोई भी अगर समस्या रहे तो आप उनको सही तरीका से समाधान कर सका। और देखो प्रभु भाई या तो आपने चीज जानकारी की बात और आप कार्यक्रम में आगे बढ़ावा और आपने कार्यक्रम में भी विषय विशेषज्ञ पधार चुका है तो सबसे पहले ओरखान कर।
0: बिल्कुल आज कार्यक्रम के मैंने जानकारी देवा के वास्ते स्टूडियो के मैंने विराजमान है डॉक्टर कृष्णानंद जी बंसल और आप सहायक आचार्य है PGIVR जयपुर अपने कार्यक्रम को मैंने पधारा है, और आज अपने जानकारी देवला भाई का आपने जो पशुधन की अपन बात करी तो बार बार जो गाय है भैंस है ये फिर जावे है इस एक कारण का ही है निवारण का ही उसके आपने जो पशुधन जो रखा तो भी मैंने अपन ज्यादा लाभ ले

0: ई विषय पर जानकारी अपन देवला। तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है सर, राम राम सर।
1: राम राम सर, धन्यवाद। मेरा भी सभी पशुपालकों का राम राम।
2: जी सर, डॉक्टर कृष्ण नंदन बंसल जी, आपसे सबसे पहले जी बात कराला भाई गाय भैंस को फिर वो वहाँ का कारण निवारण का बारे में, तो सबसे पहले यह जानना चाहूंगा भाई गाय भैंस को जो फिर वो हो जाए वो काई हो जाए और इनकी पहचान क्या कर सके छे।
1: जी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपनी जो गाय भैंस होती है तो वो दिखने में तो हष्ट पुष्ट नजर आती है और समय समय पर वो पाद में भी आती रहती है 20 से 21 दिन के अंदर ना। लेकिन यदि अपन उसको कृत्रिम गर्भाधान या मेटिंग करवाते हैं, सांड से क्रॉस करवाते हैं, तो उसके बाद वो प्रेग्नेंट या गर्भित नहीं हो पाती है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि दिखने में तो हष्ट पुष्ट है लेकिन वो गर्भित नहीं हो पा रही है।
2: जी।
1: ये तीन या तीन से अधिक बार यदि गर्भित नहीं हो पा रही है तो समझो वो जानवर अपना रिपीट ब्रीडर जिसको बोलते हैं, यानी कि बार बार वो फिर रही है। जी,
2: तो सर इसे जो अपना पशुपालक भाई जो वन कई तरीका का नुकसान हो सके छे उनका बारे में बताओ।
1: इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि जो दूध का बड़ा भारी नुकसान होता है, एक गाय या भैंस अगर सही समय पर गाभिन हो जाए तो साल में एक बछड़ा या पाड़ा दे देती है और समय पर दूध चालू रहता है। लेकिन अगर वो 6 महीने लेट हो गई तो समझो 6 महीने का दूध या पैसा उसका पानी में गया। अगला होता है कि इसमें चारे या बाटे का दाने का फालतू खर्च होता है। राजस्थान में जैसे कि सूखा चारा सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या सूखा चारा तो मिल जाता है बट जो हरा चारा होता है उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है और हरा चारा की समस्या की वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। दूसरी बड़ी बात है कि जो इसके अंदर यदि पशु गाभिन नहीं हुआ तो इसमें डॉक्टर का सुई का बार बार का खर्चा भी बढ़ता जाता है। जैसे कि हर बार जब पशु फिरता है तब आप डॉक्टर को बुलाते हैं, सुई या कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं और दवाइयों का खर्च भी और डॉक्टर का खर्च भी बार बार आने से बढ़ता जाता है। और दूसरी चीज ये नेक्स्ट ये है कि पशु की कीमत कोड़ियों के भाव हो जाती है। ले देखे जैसे कि जो गाय बाजार में 60 से 70 हजार या लाख रुपए की बिकती है, यदि वो बार बार फिरने लग गई तो उसकी जो बाजार में वैल्यू है, कीमत है, वो कम हो जाती है। तो अंत में क्या करता है, किसान उसको उन्हीं पौने दामों में बेचने को मजबूर हो जाता है। जी,
0: तो आप बात करें डॉक्टर साहब का जी गाय और भैंस है जी बार बार फिरवा का मुख्य मुख्य कारण है बे कहीं उसके है।
1: इसका सबसे बड़ा चारा जो कारण है वो राजस्थान में तो अपने है सूखे चारे की अधिकता और खनिज तत्वों की कमी ना। जैसे अपने यहाँ पे जो चारा होता है वो सूखा चारा जिसके अंदर पशु पोषण के जो तत्व होते हैं उनकी भारी मात्रा में कमी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ सालों भर हरा चारा नहीं मिलता रहता है, जैसे कुट्टी पर या तूड़ा तूड़ी पर डिपेंड करते हैं, अपन निर्भर रहते हैं और हरा चारा या खनिज तत्व उसको नहीं मिल पाते हैं। दूसरी बात है कि जो बच्चेदानी का संक्रमण होता है, कई बार क्या होता है बच्चेदानी में संक्रमण हो जाता है तो जब पशु ब्याता है या बच्चा देता है तब जहर नहीं गिर पाता कई बार समय पे, तो जहर नहीं गिरने से उसके अंदर गर्भाशय में संक्रमण हो जाता है और उस संक्रमण की वजह से जो दोबारा उसको गाभिन करवाना चाहते हैं तो वह गाभिन नहीं हो पाती है। नेक्स्ट चीज है कि हार्मोन, हार्मोन का कुप्रभाव मतलब जो हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर ना, जैसे कि जैसे इंसानों के अंदर भी हार्मोन होते हैं उसी प्रकार जानवरों में भी कुछ हार्मोन होते हैं, उससे अंडा सही समय पर नहीं बनता है और बनता भी है तो वो निकलता नहीं है अंडा सही समय पर ना। दूसरा है गर्भाधान का गलत समय, जैसे कि मान के चलो गाय अपनी ताब में आई है सुबह के टाइम ना, तो अपन का जो सही समय होता है उसका कृत्रिम गर्भाधान का वो होता है शाम की समय ना, सुबह यदि हिट में आता है तो, और यदि शाम को हिट में आता है तो सुबह करवाना चाहिए। तो पशुपालक क्या करते हैं सही तरीके से ताप को नहीं पहचान पाते हैं और गलत समय पे कृत्रिम गर्भाधान कर लेते हैं जिससे कि गाय फेल हो जाती है, बार बार फिरने लग जाती है।
0: जी, और यहाँ की समस्या कोई बार बार फिरवा की कोई अपना पशुधन के मायने है गाय या भैंस के मायने, तो भी कोई समाधान की प्रकार से हो सके है।
1: जी, इसका समाधान बिल्कुल हो सकता है, उदास होने की किसान भाइयों को कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मिनरल मिक्सचर्स, बाजार में कई प्रकार के मिनरल मिक्सचर पाउडर आजकल मिलते हैं, तो उचित सर्टिफाइड कंपनी का आप मिनरल मिक्सचर पाउडर लेके रोजाना उसको जो दाना पानी आप देते हो उसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम का आप मिनरल मिक्सचर उसमें मिला सकते हो। इससे क्या होता है जो मिनरल मिक्सचर अपन मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो सूखे इलाके होते हैं राजस्थान के वहां पे सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की कमी से होता है, तो ये अपने मिनरल मिक्सचर पाउडर है उसके अंदर सारे पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, कोबाल्ट, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं जो बच्चेदाने के ढीलेपन को दूर करता है। दूसरी चीज है पेट के कीड़ों के मारने की दवाई ना, तो हर पशुपालक को खासतौर से बरसात के मौसम में ना साल में 3 बार कम से कम उसको कीड़े मारने की दवाई देनी चाहिए। अगली बात है कि हर 12 घंटे में जब जानवर ताप के लक्षण दिखाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुख्य बात कि किसान भाई ताप को कैसे पहचानेंगे, तो ताप को पहचानने के लिए क्या होता है जब पशु बार बार रंबाता हो या फिर वो एक

0: ट्रांसपेरेंट यानी कि एक पारदर्शी कांच के तरह का एक म्यूकस स्राव करता है, तो म्यूकस यदि स्राव होने लग जाए और बार बार रंगाना शुरू कर दे और उसके जो बाहर का जो अंग है वो यदि सूज जाए तो पशुपालक को समझना चाहिए गाय ताप में आ चुकी है। तो ताप में आने के तुरंत 12 घंटे के बाद किसी उत्कृष्ट वेटनरी डॉक्टर को बुला के और कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। दूसरी चीज, यदि गंदा पानी अगर पीछे से बच्चा लाने से स्राव हो रहा है गंदे पानी का, तो डॉक्टर को बुला के या फिर पशु पालक को खुद हॉस्पिटल ले जाके पशु चिकित्सालय में वहां पर बच्चेदानी की सफाई नियमित अंतराल में करवानी चाहिए।
1: जी
0: जी
2: डॉक्टर साहब, अब आपसे यह जानना चाहना कि भाई जिया गाय चे भैंस चे बार बार फिर जाओ चे उनका प्रमुख कारण भी आप बताया, तो कहीं इन्हें जो आप बात करा

0: भी आप बात बताया तो कहीं इन्हें जो आप बात करा भाई उनके आहार में खनिज मिश्रण को या और कोई दूसरा दूसरी चीजों को भी कितना प्रभाव रहे थे तो उनके बारे में बताओ।
1: खनिज तत्वों में सबसे ज्यादा प्रभाव इसमें रहता है इस बीमारी के अंदर ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब खनिज तत्व क्या करते हैं जो बच्चेदानी होती है जानवर की ना उसको ढीला होने से रोकती है। यदि बच्चेदानी ढीली हो गई तो समझो वहां पर जो अपन कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो वहां पर बच्चा नहीं रुकता, जो गर्भ होता है वो ठहरता नहीं है, तो वहां पर क्या गर्भ गिर जाता है, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है और पोषक तत्वों का बहुत बड़ा इसमें इसका रोल होता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि रोजाना अपने आहार के अंदर 100 ग्राम कम से कम न्यूट्रिशन का जो पाउडर होता है वो जरूर जानवरों को दें अपना।
0: तो आसान मौसम से जी कि अबार चाहे बरसात को मौसम, तो ये मौसम में जो गाय भैंस फिर जाओ चाहे या उनकी समस्या रहो चाहे तो ये समय जो पशुपालक भाई चाहे वहां कसी बातों को ध्यान रखनी चाहिए।
1: सबसे ज्यादा क्या होता है जो बरसात का मौसम होता है तो इस समय पे जो गाय भैंसे के पेट होते हैं पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, तो यदि आप उसको खनिज तत्व उपलब्ध भी करवा रहे हो जानवर को तो वो खनिज तत्व गाय को या भैंस को ना जाके वो कीड़े उसको ले जाते हैं न्यूट्रिशन को ना, तो उसके बचने के लिए आपको जो बच्चा क्या बोलते हैं कीड़े मारने की दवाइयां होती है इसको बोलते हैं अपन ना डिवॉर्मिंग, किसान भाइयों ने सुना होगा डिवॉर्मिंग के बारे में ना, तो डिवॉर्मिंग की टेबलेट भी मिलती है पशु चिकित्सालय में, उसका पाउडर भी मिलता है और पिलाने की दवा भी मिलती है, तो पशु चिकित्सक की सलाह पे उसको हर साल में 4 बार या 3 बार कम से कम 3 या 4 बार उसको जरूर पिलाएं और खासतौर से बरसात के मौसम में ताकि वो कीड़े मर जाए।
0: तो अगर कोई पशुपालक भाई के गाय भैंस की ऐसी स्थिति हो रही चाहे तो वो पशुपालक भाई आपके पशु है चिकित्सक ने कब दिखानी चाहिए या कब उनकी जांच करवाओ?
1: जब किसान भाई को पता चले या पशुपालक को पता चले कि उसकी भैंस या गाय कई बार वो दिखने में ठीक लग रही है, खाना भी अच्छे से खा रही है, पानी भी ठीक से पी रही है, और यदि वो 3 या 3 से अधिक बार उसको उसमें ले जाके कृत्रिम गर्भाधान करवाने का प्रयास किया या करवाया लेकिन इतनी बार भी कृत्रिम गर्भाधान या क्रॉस करवाने के बाद वो ठहर नहीं रही है यानी कि वो गर्भित नहीं हो रही है तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें, क्योंकि रोजाना इसके अंदर तकरीबन 150 से 200 रुपए का पशुपालक को नुकसान होता है, क्योंकि गाय यदि ज्ञावन हो या ना हो वो खाना तो खाएगी, तो उससे क्या मान के चलो कोई गाय 1 साल में 1 बच्चा दे देती है, यदि वो 6 महीना लेट हो गई तो 6 महीने ना तो दूध मिला लेकिन गाय को तो खाना खिलाना पड़ेगा, तो उससे बड़ी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल नुकसान होता है किसान को ना।
2: तो नुकसान की अगर बात करें तो इन को कोई जहाँ पशु है वो कोई किसान या चाहो आप इन बेच देंगे दूसरा दे दें तो या दूसरों जो कोई भाई लोग खरीदे तो वो भी थोड़ा सा सावधान भी रहे तो कोई भी लक्षण भी होगा डॉक्टर साहब?
1: उसका लक्षण तो यही मिलेगा जब आप किसी जानवर को खरीद रहे हो तो उससे एक बार आप मतलब हिस्ट्री को ले सकते हो कि लास्ट इसका जो इससे पूर्व में बच्चा कब दिया था और इतने दिनों से कब आपने कृत्रिम गर्भाधान इससे पहले कब करवाया था, यदि आप उसका मालूम कर लोगे पशु चिकित्सक से जो रिकॉर्ड रहता है पशु चिकित्सालय में कि आपने कहां पर कृत्रिम गर्भाधान करवाया तो उस पर्ची के माध्यम से पता कर सकते हो कि इतनी बार कृत्रिम गर्भाधान कराया फिर भी ये ज्ञावन नहीं हो रही है, तो उस प्रकार उस चीज का ध्यान रखें खरीदने से पहले ना।
0: तो डॉक्टर साहब अब यह भी बताओ साहब भाई राजस्थान सरकार छे आपने सरकार इस संदर्भ में कसी कसी योजनावां चला रखी छे जिके की अपना जो पशुपालक भाई छे वाने नुकसान भी हो छे तो वाने थोड़ो सो उनको फायदो मिल सके?
1: आजकल क्या अपनी राजस्थान सरकार ने हर जगह पे लगभग हर पंचायत समिति पे पशु चिकित्सालय पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले हुए हैं, वहां पे या तो पशुधन निरीक्षक या पशु चिकित्सा अधिकारी हर जगह आजकल अपन को उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं, तो इस प्रकार की यदि कोई समस्या पशुपालक को दिख रही है जानवर के अंदर तो वो हॉस्पिटल लेके जाए वहां पे पशु के लिए जो निःशुल्क आरोग्य योजना जो चल रही है इसकी भारत राजस्थान सरकार की ना उसके तहत उनको निःशुल्क दवाइयां मिलती है तो उसका जरूर से जरूर लाभ उठाएं।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब जी पशुओं के संदर्भ में बात करें तो ये टाइम का मायने जहाँ पशुओं के मायने को टीकाकरण की अगर मोटा मोटी रूप से बात करें तो
1: टीकाकरण जी जी इस टाइम पे टीकाकरण अपन को जैसे कि FMD हो गया जो खुरपका मुंहपका बीमारी सुना होगा किसान भाइयों ने या ब्रुसेलोसिस हो गया तो खासतौर से जो बरसात का मौसम है उसमें FMD का टीकाकरण अवश्य करवाएं, ये साल में 1 बार होता है और इसको जरूर करवाना चाहिए
0: जी
1: खुरपका मुंहपका का टीका।
2: और अब चलता चलता कार्यक्रम को मैंने कोई ऐसी जानकारी की किसान भाइयों तक आप पूर्ति करनी चाहो जब छूटगी और थाना लगेगा आ ये टाइम का मैंने बहुत ही महत्व है और जो अपना विषय है विश्व जरूरी है तो भाई लोग पूर्ति करनी चाहो तो
1: इस टाइम पे किसान भाइयों को सबसे जरूर ध्यान रखने की चीज है जो बरसात का मौसम है सबसे पहले तो अपने पशु का जितने भी पशु घर में है चाहे गाय हो भेड़ हो भैंस हो बकरी हो तो उसका पहले तो कृमिनाशक दवा जिसको डिवॉर्मिंग बोलते हैं उसका जरूर ध्यान रखें और उसको कृमिनाशक दवा जरूर खिलाएं। दूसरी चीज है कि अपने जो पशु पोषण में जो चारा दे रहे हो आप हरा चारा या कुट्टी तूड़ा भूसा तो उसके अंदर पशु पोषण का ध्यान रखते हुए कम

0: से कम उसको न्यूट्रिशन जो पाउडर होता है वो जरूर उसकी डाइट के अंदर खिला सकते हो आपने। इससे क्या होगा, पशु की जो बच्चादानी है गर्भा से वो भी स्वस्थ रहेगा, उससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और पशुपालक की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
1: वासा वाह डॉक्टर साहब, डॉक्टर कृष्णानंद बंसल जी आप बहुत ही बेहतर तरीका से हैं, बार बार गाय भैंस को फिर वो और उनका कारण और निवारण का बारे में बहुत ही बेहतर तरीका से बताया। आप सहायक आचार्य PVIVER और जयपुर में आप विराज्य से आप कार्यक्रम में पधारा और बेहतर तरीका से किसान भाई ने जानकारी दिया, इसके लिए आपको घनो धन्यवाद सा। और सर धन्यवाद स्वरूप, अब आपने सुना देवा एक लोक रचना और आप सब भी सुना सर।
2: बिल्कुल, एक मीठी सी लोक रचना।

0: देखो सा अनिता बहन, बहुत ही मीठी सी जगी आपने राजस्थान की देखो माटीरी जगी लोक रचना है भाई लोगों तक पूगती वीर जरूर भाई लोगों ने दाई आई हुई थनक से लगी
1: भाई मैंने तो खूब दाई आई। और देखो जदि अपना राजस्थान की लोक रचना आप कोई सुना चाहे तो मन निशान खिल उठे छे बिल्कुल
0: बिल्कुल। और देखो चौमासा का मैंने यहाँ की लोक रचना के छप्पर पुराना पड़ गया रे, यानी पुराना टाइम का मैंने जदे छान झोंपड़ा हुआ करता तो बी टाइम का मैंने कवि है यहाँ को गीत है जो लिखे हुए गए आपका पति देव ने जगह विदेश का मैंने बसे है बन जगी गोरडी है याद करता था कहीं केवल भाई गए। देखो आपकी मन की जगी भावना है भाई कागज के मायने मांडर या आपकी भावनाओं के माध्यम से कि भाई क्या कागज हुए तो बांच लू पर कर्म नहीं बांचो जाए। देखो अनिता बहन वो टेम ही हो जब चिट्ठी पत्री के माध्यम से जगह मन की भाव है वे मांडर कागज के ऊपर भेजा जाता है बन कत्ता सही जर लोग बाग है जगह रखा करता
1: वह मनसू लिखा जाता और मनसू पढ़िया जाता और मन पे ही मंड जाता और ऐसी छह जो मतलब वह हमेशा ही उम्र बना रहता। आजकल आपा एक कितना ही बात कर लिया कितना ही मैसेज कर लिया पर वाच जो मन की भावना चले वह आ कौन सके
0: बिल्कुल
1: जो की पहलिया थी
0: बिल्कुल कागज के ऊपर जो हाथ उन लिख रही कागज जाते और बिना बी के माने देखो हेत अपना तर स्नेह जो तो ने वो देखने जो तो गांव का मैंने कोई की चिट्ठी पत्री आती ने कागज ना कहता भाई फलाना को

0: कई समाचार लिखे अड़ोसी पड़ोसी कभी बेटा बेटर बाद में कोई पटबड़ लिखबड़ो तो भी बुलाता
1: यहाँ
0: सगला शिक्षा को तो प्रचार प्रसार हो कोनी बनाई लिखाई ही कोनी तो देखो पढ़ड़ो तो वो कागज बांध तो जहाँ देखो भी आसा पासा लोगों का नाम आता तो बेबी बन भी अलग प्रकार की राजी होता है खुशी होती है।
1: और देखो ये सब चीजें मन से जुड़ेड़ी ही पहले आपको अलग ही टाइम छो आज अलग टाइम छे पर बच्चे जो चीजें चेने वो भुलाया कौन भूले
0: बिल्कुल भुलाया कौन भूले। देखो तकनीक को दौर है बिल्कुल आप तकनीक अपने कहना आप भी को इस्तेमाल करा तो आप आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से तकनीक ना अपन इस्तेमाल सकारात्मक तरीका से इस्तेमाल करनी चाहिए पर भी कैसा कैसा क्या नीता बहन जबकि अपनी परंपरा ही पुरानी जगी संस्कार है अपनी जगी पीढ़ी हमें बिल भी बताना चाहिए
1: बिल्कुल सा बताना चाहिए और जब आप अपनी पीढ़ी ने बतावाला यदि तो वो आगे बढ़ेला और संस्कार भी जो पुराना अगर अपना जो रूढ़िवादी है वन भी अपन लेने चलनी चाहिए वन अपने पीछे छोड़नी चाहिए और जो सकारात्मक है आगे बढ़ावा लायक है वह चीजें नहीं अपन है अपनी आबा वाली पीढ़ी ने बतानी चाहिए।
0: बिल्कुल देखो सावन को मीनू चाल रहे है आबा वाले टाइम को मैंने तीज को जो थे तो महिला शक्ति है नारी शक्ति है बंगली तो देखो सावन को मीनू यहाँ विशेष हुए तीज है तो देखो सावन महीनो सातरूर हरिया हरिया खेत ठंडो चले बायरूर मुर्दर मुड़के रेत मुर्दर मुड़के रेत बालमरी याद आवे और नाचे बन में मोर मेंड का गीत सुनावे कहता प्रभु कवि राय तीज हिंडा मन भवन और मनलो करे किलोड़ बरसे जमाजम सावन।
1: बिल्कुल सावा सावा प्रभु भाई बहुत ही चोखी बात बताया आप और पूरा सावन को आनंद आप चार लेना में सुना दिया पर सा अब चाहे जो भगत हो चलो चे कार्यक्रम को तो आगे लेवा देव आगे अनिता ने
0: और प्रभु दयाल ने
1: चालार करा
0: राम राम सा।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर, यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बजने को है। ठीक 8 बजे से कार्यक्रम संसद की साप्ताहिक समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक है पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल

कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रूपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक 2 शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। यह विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा

की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्रवाई दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया।

0: बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे संसद की साप्ताहिक समीक्षा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ही आमेर चैनल है। मेरी वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं धुरंधर द रिवेंज फिल्म का गीत। खान साहब और शाश्वत सचदेव की आवाजों में नुसरत फतेह अली खान का लिखा गीत है और संगीत से सजाया है शाश्वत सचदेव ने।

फिल्म का नाम डॉन, जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनॉय, महालक्ष्मी और सोनू निगम की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत क्वीन फिल्म से लब जंजुआ और सोनू कक्कर और नेहा कक्कर की आवाजों में यह गीत है, अन्विता दत्त का लिखा हुआ और संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद समाचार प्रसारित किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर उर्दू में प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ है प्रशांत। प्रशांत नमस्कार।
1: नमस्कार धर्मेंद्र।
0: तो स्पोर्ट्स कैंप के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज और एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैंप के साथ खेल की हर बात और शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
1: यूजीन में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जैवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट 11 के साथ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बनाए। यूरोप कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप ई में लाजुंग एफसी ने मुंबई एफसी को 5-0 से हराया और नाकोन पाथुम में एशियन पिकलबॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने 3 मेडल जीते।
0: तो सबसे पहले चलते हैं एथलेटिक्स के मैदान पर। अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जैवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। आशीष ने तीसरे दौर में 74.09 मीटर का थ्रो फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: जब हौसला बुलंद हो तो हवा का रुख भी मोड़ा जा सकता है और यही साबित किया भारत के जैवलिन थ्रो की नई उम्मीद आशीष यादव।

0: नेशनल एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में दबाव चरम पर था, लेकिन अपने तीसरे प्रयास में 19 वर्ष के जांबाज आशीष ने ऐसा आसमानी थ्रो किया कि सभी देखते रह गए। उनके 74.09 मीटर के थ्रो ने भारत की झोली में इस साल का पहला मेडल डाल दिया।
1: He's capable of more than six, and that has leapfrogged him up to second. Much, much more like it. 74.09.
0: ये सिर्फ एक सिल्वर मेडल नहीं, एक बड़ी विरासत की गूंज है। इसी प्रतियोगिता में 2016 में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन के ठीक 10 साल बाद आशीष यादव अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के पोडियम पर खड़े होने वाले दूसरे भारतीय जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं। नीरज ने 2016 वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था और रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक नहीं टूटा है। खुद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी ट्वीट कर आशीष को इस बड़ी सफलता की बधाई दी। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करते और जीतते देखना हमेशा एक बहुत अच्छा एहसास होता है। एक जेवलिन थ्रोअर के तौर पर यह मेरे लिए थोड़ा और खास है। अंडर 20 में आपके रजत पदक पर मुझे बहुत गर्व है आशीष। आशीष का रजत पदक जेवलिन की दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे का प्रतीक है। जेवलिन देश में सबसे तेजी से उभरता हुआ खेल है। नीरज चोपड़ा के अलावा भी कई युवा थ्रोअर इस खेल में आगे आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीत रहे हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश में जेवलिन के प्रति नई जान फूंकी थी। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में नीरज ने रजत पदक जीता। उत्तर प्रदेश और भारतीय सेना के इस युवा खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली उड़ान तो अभी बाकी है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: उधर धर्मेंद्र, इसी प्रतियोगिता में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में भारत के मोहम्मद अशफाक 46.20 सेकंड का समय निकालकर आठवें स्थान पर रहे। अमेरिका के जेरन डेलॉन ने 44.47 सेकंड के साथ स्वर्ण और किंसी विल्सन ने रजत पदक जीता। महिलाओं की हाई जंप में पूजा ने 1.79 मीटर के साथ फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों की लॉन्ग जंप में शाहनवाज खान और जितिन अर्जुन ने फाइनल में जगह बना ली है। उधर महिलाओं की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में पूनम अपने क्वालिफिकेशन ग्रुप में आठवें और कुल 13वें स्थान के साथ फाइनल में जगह नहीं बना सकी।
3: जी, और अब ट्रैक एंड फील्ड से चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट की तरफ। भारत की अश्मिता चालिया कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज सेमीफाइनल में अश्मिता ने अपनी साथी खिलाड़ी रक्षिता रामराज को शिकस्त दी। ये रिपोर्ट सुनते हैं।
4: भारत के दो युवा खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिली। सेमीफाइनल मुकाबले का पहला ही गेम रोमांच से भरपूर रहा। कड़े संघर्ष के बाद अश्मिता पहले गेम को 21-13 से अपने नाम करने में सफल रही। दूसरे गेम में रक्षिता ने जोरदार वापसी की और गेम को 21-16 से जीतते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे गेम में अश्मिता ने रक्षिता को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने गेम को 21-13 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अश्मिता चालिहा की भिड़ंत कल चीन की हान किया नक्सी से होगा। अश्मिता के लिए यह मुकाबला कठिन हो सकता है। हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने कांटे के मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। अश्मिता ने कल जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हीना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। उधर पुरुष डबल्स में पृथ्वी के रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशिया जोड़ी के सामने पराजित हो गई। मलेशिया के मैन वेई चोंग और सो वुई यिक ने 21-7, 21-8 से बेहद आसान जीत हासिल की। कल समाप्त होने वाले BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 सीरीज इवेंट का कुल प्राइस फंड 2.5 लाख अमरीकी डॉलर है। यह टूर्नामेंट 2007 में शुरू हुआ था और 2010 तक इसे इंटरनेशनल चैलेंज लेवल टूर्नामेंट के तौर पर आयोजित किया गया था। इसके बाद 2011 में इसे BWF ग्रांड प्री गोल्ड इवेंट में बदल दिया गया। साल 2017 में ग्रांड प्री गोल्ड इवेंट बंद होने के बाद कोरिया मास्टर्स BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 का हिस्सा बन गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
2: धर्मेंद्र, अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। दक्षिण कोरिया 18 और 19 सितंबर को भारत के खिलाफ डेविस कप टेनिस के दूसरे दौर के क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। भारत इस समय डेविस कप रैंकिंग में 19वें और

0: कोरिया 16वें स्थान पर है। कोरिया का भारत के खिलाफ जीत हार का रिकॉर्ड 6-5 का है। इस मुकाबले के लिए टीम का चयन सोमवार को किया जाएगा। दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला एक दशक पहले हुआ था, जब भारत ने चंडीगढ़ में एशिया ओशियाना ग्रुप 1 के मुकाबले में 4-1 से जीत दर्ज की थी। दूसरे दौर में विजय रहने वाली टीम नवंबर में होने वाले अंतिम 8 मुकाबले में जगह बनाएगी। कोरिया 2022 और 2023 में 16 टीमों के डेविस कप फाइनल में पहुंच चुका है।
1: और प्रशांत, टेनिस की ही बात को और आगे बढ़ाते हैं। मॉन्ट्रियल में कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लेला फर्नांडीज ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में रूस की मीरा आंद्रीवा को 6-1, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ ही 23वीं रैंकिंग वाली फर्नांडीज अब राउंड ऑफ 16 में पूर्व यूएस ओपन विजेता और जापान की खिलाड़ी नौमी ओसाका से भिड़ेंगी। ओसाका ने बेल्जियम की एलिस मर्टिस को 6-1, 6-4 से हराया। इसके साथ ही फर्नांडीज ने एक साल से भी ज्यादा समय में टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ अपनी पहली जीत भी दर्ज की।
0: चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट 11 के साथ 3 दिवसीय अभ्यास मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 357 रन बना लिए हैं। मेहमान टीम मेजबान टीम की पहली पारी से सिर्फ 6 रन पीछे है। सुनते हैं जया भारती की रिपोर्ट।
2: टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 363 रन पर घोषित की। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानस सुथार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि गुरनूर बरार ने 1 विकेट हासिल किया। इसके जवाब में भारत को पारी की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में झटका लगा, यशस्वी खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने कप्तान केएल राहुल के साथ 2 विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी करते हुए भारत को संभाला। केएल राहुल 1 छक्का और 5 चौकों के साथ 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पडिक्कल ने बेहतरीन पारी खेली और शानदार शतक लगाया। पडिक्कल ने 121 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 14 चौके शामिल रहे।
3: शॉर्ट बॉल पुल्ड अवे, दैट्स द 100। व्हाट अ नॉक फ्रॉम देवदत्त पडिक्कल, बैटेड ब्रिलियंटली टुडे कमिंग इनटू द टेस्ट मैच प्रैक्टिस गेम। ही हैज डिलीवर्ड परफेक्टली। Outstanding. It's about temperament.
2: शतक पूरा करने के तुरंत बाद देवदत्त रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि मोहम्मद सिराज के आउट होने के बाद पडिक्कल दोबारा बैटिंग करने उतरे। इस पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 18 चौकों के साथ नाबाद 142 रन बना लिए हैं। पडिक्कल ने शतक जड़कर नंबर 3 पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। साई सुदर्शन टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में गोल टेस्ट मैच में पडिक्कल का भारत की ओर से नंबर 3 पर खेलना लगभग तय हो गया है। भारत की इस पारी के दौरान रविंद्र जडेजा 63 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। मानस सुथार ने 41 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। श्रीलंकाई खेमे से रमेश मेंडिस और असंका मनोज ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि विश्वा फर्नांडो और केशरा नुआनथा 1-1 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इस वार्म अप मैच के बाद भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 15 अगस्त से गाल में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और हम आपको बताएं कि भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वी साई सुदर्शन दाएं पैर के अंगूठे में लगी चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला से बाहर हो गए। सुदर्शन को यह चोट भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के दौरान लगी थी। भारत ए की तरफ से 2 मैच में शतक लगाने वाले सुदर्शन दूसरे मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और तब से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चोट से उभरने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। सुदर्शन की चोट पर निगरानी रख रही खेल विज्ञान टीम के अनुसार वे श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए और समय देने की सलाह दी है। उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह फिट नहीं है।
0: उधर भारतीय महिला टीम की प्रमुख बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स सदन रेप की तरफ से खेलते हुए मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मौजूदा द 100 क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इसके चलते उनका आगामी महिला 2020 एशिया कप में खेलना भी संदिग्ध है। सदन रेप ने आज पुष्टि की कि टूर्नामेंट के शेष मैचों के लिए जेमिमा की जगह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को टीम में शामिल किया गया है। और श्रोता आपको बता दें कि महिला 2020 एशिया कप 28 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें भारत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा।
1: और अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। डूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय ग्रुप एफ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी का मैच चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 2-1 से आगे है। इससे पहले शिलोंग ने आज के एक अन्य मैच में ग्रुप ई मैच में मुंबई एफसी को 5-0 से करारी शिकस्त दी। सुनते हैं रिपोर्ट।
4: एवर ब्राइट संस्थाना के 2 गोल की मदद से शिलोंग

गुरुंग एफसी ने मुंबई एफसी पर 5-0 की बड़ी जीत दर्ज की। मैच का पहला गोल अभय गुरुंग ने पहले हाफ के इंजरी टाइम के पहले मिनट में किया। अभी इस झटके से मुंबई की टीम उबर भी नहीं पाई थी कि 2 मिनट बाद ही शिलोंग की तरफ से एक और जोरदार हमला हुआ। इस बार टेमिक्री लामोरोंग ने गोल कर अपनी टीम को 2-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक ये बढ़त कायम रही। हाफ टाइम के बाद मुंबई की टीम ने वापसी के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन एक बार फिर मेजबान टीम की तरफ से गोल आया। ये गोल 52वें मिनट में एवर ब्राइटसन साना ने किया। 3 गोल से पिछड़ने के बाद मुंबई की टीम के हौसले पूरी तरह से पस्त हो गए। इसका फायदा साना ने जमकर उठाया। उन्होंने 64वें मिनट में अपनी टीम के लिए 4th गोल किया। मुंबई की टीम गोल करने और मैच में वापसी के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन इरादा कामयाब नहीं हो सका। साना ने 84वें मिनट में टीम के लिए 5वां गोल करते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की। इस जीत के साथ शिलोंग राजोंग ने टूर्नामेंट में अपनी शानदार शुरुआत को बरकरार

0: इस जीत के साथ शिलोंग लाजोंग ने टूर्नामेंट में अपनी शानदार शुरुआत को बरकरार रखा है और अभी तक खेले गए मैचों के आधार पर वो ग्रुप ई में सबसे ऊपर है। उधर मुंबई दोनों मैच हारकर चार टीमों के ग्रुप में सबसे नीचे है। लैंगसिंग FC 4 अंक के साथ दूसरे और नॉन्कसे है SSNCC 1 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब बात पिकल बॉल पर। थाईलैंड के नाखोन पाथोम में एशियन पिकल बॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मेडल जीते। एशिया फेडरेशन ऑफ पिकल बॉल AFP की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में एशिया के कई उभरते हुए जूनियर पिकल बॉल खिलाड़ी अलग अलग आयु वर्गो में शामिल हुए। इस टूर्नामेंट ने युवा खिलाड़ियों को मजबूत प्रतिद्वंदियों के खिलाफ खेलने, बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने और कॉन्टिनेंटल स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। भारत के लिए मेडल जीतने की शुरुआत स्तुति और अंजलि ने की, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 18 गर्ल्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। अंजलि पोल ने अंडर 18 गर्ल्स सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा, जबकि आद्या और कीर्ति ने अंडर 12 गर्ल्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन पिकल बॉल जूनियर ओपन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2026 एशिया में जूनियर पिकल बॉल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।
2: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल के मैदान की हर खबर के साथ आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल ID sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी प्रशांत को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है।

0: जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
0: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और एनएफएसयू फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी

0: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह नड्डा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीमबेटका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडम्र मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माही, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी

0: में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए हैं और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म वार से। आवाज विशाल ददलानी और वेनी दयाल की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल एंड शेखर का।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
2: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: की होली होली है, तेरी होली मेरी होली सबकी होली हैप्पी है।
1: इंग्लिश किधर है?
2: इंग्लिश होली इंग्लिश हैप्पी भी इंग्लिश यार।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म सुपर 30 से। आवाजें प्रेम अरेनी, जनार्दन धात्रक, दिव्य कुमार और चैताली परमार की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।

0: श्रोताओं, एक गीत आपने सुना फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, आवाज देव नेगी और पायल देव की थी। गीत के बोल वायु के और संगीत विशाल शेखर का।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
2: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: श्रोताओं, यह गीत आपने सुना फिल्म पद्मावत से, आवाज नीति मोहन की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत संजय लीला भंसाली का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प गीतकार के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब क्या करें, इस गीतकार का नाम ही बावरा है। जाहिर है कि बावरेपन की बहुत सारी निशानियां होंगी इनकी इस दास्तान में।

आज के फनकार कार्यक्रम आज गुलशन बावरा पर केंद्रित है, एक ऐसी जुनूनी शख्सियत पर जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और फिल्म संसार में जबरदस्त नाम कमाया।

0: देखिए जी, मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को जिला शेखुपुरा में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। साखी वाले दिन मैं जन्मा था। कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए, तो मैं तो अपने माता पिता खो चुका था। लकीली देखिए, हमारी एक बहन है कौशल्या देवी, जो जयपुर में रहती थी।
1: पढ़ाई लिखाई के बाद गुलशन बावरा को शौक लग गया लिखने का और वो चले आए मुंबई।
0: जब मैं आया था बम्बई में 1955 में, तो मुझे लगता है बम्बई की पॉपुलेशन 10 लाख थी। और आज इतनी पब्लिक को देखना, उनसे वाकफियत करना, उनसे बोलना।
1: लेकिन मुंबई वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं आए थे, वो तो आए थे गायक बनने के लिए। आपको बता दें कि गुलशन बावरा को रेलवे में नौकरी मिल गई थी और कोटा में उनकी पोस्टिंग हुई और उसके बाद वो चले आए मुंबई। सन 1955 में वो मुंबई आए, रेलवे में क्लर्की करते और बाकी समय में फिल्मों में लिखने के लिए और गायकी के लिए जद्दोजहद करते।
0: बम्बई ऐसी नगरी है कि यहाँ पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बम्बई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ।
1: यही वो दिन थे जब रेलवे में माल गोदाम की नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब से आई

रेलगाड़ी गेहूं के एक के बाद एक बोरे उतारे चली जा रही है। गेहूं की इस जबरदस्त पैदावार को देखकर गुलशन बावरा के मन का जो गीतकार था वो कह उठा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये कविता उन्होंने अपनी डायरी में लिखकर रख ली और मनोज कुमार को उन्होंने दिखाई, जो उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और गुलशन बावरा के दोस्त भी थे। मनोज कुमार को ये कविता याद रह गई। आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म उपकार बनाई तो इस कविता को एक नामी गीत में बदल

0: गुलशन बावरा का नाम गुलशन बावरा कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है।
1: बात यूँ है, जब मैं नया नया दिल्ली से आया था तो मेरा कुछ रहने या कपड़ों का स्टाइल कुछ ऐसा था जो दिल्ली वाले नीले पीले कपड़े और पहना करता था, तो लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे। गीत लिखा चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जा, तो जब वो गीत रिकॉर्ड हुआ उसके साथ ही मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तो एक दफा कल्याण जी भाई के घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था, तो उसने बोला एक तीसरा गाना लिखना था भजन, तो उसने उसको बोला कि ये गाने तुम उसी से ही लिखवाओ जिसमें ये दोनों गाने लिखे। तो बोले ये सामने बैठा हुआ है लड़का, इसी ने लिखा है वो गाना। तो बोले झूठ मत बोलो कल्याण जी भाई, आपका जोक मारने का स्टाइल है, तो ये क्या लिखेगा, ये तो पिक पॉकेट पॉकेट मार सा लग बावरा। तो उस फिल्म में शैलेंद्र और हर्षद के भी गीत थे, तो उन्होंने रविंदर भाई से पूछा कि रवीन भाई ये कल्याण जी करेक्ट बोल रहे हैं कि ये गाने इसी ने लिखे हैं? बोले हाँ बिल्कुल इसी लड़के ने लिखे। तो बोले अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा, ये बावरा सा लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया।
0: तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। सबसे पहले गुलशन बावरा ने सन 1959 में कल्याण जी वीरजी शाह के संगीत निर्देशन में अपना पहला गीत लिखा जिसे लता मंगेशकर ने गाया। वो गाना था
2: मैं क्या जानू, मैं क्या जानू काहे लागे ये सावन मतवाला रे,
3: रूप जवानी मस्ती ने ये जादू तुझ पर डाला रे।
2: मैं क्या जानू, मैं क्या जानू काहे लागे ये सावन मतवाला रे,
3: रूप जवानी मस्ती ने ये जादू तुझ पर डाला हो, जादू तुझ पर डाला।
0: सन 1961 में गुलशन बावरा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी ताकत से फिल्मों में गाने लिखने लगे। गुलशन बावरा ने सबसे ज्यादा काम आरडी बर्मन के साथ किया, पंचम के साथ उनकी दोस्ती बड़ी ही मशहूर रही है। गुलशन बावरा ने एक एल्बम भी जारी किया जिसमें वो पंचम से जुड़ी दोस्ती की और गाने बनने की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें गुलशन बावरा ने बताया था कि एक दिन बारिश का समय था और पंचम का उनके पास फोन आया। उन्होंने फोन पर गुलशन बावरा को एक धुन दी जो थी चाबू चाबू चिया चिया चाबू चाबू चिया। गुलशन बावरा ने कहा ये क्या है, इस पर मैं क्या गाना लिखूं? तो पंचम ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर पर आता हूं। दरवाजा खटका और पंचम गुलशन बावरा के घर में घुसते हुए गाना गाने लगे। मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग बनाना अंजू, गीत क्या है धुन क्या है तू समझ गया गुल्लू, अब जल्दी से लिख दे गाना गुल्लू।

तरह से बड़े ही सुंदर और मस्ती भरे माहौल में गुलशन बावरा और पंचम ने कुछ अनमोल गाने दिए। गुलशन बावरा को दो बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सन 1974 में जंजीर फिल्म के इस

0: फिल्म उपकार के इस गाने के लिए।
1: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
0: जरा हाथ की सफाई फिल्म का ये गाना सुन लीजिए और ये सोचिए कि गुलशन बावरा ने किस तरह के मजेदार और सुरीले गाने दिए फिल्म।

बागरा बहुत लंबे समय तक लिखते रहे, यहाँ तक कि अजय देवगन के अभिनय वाली हकीकत फिल्म का ये मशहूर गाना सुनिए जो उनके बाद के दौर का गाना है।

0: वैसे आपको बता दें कि गुलशन बावरा पर्दे पर भी नजर आए फिल्म जंजीर के इस गाने में जो शख्स हारमोनियम बजाता हुआ थिरक रहा है वो गुलशन बावरा ही है।
1: देवा

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म संसार को बहुत ही मस्ती भरे और अनमोल गाने देने वाले गीतकार गुलशन बावरा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

यह आकाशवाणी पासवर्ड का FM माही चैनल है, FM बंडिक 6.3 MHz पर। रात्रि के 10 बजे प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सुनवाते हैं फिल्म संगीत का पहला गीत, फिल्म आप आए बाहर आई से। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज है, आनंद बख्शी का लिखा गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: रमन बाबू आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
1: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी गाओ।

ये गीत अभी आपने फिल्म अमर प्रेम से लता जी की आवाज में सुना। आर डी बर्मन का संगीत था और आनंद बख्शी का लिखा गीत था। सुनाते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। अनजान के बोले और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

ये गीत अभी आपने फिल्म विश्वास से मुकेश की आवाज में सुना। सुनवाते अगला गीत उपकार से मन्नाडे की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और शब्दों की लिखाई है आनंद बख्शी की।

0: ये गीत अभी आपने फिल्म मदर इंडिया से लता जी और मीना कुमार की आवाज में सुना। शकील बदायूनी का लिखा गीत था, नौशाद का संगीत था।
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
0: आइए सुनते हैं धूमकेतु फिल्म संगीत का फिल्म मन मंदिर से लता जी और मुकेश की आवाज में।

फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz की आवृत्ति पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते।

0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।